0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: घड़ी मिला लीजिए इस समय.

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। मई में मॉरिशस का व्यापार घाटा 35% बढ़कर 22,367 मिलियन रुपए हो गया। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार इसकी मुख्य वजह पेट्रोलियम आयात बिल में भारी वृद्धि रही। आज दिन के 11:30 बजे राज्यसभा के कार्य फिर शुरू होंगे। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 12 सवाल पूछे जाएंगे। एजेंडे में सरकारी निवेश परियोजनाएं, धारदार हथियारों से जुड़े अपराध, अर्ध सार्वजनिक निकायों की वित्तीय स्थिति, VAT और वृद्धावस्था पेंशन के नए पात्रता मानदंड शामिल हैं। PMQT के बाद संसदीय प्रश्न लिए जाएंगे। नेल्सन मंडेला सेंटर ऑफ अफ्रीकन कल्चर ने कल अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया। इस अवसर पर उप प्रधानमंत्री आर्यन नावामारी ने नेल्सन मंडेला के न्याय, गरिमा और एकजुटता के मूल्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयातित कई वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा की है। नया शुल्क 30 दिनों में लागू होगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव और बढ़ेगा। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद को बादल खिले रहेंगे और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर बारिश होगी। अन्य इलाकों पर मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 27 से 29। रात के दौरान आमतौर पर बादल घिरे रहेंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। सूर्योदय 6:44 पर और आज शाम 5:48 पर सूरज ढल जाएगा।
1: RM3 Radio.

या वो जिसने आसमान और जमीन बनाए और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा तो हमने उससे बाग उगाए रौनक वाले, तुम्हारी ताकत ना थी कि उनके पेड़ उगाते, क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है, बल्कि वो लोग राह से कतराते हैं। या वो जिसने जमीन बसने को बनाई और उसके बीच में नहरें निकाली और उसके लिए लंगर बनाए और दोनों समंदरों में आड़ रखी, क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है, बल्कि उनमें अक्सर जाहिल हैं।

या वो जो लाचार की सुनता है जब उसे पुकारे और दूर कर देता है बुराई और तुम्हें जमीन के वारिस करता है, क्या अल्लाह के साथ और खुदा है? बहुत ही कम ध्यान करते हो। या वो जो तुम्हें राह दिखाता है खुशकी और तरी की अंधेरियों में और वो के हवाएं भेजता है अपनी रहमत के आगे खुशखबरी सुनाती, क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? बरतर है अल्लाह उनके शिर्क से। या वो जो खल्क की इब्तिदा फरमाता है फिर उसे दोबारा बनाएगा, और वो जो तुम्हें आसमानों और जमीन से रोजी देता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? तुम फरमाओ कि अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो।

तुम फरमाओ खुद गैब नहीं जानते जो कोई आसमानों और जमीन में है मगर अल्लाह, और इन्हें खबर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। क्या उनके इल्म का सिलसिला आखिरत के जानने तक पहुंच गया? कोई नहीं, वो उसकी तरफ से शक में हैं, बल्कि वो उससे अंधे हैं। और काफिर बोले, जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे क्या हम फिर निकाले जाएंगे? बेशक उसका वादा दिया गया हमको और हमसे पहले हमारे बाप दादाओं को, ये तो नहीं मगर अगलों की कहानियां।

तुम फरमाओ जमीन में चल कर देखो कैसा हुआ अंजाम मुजरिमों का, और तुम उन पर गम न खाओ और उनके मकर से दिल तंग न हो। और कहते हैं कब आएगा ये वादा, अगर तुम सच्चे हो। तुम फरमाओ करीब है कि तुम्हारे पीछे आ लगी हो बाज वो चीज जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो, और बेशक तेरा रब फजल वाला है आदमियों पर। लेकिन अक्सर आदमी हक नहीं मानते, और बेशक तुम्हारा रब जानता है जो उनके सीनों में छुपी है और जो वो जाहिर करते हैं।

और जितने गैब हैं आसमान और जमीन के सब एक बताने वाली किताब में हैं। बेशक ये कुरान जिक्र फरमाता है बनी इसराइल से अक्सर वो बातें जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं, और बेशक वो हिदायत और रहमत है मुसलमानों के लिए। बेशक तुम्हारा रब उनके आपस में फैसला फरमाता है अपने हुक्म से, और वही है इज्जत वाला इल्म वाला। तो तुम अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक तुम रोशन हक पर हो। बेशक तुम्हारे सुनाए नहीं सुनते मुर्दे। तफसीर खजानुल इरफान में है, मुर्दों से मुराद यहाँ कुफार हैं जिनके दिल मुर्दा हैं, और ना तुम्हारे सुनाए बहरे पुकार सुने जब फिरें पीठ देकर।

क्या काम करते थे और बात पड़ चुकी उन पर, उनके जुल्म के सबब तो वो अब कुछ नहीं बोलते। क्या उन्होंने न देखा कि हमने रात बनाई कि उसमें आराम करें और दिन को बनाया सुझाने यानी दिखाने वाला। बेशक इसमें जरूर निशानियां हैं उन लोगों के लिए कि ईमान रखते हैं।

कानून, और जिस दिन फूका जाएगा सूर तो घबराए जाएंगे जितने आसमानों में हैं और जितने जमीन में हैं, मगर जिसे खुदा चाहे और सब उसके हुजूर हाजिर हुए आजजी करते। और तू देखेगा पहाड़ों को, ख्याल करेगा कि वो जमे हुए हैं और वो चलते होंगे बादल की चाल। ये काम है अल्लाह का जिसने हिकमत से बनाई हर चीज, बेशक उसे खबर है तुम्हारे कामों की। जो नेकी लाए उसके लिए उससे बेहतर सिला है, और उनको उस दिन की घबराहट से अमान है।

और जो बदी लाए तो उनके मुंह औंधाए गए आग में। तुम्हें क्या बदला मिलेगा मगर उसी का जो करते थे। मुझे तो यही हुक्म हुआ है कि पूजू उस शहर के रब को जिसने उसे हुर्मत वाला किया है और सब कुछ उसी का है। और मुझे हुक्म हुआ है कि फरमा बरदारों में हूँ और ये कि कुरान की तिलावत करूँ। तो जिसने राह पाई उसने अपने भले को राह पाई, और जो बहके तो फरमा दो कि मैं तो यही डर सुनाने वाला हूँ। तफसीर खज़ानुल इरफान में है, मेरे जिम्मे पहुँचा देना था वो मैंने अंजाम दिया। इस आयत को जिहाद की आयत ने मनसूख कर दिया।

करमना बनी आदम, और बेशक हमने बनी आदम को इज्जत अता फरमाई। अल्लाह की मखलूक के अंदर इंसान को रब्बे कदीर ने ताजे करामत अता फरमाया, इंसान ही को अपनी मखलूकात के अंदर अशरफ ठहराया, इंसान ही को परवरदिगार जल्ल जलालहू ने खिलाफत का ताज भी अता फरमाया, और इंसान को परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इतना उरूज अता फरमाया, इतनी तरक्की अता फरमाई कि इंसान की बराबरी अल्लाह की कोई दूसरी मखलूक कर नहीं सकती। सवाल यह पैदा होता है कि मौलाए कायनात ने बहुत सारी, मौला परवरदिगार जल्ल जलालहू बेपनाह मखलूक को उसने तख्लीक फरमाई, बल्कि कोई मखलूक ऐसी नहीं जो अपने मकसद को न जानती हो, कोई मखलूक ऐसी नहीं जिसका कोई ना कोई मकसद तख्लीक का न हो। कुछ मखलूक तो ऐसी है जो अपने अंदर बहुत सारी ताकतें रखती हैं, बहुत सारी तवानाई रखती हैं, जो इंसान की जरूरतों को मुकम्मल भी करती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने बताऊं, सूरज इंसान की जरूरतों को पूरी करता है। सूरज निकलता है, सोसाइटी में उजाला फैलता है। सूरज निकलता है, इंसान उजाले से बहरवर होता है। सूरज निकलता है, उसकी किरणों से इंसान इस्तेफादा करता है। सूरज की शुआओं से इंसान इस्तेफादा करता है, और सूरज का निकलना इंसान के लिए निहायत ही मुफीद होता है और सूदमंद होता है। लेकिन रब्बे कदीर ने उस सूरज के हवाले से यह नहीं फरमाया कि ए इंसान, ये सूरज तुझसे बढ़कर के है, चाहे हजारों मील की दूरी से वो रोशनी क्यों ना पहुंचाए, लेकिन सूरज ये तुझसे बढ़कर के नहीं, तू सूरज से बढ़कर के है। चांद उसने अता फरमाया, और चांद की ठंडक इंसान को बहुत ही सुकून में फराहम करती है, लेकिन रब ने चांद को भी, ये चांद के हवाले से भी नहीं फरमाया, ऐ इंसान चांद तुझसे अफजल है। पानी अल्लाह ने अता फरमाया, और पानी की कैफियत और पानी की माहियत को रब ने यूं बयान फरमाया, वजअलना मिनल माई कुल्ला शयइन हज अफला युमिनून, हमने पानी को हर चीज की हयात का जरिया बनाया है, कोई चीज ऐसी नहीं जो बगैर पानी के जिंदा रह सके, हर चीज की जिंदगी के लिए पानी जरूरी है। और रब फिर फरमाते हैं, अफला युमिनून, क्या फिर भी तुम ईमान नहीं लाते हो? ये गैर मोमिनों से खिताब हो रहा है, गैर मुस्लिमों से रब फरमा रहा है। पता ये चला, पानी हर चीज की जरूरत है, बगैर पानी के इंसान भी मर जाए, बगैर पानी के खेत भी मर जाए, बगैर पानी के जानवर भी मर जाए, बगैर पानी के जमीन भी बंजर हो जाए, और बगैर पानी के कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन मेरा रब ये नहीं फरमा रहा है कि पानी इंसान से अफजल है, बल्कि यहां भी यही बात आती है, ऐ पानी तू इंसान से अफजल नहीं, इंसान तुझसे अफजल है। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने सारी कायनात को पैदा फरमाई, जमीन पैदा फरमाई, आसमान को अल्लाह ने पैदा फरमाया, चांद और सूरज को रब ने पैदा फरमाया, तारों को रब ने पैदा फरमाया, जानवरों को रब ने पैदा फरमाया, सब कुछ पैदा फरमाकर रब ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे तू जानता है कि इन सारी चीजों की तखलीक तेरे बाद में नहीं हुई है, सब पहले पैदा किया जा रहा है। आसमान पहले बिछाया, आसमान का साहिबान पहले ताना जा रहा है, और जमीन को पहले बिछाई जा रही है, पानी का इंतजाम पहले किया जा रहा है, इंसान को बाद में भेजा जा रहा है, और इंसान से कहा जा रहा है, हुवल्लज़ी खलकलकुम मा फिल अर्ज़ जमीअ, जो कुछ जमीन में पैदा किया गया है मेरे बंदे, वो सब कुछ तेरे लिए है। ये जमीन तेरे लिए है, ये आसमान तेरे लिए है, ये सूरज तेरे लिए है, ये चांद तेरे लिए है, ये पानी के जखायर तेरे लिए है, ये सब कुछ तेरे लिए है, लेकिन तू मेरे लिए है, सब तेरे लिए है। आप अंदाजा तो लगाइए, अल्लाह ने सबको हमारा खादिम बना करके रखा है। आप जरा सोचें तो सही, जब परवरदिगार जल्ल जलालहू ये सारी चीजों को हमारे लिए पैदा फरमाया, और बहुत सारी चीजें अपने अंदर कुव्वत रखती हैं, ताकत रखती हैं, तवानाई रखती हैं, तो फिर ऐ परवरदिगार तू इंसान को अफजल क्यों बता रहा है, इंसान को आला क्यों बता रहा है? इंसान तो बड़ा मोहताज वाकई हुआ है, इंसान तो इतना मोहताज है कि जमीन पर आए तो खुद से चल नहीं सकता, पैदा होता है तो चल नहीं पाता, पैदा होता है तो लिबास तब्दील नहीं कर पाता, पैदा होता है तो कमा नहीं सकता, पैदा होता है तो अपनी भूख को मिटाने के लिए खुद से दौड़ नहीं सकता, पैदा होता है तो अपनी नजासतों को दूर नहीं कर सकता। इंसान इतना मोहताज है कि वो चलने के लिए उम्र का इंतजार करता है, और जब चलना सीख लेता है तो वो जमीन का मोहताज नजर आता है, किसी की उंगलियों के सहारे का मोहताज नजर आता है। वो इंसान जिसको तू अशफुल मखलूकात का ताज अता कर रहा है, वो तो कदम कदम पर मोहताज

नजर आ रहा है, तिजारत और तिजारत के सिलसिले में दौड़ धूप करता नजर आता है, कभी दुकानों का मोहताज नजर आता है, कभी मशीनरीज का मोहताज नजर आता है, कभी अशिया का मोहताज नजर आता है, खाने के लिए गिजाओं का मोहताज नजर आता है। ये इंसान जो इतना मोहताज कि ठंडी हो तो गर्मी, ठंडी हो तो गर्म लिबास का मोहताज नजर आता है, और गर्मी हो तो पंखे की हवा का मोहताज नजर आता है। लेकिन जानवर की बात तो बड़ी जुदा नजर आती है। जानवर पैदा होते ही चलने लग जाता है, उसे घर की हाजत नहीं होती, उसे कमाने जाने की जरूरत पेश नहीं आती, उसे ठंडी के लिए कोई अलग से पंखे के इंतजाम की जरूरत नहीं होती, उसे गर्मी के मौसम पर कोई पंखे की जरूरत नहीं और ठंडी में गर्म लिबास की जरूरत नहीं। उसकी चमड़ी पर जो बाल होते हैं वो ठंडी में उसे गर्मी का काम दे देते हैं और गर्मी में ठंडी का सुकून फराहम कर देते हैं। जानवर मोहताज नजर नहीं आता, इंसान मोहताज नजर आ रहा है। और इंसान कितना मोहताज है कि इस दुनिया से चला जाए तब भी मोहताज के चार आदमी जब तक के कांधे पर उठाकर उसे कब्रस्तान न ले जाएं तब तक उसकी लाश पड़ी रहे। इतने मोहताज इंसान को तूने अशरफुल मखलूकात बना दिया, सारी मखलूक को तूने उसके सारी मखलूक के अंदर तूने उसका मर्तबा बुलंदो बाला कर दिया। ऐ परवरदिगार ऐसा क्यों है, आखिर इंसान में कौन सी ऐसी खसूसियत है? तो मुफस्सरीन किराम फरमाते हैं अल्लाह ने मखलूक तो पैदा फरमाई लेकिन अक्ल की कुव्वत अगर किसी को अल्लाह ने अता फरमाई, अक्ल का जौहर अगर किसी को अल्लाह ने अता फरमाया तो वो इंसान ही को अता फरमाया है। इंसान के पास अक्ल है, इंसान साहिब अक्ल है। और मुहद्दिसीन मुफस्सरीन और सूफिया किराम एक बात की तरफ और भी गए हैं कि इंसान को ताज करामत देने की एक वजह यह भी है कि अल्लाह ने अपने महबूब को इंसानों में पैदा फरमाया, इसलिए इंसान सबसे अफजल हो गया, सबसे आला हो गया। अक्ल ये इंसान ही की अक्ल है जो चंद चीजों को जमा करके एक नई चीज को बना देता है। यह इंसान ही की अक्ल है जो जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने को दरियाफ्त कर लेती है। यह इंसान ही की अक्ल है जो जमीन और आसमान के दरमियान हवाई जहाज को उड़ाता नजर आता है। यह इंसान है जो अपनी अक्ल के जरिए बहुत सारी चीजें ऐसी बनाता नजर आता है कि जहां दूसरे इंसानों की अक्ल दंग नजर आती है, जानवर जो काम नहीं कर सकते वो इंसान कर लेता है। अक्ल का मकाम इस्लाम के अंदर बहुत अहम है, अक्ल की अहमियत बेपनाह है। अक्ल अल्लाह ने अता फरमाकर उसे बेलगाम नहीं छोड़ दिया, उसे इस्तेमाल करने का हुक्म अता फरमाया। आप मुझे बताइए, नमाज जैसी अफजलुल इबादत, नमाज जैसी अहम तरीन इबादत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने बेअक्लों पर फर्ज नहीं फरमाई। नमाज के लिए भी जरूरी है कि नमाज पढ़ने वाला आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो। परवरदिगार नमाज के लिए अक्ल की जरूरत क्या है? बंदा खड़ा हो गया अल्लाह अकबर करके जैसे तैसे पढ़ लिया तो निदा आएगी नहीं, ये बारगाह समदियत में नजराने अकीदत पेश करना है। जब उसके पास अक्ल होगी तो वो ये तस्लीम करेगा, ये सर खुदा की बारगाह में झुकाने के लिए नहीं, झुकाने के लिए है, हर किसी की बारगाह में झुकाने के लिए नहीं है। वो अक्ल के जरिए जमीन की अहमियत समझेगा, वो अक्ल के जरिए अपने माबूद बरहक की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करेगा। इसीलिए आप कुरान मुकद्दस का अगर मुताला करें तो हर वो चीज जो अक्ल को बर्बाद कर दे उससे कुरान ने बचने का हुक्म फरमाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबू सलात वअंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब मत जाओ इस हाल में कि जब तुम नशे के अंदर हो। नशा इस्लाम ने इसीलिए हराम फरमाया है कि इससे अक्ल चली जाती है, और मुसलमान की अक्ल बड़ी कीमती हुआ करती है, मुसलमान की अक्ल बड़ी ताकतवर हुआ करती है। इसलिए कि मुसलमान जब अक्ल को इस्तेमाल में लाता है तो ईमान की दौलत उसके साथ होती है, तो वो अपनी अक्ल के जरिए अगर कोई मकाम पा लेता है तो ईमान उसकी रहनुमाई करती है और ये कहती नजर आती है, ईमान ये कहता नजर आता है, अक्ल को बेलगाम मत छोड़ना वरना आवारा बन जाएगा। अगर तुझे रब ने कुव्वत अता फरमाई है, तू अक्ल के जरिए कोई मकाम पा भी रहा है, तो याद रखना ईमान का तकाजा यह है कि मकाम को पा लेने के बाद तू अपनी अक्ल का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, अपनी कुव्वत को अल्लाह की मखलूक के सिलसिले में इस्तेमाल करेगा। आप अंदाजा लगाइए, अभी मैं हालिया सफर के अंदर अमेरिका की धरती पर मैंने यह महसूस किया, बड़ी अजीब तारीकी मुझे महसूस होने लगी। मैंने यह महसूस किया कि गुनाहों की आजादी के बाद इंसान की जिंदगी कितनी हजीरन बन जाती है, इंसान का दिल कितना कितना जो है वो सूना हो जाता है। मैंने ये महसूस किया कि वहां पर गुनाहों के सिलसिले में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे शैतान का कोई हुक्म जो है शायद वहां टालने की इजाजत न हो।

शैतान के सारे हुक्म पर अमल करने की वहां पर इजाजत मिल रही है। शैतान शराब का हुक्म देता है, शराब आम है। शैतान जिना का हुक्म देता है, जिना आम है। शैतान बुराइयों का हुक्म देता है, बुराई आम है। शैतान जुआ का हुक्म देता है, जुआ आम है। शैतान हर बुराई का हुक्म दे रहा है और वहां बुराइयों पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कभी फलक बोस इमारतें देखकर मैं हैरत में पड़ गया, ये कितनी आलीशान इमारतें हैं। यहां की कौम के हवाले से दुनिया के इंसानों की मेंटेलिटी क्या से क्या तर है। यकीनन अक्ल उनके पास है कि उन्होंने आलीशान इमारतें बना ली। अक्ल उनके पास है कि जदीद चीजों से वो आरास्ता नजर आते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, ईमान की दौलत होती तो वो अपनी अक्ल के जरिए जमीन के ऊपर महल बनाने की बजाय जन्नत में महल बनाने की फिक्र किया करते, आग बरसाने की बजाय कमजोरों को सहारा देने की बात किया करते। मैं आपको तारीख के हवाले से बताऊं, अक्ल अल्लाह ने भी अता फरमाई, कुव्वत भी अल्लाह ने अता फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक के औलिया किराम की जिंदगी का मुताला करो, अल्लाह ने उनको अक्ल भी अता फरमाई और कुव्वत भी अता फरमाई। लेकिन ईमान की रोशनी में मिलने वाली कुव्वत का इस्तेमाल किस शान से वो करते नजर आते हैं, किस एहतमाम से करते नजर आते हैं। यह है मेरे नफरत अजीब सी पैदा हो जाती। वो रसूल आजम से बेपना नफरत करता, वो मौके की ताक में था कि कभी उसे मौका मिल जाए और मकीने गुंबदे खदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शहीद कर दे। अल्लाह अकबर, एक मरतबा उसे मौका मिल गया रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वो हमला करने के लिए जैसे ही बढ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हुए जब उसने अपने कदम को आगे बढ़ाया तो उसी मौके पर उसे आग के शोले नजर आने लगे और वो वहीं पर रुक गया। आकाए कायनात ने उसके चेहरे को देखा। आप अंदाजा तो लगाइए, रसूल आजम उसकी कैफियत को भांप जाते हैं। इरादा बड़ा गलत था, गलत इरादे से आया था। आकाए कायनात ने जब उससे पूछा क्यों तू आया था, क्या तेरा मकसद था, उसने अपने मकसद को बताने की बजाय वो टालता गया, वो बहाने बनाता रहा। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ मारा और हाथ फेर दिया और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, आकाए कायनात का सहा दस्ते करम जब उसके सीने पर जब फेर दिया गया तो वो शख्स उसके बाद अपनी जबान से ये कह रहा है कि सबसे पहले हुजूर से मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी, लेकिन दस्ते रसूल सीने पर पड़ा तो दुनिया के सारे इंसानों से ज्यादा हुजूर मुझे महबूब नजर आने लगे, तारदारे कायनात मुझे महबूब नजर आने लगे। और उसके बाद उसने अपने माफी जमीर का इजहार कर दिया, आका मुझे आप सबसे ज्यादा आज के बाद महबूब है। रसूल आजम ने फरमाया, अब मैं तुझे बताऊं, पहले जो तू नियत करके आया था वो नियत अच्छी थी या अभी जो तू नियत किया है वो नियत अच्छी है। अल्लाह अकबर, वो रसूल आजम के इस जुमले को सुनने के बाद पुकार उठा, मेरे सीने के राज को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन आपने सीने के राज को जाहिर करके ये वाजह कर दिया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, पैगंबर आजम हैं, अपने गुलामों में मुझे रखिए और इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाकर या रसूल अल्लाह अपने अपने अपने से कभी मुझे जिंदगी भर जुदा ना फरमाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आका चाहते इंतकाम ले लेते, आका चाहते उसे तहे तेक कर देते, आका चाहते उसे मिटा देते, लेकिन रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ताकत कमजोरों को सहारा देने के लिए खर्च फरमाई है। आप मुझे बताओ, जिस मक्के की धरती पर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानेसारों को सताया गया, जब उसी मक्के की तरफ रसूल आजम लौटते हैं, फातेह मक्का बनकर के लौटते हैं, तो आका की ज़बानी अक़दस पर क्या था। दो लोग तो ये तसव्वुर कर रहे थे कि अब हमें कत्ल कर दिया जाएगा, कि आज का दिन हमारे लिए इंतकाम का दिन है, आज हमें बर्बाद कर देने का दिन है, इसलिए कि हमने मक्के की जमीन पर हुजूर को बहुत सताया है। लेकिन आका ने जब सुना तो इरशाद फरमाया, अल यौमा यौमुल मरहमा, आज का दिन तो मेहरबानी करने का दिन है, आज कमजोरों पर जुल्म करने का दिन नहीं। ये बड़ा फर्क हुआ करता है। आप औलिया किराम की जिंदगी देखो, गौसुस सकलैन की जिंदगी देखो, सुल्तानुल हिंद की जिंदगी देखो, खुदा की कसम ऐसी कुव्वत अल्लाह ने उनको अता फरमाई थी। आप आकाए कायनात को देखो, अल्लाह अकबर, चांद के दो टुकड़े करने की सलाहियत अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई थी। लेकिन कोई साबित नहीं कर सकता कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी कमजोर पर जुल्म किया हो, कभी किसी कमजोर

को सरकार ने सताया हो बल्कि हर गिरते हुए को उठाना, यही रसूल आजम की जिंदगी का सबसे बड़ा तुर्र इम्तियाज था। मैं आपको एक वाकया बताऊं और उससे आप रसूल आजम के अखलाक का अंदाजा लगाएं, ताजदारे कायनात के हुस्न खुल का अंदाजा लगाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कमजोर को देखते तो बेचैन हो जाया करते थे, बेकरार हो जाया करते थे। आकाए कायनात तशरीफ ले जा रहे हैं, एक खातून अपना सामान लेकर के बैठी हुई है, रसूल गिरामी वकार ने सामान देखा, खातून को देखा, इरशाद फरमाते माई क्यों खड़ी हो, किसका इंतजार कर रही हो? अर्ज करती है किसी माल बरदार का इंतजार कर रही हूं, कोई आए और मेरा सामान उठा ले। रसूल आजम फरमाते हैं ला माई, मैं तेरा सामान उठा लेता हूं। आका ने उसका सामान अपने कांधे पर उठाया और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर की तरफ बढ़ने लगे, उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब उसका मकान आया, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने कहा कि बस यही मेरा मकान है, सामान वही रख दिया गया। आकाए कायनात जब जाना चाहते थे तो उस खातून ने बर्जस्ता कहा, ऐ नौजवान, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मैं तुम्हारे एहसान का बदला कुछ नहीं चुका सकती, अलबत्ता मैं तुम्हें एक गुजारिश करती हूं कि मोहम्मद नाम का एक शख्स एक नया दीन पेश कर रहा है, तुम उनकी बातों को मत सुनना, उनकी बातों में बड़ी तासीर है, जो उनकी बात सुनता है उनका बन जाता है, तुम उनकी बातों को न सुनना वरना तुम भी उनके हो जाओगे। आकाए कायनात मुस्कुरा रहे हैं, रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों पर तबस्सुम है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, माई ये बता, जिस मोहम्मद का तस्करा तू कर रही है वो मोहम्मद अगर मैं हूं तो तेरा क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था कि बर्जस्ता पुकार उठी, अगर वो मोहम्मद तुम हो तो सारी दुनिया झूठी है, तुम सच्चे हो, जो दावत तुम दूसरों को देते हो मुझे भी पेश करो। आका ने इस्लाम की दावत पेश की और वो हल्का बगोश इस्लाम हो गई। ताकत, इसीलिए कयामत में ताकत के हवाले से पूछा जाएगा। यह न समझना कि पावर देकर अल्लाह ने आपको मिसयूज करने का हुक्म दे दिया। आप जानते हैं, कुरान मुकद्दस और अहादीस रसूल का मुताला कीजिए तो जवानी की ताकत का अलग से कयामत में सवाल होगा। यह ताकत जो एक जवान को मिल जाती है और वो अपनी जवानी की ताकत को गलत कामों के अंदर खर्च करता है, उसे डरना चाहिए कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ला तसूलु कदम इब्न आदम हत्ता युसलु अन खमसिन, अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला। कयामत के दिन बंदों के कदम अपनी जगह से हिल न सकेंगे जब तक कि वो पांच सवालों के जवाब न दें। उनमें से पहला सवाल उम्र के हवाले से होगा और दूसरा सवाल जवानी के हवाले से होगा। ऐ जवान, बता तूने अपनी जवानी किन कामों के अंदर गुजारी? जब उम्र का सवाल भी हो रहा है तो जवानी से अलग से सवाल की वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये इंसान की जिंदगी के तीन स्टेजेस होते हैं। बचपन में इंसान कमजोर होता है, बुढ़ापे में इंसान कमजोर होता है, लेकिन जवानी में इंसान के पास एक अलग से कुव्वत होती है, ताकत होती है, एनर्जी होती है, स्टेमिना उसके पास होती है, पावर उसके पास होता है। तो जवानी के अलग से सवाल की वजह सबसे बड़ी यह है कि बता तूने जवानी किस काम के अंदर गुजारी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जवानी की दहलीज पर कदम रखने के साथ तू बुराइयों के दलदल में फंसता चला गया, जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद तूने गुनाहों में अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी, तूने कमजोरों पर जुल्म करना शुरू कर दिया? नहीं नहीं, बल्कि जवान, तुझे जवानी इसलिए दी जा रही है हर गिरते हुए को तू उठा और हर परेशान हाल की तू मदद कर और अपनी जवानी को ऐसे कामों में गुजार कि जवानी भी अपनी किस्मत पर रश्क करे कि मौला ने किसके साथ मुझे वाबस्ता कर दिया है। यही वजह है कि तारीख उठा करके हम जब देखते हैं तो अल्लाह के वो बरगुजीदा बंदे जिनको जवानी की अहमियत का ख्याल था वो अपनी जवानी किन कामों में गुजारते थे। अल्लाह अकबर, रसूल गिरामी वकार अरवाहु नाफिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों की जवानी का आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा, हजरत खब्बाब हो, हजरत खुबैब हो, हजरत जुबैर हो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हो, अल्लाह अकबर, हजरत इब्ने जैद हो, हजरत कासिम हो, हजरत आउन और हजरत मोहम्मद बिन कासिम हो, इन हजरात की जिंदगी का मुताला करो।

सामीन, इंसान की अजमत बयान का पहला हिस्सा अभी आप समाप्त कर रहे थे अज मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी दामत बरकातुहु आलिया। इंशाल्लाह इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा अगले हफ्ते इसी वक्त हम आपको पेश करेंगे।

अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी बेशुमार नियामतों से नवाजा और उसे तमाम मखलूकात पर फजीलत अता फरमाई। इंसान को इल्म हासिल करने, सोचने, समझने और सही फैसले करने की सलाहियत दी गई। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, मैं ज़मीन में अपना नायब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ। इससे मालूम होता है कि इंसान को ज़मीन पर जिम्मेदारी, अदल और इसलाह का फरीज़ा सौंपा गया है, जो उसकी अजमत की वाज़ह दलील है।

0: East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
1: தேனிசை அரங்கம்.

तेलुगु सिनेमा लो मीकु बागा नच्चे अंशं एदि कथा संगीतमा हास्यमा लेक भावोद्वेगाला ओक्कसारी आलोचिंचि चेप्पंडी।

शक्ति। मंगलवार 21 जुलाई घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:45 हो चुके हैं। रेडियो मनोरंजन पर भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे इस भक्ति गीतों के कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। अभी से लेकर जो है दिन के 11:30 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। तो चलिए भगवान गणेश का नाम लेते हैं और आज के शुभ कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं। भगवान गणेश जो है सभी विघ्नों को दूर करते हैं। भगवान गणेश जो है सभी बाधाओं को दूर करते हैं और सबका कल्याण करते हैं।

श्रोताओं, भक्ति में शक्ति यह कार्यक्रम है और कहते हैं कि ईश्वर के प्रति ये जो भक्ति होती है ये जीवन में हमें बहुत दूर ले जाती है, क्योंकि ये हमारे जीवन के उन पहलुओं को पर असर डालती है जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर के सामने बैठना ही अपने आप में भक्ति होती है, लेकिन नहीं, भक्ति अपने आप में वो है जो हमारे ज़िंदगी में काफ़ी जो है परिवर्तन लाता है, हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, हमें जो है जीवन में कई ऐसी चीज़ें होती है, कभी कभार जीवन में कोई रास्ता नज़र नहीं आता है तो ये भक्ति ही है हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं और ये भक्ति ही है जो हमें ईश्वर के और समीप ले जाते हैं। ईश्वर जो है अपने भक्तों की कभी कभार परीक्षा भी लेते हैं, कभी कभार हम कभी संकट में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं तो किस राह पर चुनते हैं, कहते हैं ये परीक्षा ही है जो हमें जीवन में और भी अच्छा बनाती है, हमें और भी दृढ़ बनाती है, हमें और भी सशक्त बनाती है। इसलिए जीवन में जब भी कोई परेशानी आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, जब लोग हमारे खिलाफ हो जाए, जब हालात, जब परिस्थितियाँ विपरीत हो जाए तो डरना नहीं चाहिए, बस डटकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए।

तो चलिए श्रोताओं, देखते देखते दिन के 11 यहाँ पर बजने को है। इस समय रेडियो मनोरंजन पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम से, जो चलता है दिन के 11:30 बजे तक। कहते हैं कि आज के समय में अगर हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी विषय के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है या जीवन में बहुत ही तनाव बढ़ गया है। समय नहीं है, तनाव बढ़ गया है। पर कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को जीवन में कहीं ना कहीं 24 घंटे ही मिलते हैं। वो हर एक व्यक्ति पर अपने अपने तरीके से निर्भर करता है कि वो किस चीज़ को वो अपने जीवन में अहमियत देता है, कितना समय उसे जीवन में लगाता है ताकि अपने जीवन को बेहतर बना पाए। क्योंकि कहते हैं ना कि समय एक बार निकल जाता है तो हाथ से फिर नहीं आता है, इसलिए समय का सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। जीवन में प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। जीवन में अपने आप के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस भी चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके ऊपर यदि हम कार्य नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो उस चीज़ को पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। और कहते हैं ना कि कोई भी की गई मेहनत, कोई भी की गई जो है प्रयास, कभी भी खाली नहीं जाता है। आज नहीं तो कल उसका फल हमें अवश्य मिलता ही है। तो चलिए, यहाँ पर इस समय आप हमारा साथ दे रहे हैं, इस अगले भक्ति गीत द्वारा हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं।

श्रोताओं, सेवा की बात करें तो कहीं ना कहीं मानव धर्म में सेवा को अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कहते हैं मनुष्य जीवन मिला है तो हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते ही हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं ही, लेकिन वहीं पर समाज के प्रति भी हर एक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है। कभी कभार देश में कुछ हो रहा होता है तो हम जो है दोष देते हैं कि जो सरकार है उसे कुछ करना चाहिए या जो संस्थाएं हैं उनको कुछ करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा भी कर्तव्य होता है कि अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो हमें भी उस के बारे में सोचना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति या एक संस्था पर यदि हम दोष देते हैं तो जीवन ऐसे नहीं चलता है। जीवन चलने के लिए सबका अनुभव बहुत ही मायने रखता है। जीवन आगे अच्छे से व्यतीत हो, जीवन में सबको सब कुछ मिले, इसके लिए हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जो है अपना योगदान देना पड़ता है। इसी प्रकार परिवार भी होता है, जब सभी व्यक्ति मिलकर अपना योगदान देते हैं तभी तो जाकर हम जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं। चलिए, अभी के लिए समय हुआ है कि एक और भक्ति गीत की ओर हम बढ़ें और इस कार्यक्रम को हम आगे ले जाएं।

जी हाँ, आना आना हमारे बस में होता है श्रोताओं, न जाना हमारे बस में होता है। लेकिन इस आने और जाने के बीच में हम अपने जीवन में क्या करते हैं, इसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। क्योंकि हमारे जो है सनातन धर्म में कर्मों का बड़ा ही महत्व होता है। कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का सदा अच्छा फल होता है, और यदि किसी कारणवश हम से कोई बुरा कर्म हो रहा है तो उसका भी फल हमें ही भुगतना पड़ता है।

0: श्रोताओ, इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंतिम भेंट के साथ, हनुमान जी पर आधारित इस आरती के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन हम करते हैं। 11:30 बजे आप सुन पाएंगे जिनकी प्रस्तुति में चाइनीज़ भाषा में कार्यक्रम, और 12 बजे हमारी आपकी मुलाकात दोबारा होगी सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में। तो ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर आप हमारा साथ देते रहिए। नमस्कार, आप सभी को शुभ दिन।
1: RM3 रेडियो।

0: 听众朋友，今天的汉语普通话好歌送给您的节目栏目将要接近尾声，主持人又要跟大家说再见了，非常感谢您的陪伴，非常感谢您的收听，好，我们在下次同一节目时间再见。
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आप सभी धीमा नमस्कार, आपको
4: नमस्कार नीतूषा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। विपक्ष नेता जोली शोंगा आज श्रम और औद्योगिक मंत्री से प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन में प्रवासी श्रमिकों की भर्ती से जुड़े मुद्दे पर सवाल किए। वे फर्जी संगठनों की रोकथाम, श्रम कानूनों के पालन, वेतन ऑडिट और अवैध क्षेत्र परिवर्तन रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। अपने जवाब में मंत्री रिजाउद्दीन ने कहा कि मॉरिशस में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में गन्ने के खेतों में 8,000 से अधिक छोड़े गए एकड़ हैं, साथ ही 10,886 खेतीहर और 1,125 पशुपालक हैं। छोटे प्लांटर्स के लिए प्रत्यक्ष श्रम भर्ती करना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि वे मौसमी श्रमिक होते हैं, इसलिए प्रवासी श्रमिकों की आपूर्ति श्रम ठेकेदारों द्वारा की जाएगी और श्रम ठेकेदारों के लिए पहले से ही एक प्रावधान मौजूद है। ट्रेड यूनियनों और गन्ना योजनाकारों के विचार जानने के लिए 10 मार्च को एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी। चर्चा के बाद इस बात पर सहमति हुई कि कृषि क्षेत्र में श्रम ठेकेदारों के लिए विशेष रूप से नियम बनाए जाएंगे और केवल सहकारी महासंघ ही श्रम ठेकेदार के रूप में कार्य करने के पात्र होंगे। सुरक्षा उपाय पेश किए जाएंगे और श्रम ठेकेदार तथा काम पर रखने वाले यानी नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से स्वास्थ्य से जुड़े मामलों की देखरेख करनी चाहिए। मॉरिशस की इंडस्ट्री अथॉरिटी एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगी। केवल पंजीकृत महासंघ ही श्रम ठेकेदार बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं और किसी भी निजी कंपनी को श्रम ठेकेदार के रूप में आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस सत्र के बाद संसदीय प्रश्न होंगे और इसके बाद मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल पर बहस फिर से शुरू होगी, साथ ही क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पर भी बहस शुरू की जाएगी। अर्थशास्त्री एरिक निंग के अनुसार मॉरिशस डबल डेफिसिट का सामना कर रहा है, जहां सरकार और देश दोनों अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च और आयात कर रहे हैं। ईंधन पर निर्भरता और संभावित 4% राजकोषीय घाटे को देखते हुए उन्होंने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में तुरंत सख्ती बरतने की चेतावनी दी है। और विदेश में इंडोनेशिया की एक अदालत ने 34 शिशुओं की तस्करी के मामले में 19 लोगों को दोषी ठहराया है। ये गिरोह 2023 से 2025 के बीच पश्चिम जावा में अवैध रूप से शिशुओं को खरीदकर उन्हें इंडोनेशिया और सिंगापुर में गोद लेने के लिए बेचता था। 34 में से 12 शिशुओं के सिंगापुर पहुंचने की आशंका है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। बैठका एवेन्यू बेलमोर में 55 साल के 55 years old के श्री रमेश देव जीतन, जो रंजीत नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके बेटे संजू जीतन के घर बैठका एवेन्यू बेलमोर से उठाकर मौलोबीन पॉइंट दुफ्लाक की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। ब्लॉक A1 क्रिमेशन स्ट्रीट थोंगबो में 80 साल के 80 years old के श्री देवन

0: चंद्रलाल परसनू जो विनोद बुक से नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सीला परसनू के घर ब्लॉक A1 क्रिमिशन स्ट्रीट थोंगबो से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30। नंबर 38 रामगुलाम रोड प्लेंदी पापाई में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के जनाब नसीम अकबर अली जो नसीम नाम से भी जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा कल दिन के दो बजे उनकी बेगम आशा अकबर अली के घर नंबर 38 रामगुलाम रोड प्लेंदी पापाई से उठाकर प्लेंदी पापाई का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमारो एट 2 PM। नंबर 24 क्लोजल लेन फिनिक्स में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ललिता प्रयाग सिंह पैदाइशी नाम बिस्नुत सिंह और जो मिमिन नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम 5 बजे उनके घर नंबर 24 क्लोजल लेन फिनिक्स से उठाकर सुल्फेगिनों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रोमेशन विस आफ्टरनून एट 5 PM। रिवालों रोड क्रेवकर में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्री अनिरुद्ध गोविंद जो अनिरुद्ध नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके बेटे रवि गोविंद के घर रिवालों रोड क्रेवकर से उठाकर क्रेवकर की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। बैठका रोड मोंगू में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मुतामा नारायणन पैदाइशी नाम पुइनेन और जो अमाई नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3:30 बजे उनके पोते जेम्स नारायणन के घर बैठका रोड मोंगू से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV. You're listening to RM3 Radio Man.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: मंगलवार 21 जुलाई घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 12:06 रेडियो मनोरंजन पर एक बार फिर से आप सभी लिसनर्स का वेलकम है। मैं हूँ सुमी और सुहाना सफर इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। थोड़ी देर पहले भक्ति में शक्ति इस प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात हुई थी और अब पुराने गानों के इस सुहाने सफर में भी हम आ चुके हैं आपका साथ देने के लिए। तो चलिए दोपहर का ये जो टाइम है, ये जो मोमेंट है, पुराने गानों के साथ इसे और भी ब्यूटीफुल बनाते हैं, साथ में इंक्लूड करेंगे आपके डेडिकेशंस भी। तो जहां कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 4028070 या तो यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250620 पर। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं दूसरा आदमी इस फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ, लता जी और किशोरदा की आवाज़ों में।

सुहाना सफर, सुहाना सफर। चलिए ऑन रेडियो मनोरंजन, दिस इज योर सुहाना सफर। और हमें पता है कि ये जो प्रोग्राम है हमारे लिसनर्स का, हमारे फॉलोअर्स का बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि पुराने गाने तराने किसे नहीं पसंद वाला। तो चलिए, कोई खूबसूरत सा गाना आप भी किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आप हमें मैसेज कर सकते हैं ऑन 5250600 पर। साथ ही इस समय हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव है, रेडियो मनोरंजन के पेज पर, आप वहाँ पर भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं जो दिन है अच्छे से बीत रहा होगा। ऐसे आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है ना। और कहते हैं ना कि बाहर का मौसम अच्छा हो तो मन का मौसम भी अपने आप अच्छा हो ही जाता है। तो चलिए, गानों का ये जो कारवा है इसे आगे ले जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर मैसेजेस तो हमें मिल ही रहे हैं, साथ ही यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय हमारे इस लाइव पर। कविराज जी हमारा साथ दे रहे हैं। कवि शिरीष जी नमस्कार आपको भी। केशिका जी ब्यूटीफुल सॉन्ग, यस यशुदास जी की आवाज़ में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, बहुत ही खूबसूरत गाना है, आपको अच्छा लगा, चलिए अच्छी बात है। दौलत तरन जी कैसे है दौलत जी। और यालेश, हाय यालेश, हाउ आर यू। यूज़र 3961 कैसे रेडियो, ये रेडियो मनोरंजन है, ऑलराइट, थैंक यू कवि जी। और रोशन टेलर जी कैसे है रोशन जी, ऐसे टेलरों की यहाँ पे काफ़ी डिमांड होती है मॉरिशस में। और चलिए यहाँ पर, ये फिजी से रात के 8:15 है, डिनर फिनिश हुआ है। ओ केशिका जी आप फिजी से हमारा साथ दे रही है, चलिए उम्मीद करते हैं गानों के साथ साथ आपका टाइम भी अच्छे से बीत रहा होगा। तो चलिए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। अनुरोध फिल्म का ये जो गाना है, किशोरदा की आवाज़ में, आप सभी लवली लिसनर्स के नाम, साथ ही हमारे तमाम फॉलोअर्स के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: अपना सफर।
1: चलिए यादों की बात करें तो ये गाने जो है कहीं ना कहीं हमारे यादों के, हमारे दिलों में इस तरह से बसे हैं, हमारे लाइफ का इस तरह से हिस्सा बन गए हैं कि बार बार इन गानों को सुनने का हमें जो है मन करता है ना। तो चलिए कोई खूबसूरत सा गाना आप भी सुनना चाहते हैं या किसी के नाम करना चाहते हैं, या मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारा साथ दे सकते हैं ऑन रेडियो मनोरंजन। अभी के लिए चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। फासले फिल्म का ये जो तराना है, वेदना जी आपके नाम हम करते हैं, कटरबोन से इस समय हमारा साथ दे रही हैं। वी हैव इंदु, शाहजहां, प्रभु, माधुरी जी आपके लिए भी ये तराना, साथ में स्वीटी जी आपके लिए भी, मिस्टर बी कैसे हैं आप, शिरीन जी, आली, तिलक, किरण बाबू, परी, नाजिया, सुल्ताना, शवि, आशा, तुलसी, सभी बड़े प्यार से इस समय हमें टिकटॉक के ज़रिए देख रहे हैं और साथ ही सुन भी रहे हैं। और यहाँ पर ढेर सारे मैसेजेस भी हमें मिल रहे हैं, थोड़ी देर में आपके मैसेजेस को भी हम शामिल करेंगे। और यहाँ पर भाई अजय अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अजय जी आपको हैप्पी बर्थडे, खासकर रंबा जी की ओर से जो स्विट्ज़रलैंड से आपको बर्थडे विशेज दे रही है, बेस्ट विशेज दे रही है। साथ में वी हैव रूमा, मनीषा, शेरोन, सभी पूरे परिवार की ओर से अजय जी आपको जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी लिसनर्स, जितने भी फॉलोअर्स आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और चलिए कोई पुराना गाना आप भी किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में आप हमारा साथ दे सकते हैं। 2 बजे तक चलने वाला है सुहाना सफ़र।

0: का सफर।
1: तो चलिए आनंद आश्रम फिल्म का ये खूबसूरत सा तराना भी आप सुन रहे थे आशा जी, किशोरदा और साथियों की आवाज़ों में। काश के इस प्यार को हम बांध के रख पाते, काश के हर एक खूबसूरत पल को हम समेट के रख पाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वक्त के साथ सब कुछ जो है, टाइम के साथ सब कुछ दूर होने लगता है, बस यादें ही यादें हैं जो रह जाती हैं। और सुहाना सफ़र ये प्रोग्राम भी तो यादों का ही सफ़र है ना। इन पुराने गानों को हम सुनते हैं, न जाने कितनी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अगला जो गाना है वो भी बड़ा कमाल का है। जी हाँ, कलाकार फिल्म का ये जो गाना होगा नीले नीले अंबर पर, किशोरदा की आवाज़ में, जाता है केशनी जी आपके नाम, जो इस समय फिजी से हमारा साथ दे रही हैं। साथ ही वी हैव यूज़र 456 ग्रामासे में काम कर रहे हैं। अगला गाना आपके सभी कलीग्स के नाम, आपके सभी दोस्तों के नाम। वी हैव रोशनी, वी हैव चिरंजीत, अमिताभ, बरखा, शमा, केविना या केविन, ऑल राइट, सभी इस समय काम करते करते हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। बबीता बुलाकी जी, आपके भी प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। अनीता जी, आप व्हाट्सएप के ज़रिए तो, रेडियो के ज़रिए तो हमारे साथ जुड़ती ही हैं, साथ ही टिकटॉक पर भी हमारा साथ दे रही हैं। इम्तियाज़ जी जो फिजी से हमारा साथ दे रहे हैं। वी हैव किरण, कविता, माया रामदोस जी, आलिशा, रोशन, अफीज़ा अगला गाना आपकी ओर से आपके हस्बैंड साइलेश के लिए। वी हैव लायन, वी हैव सुनील और जो सभी लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके भी इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चलिए खूबसूरत गीतों का कारवां यहाँ पर जारी है। इस समय लंच करते करते हमारे साथ जुड़े हैं तो बुना पीछे आप सभी को शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। सुहाना सफर ये प्रोग्राम रेडियो मनोरंजन पर हर रोज़ दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच चलता है और यहाँ पर अगला जो तराना है खासकर माधुरी जी आपके नाम हम करते हैं। घरौंदा फिल्म का ये जो गाना है रूना लैला जी की आवाज़ में आपके लिए जाता है। देवी जी आपके लिए सुबी वाकवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यही गाना किरण की ओर से हस्बैंड ऋषि के नाम, बेटी है रिया, साथ में है कृषि और सभी मुहाबिया परिवार के नाम और सभी रिसोई परिवार, इज इट, आई होप मैंने नाम आपका ठीक से लिया होगा। रोहिणी लता जी यहाँ पर मेलबर्न से हमारा साथ दे रही है। गाना जाता है राजेश चांद, शिनल सयाल और जो है आलिशा के नाम, शैरून के नाम जो इस समय हमें सुन रहे हैं। शैलेंद्र जी यही गाना आपके नाम भी हम करते हैं। कुसुम भी बड़े प्यार से हमें सुन रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मिस्टर राम थैंक यू सो मच हमारे लिए गाना डेडिकेट करने के लिए। गाना जाता है शिवा आपके लिए भी, रोशनी जी आपके लिए भी और इस समय जो है मिमी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही है कि आई एम इन मॉरिशस फॉर हॉलीडेज एंड प्ले अ नेक्स्ट सॉन्ग फॉर लखू फैमिली। तो चलिए अगला गाना लखू फैमिली के नाम मिमी की ओर से और यहाँ पर संजना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और यहाँ पर पॉपकॉर्न को एंजॉय करते हुए हमें सुन रही हैं। तो थैंक यू सो मच। हाय शिवा जे रॉकस्टार, नमस्ते आपको।

को भी। अगला गाना जाता है साथ ही साथ यहाँ पर आपके नाम, आपकी ओर से जो है अनीता जी, आपके नाम। अनीता जी, जो गाना आपने मांगा वो हमारे पास नहीं है, फ्लिक ऑफ लॉक से आप हमारा साथ दे रही है, तो आपकी ओर से ये अगला तराना आपके हस्बैंड राज के लिए। साथ में अंतिश है, अंकुश है, मनीषा है, आशिमा है, हिमेशा, आद्या, आंच, पूरा परिवार जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए यहाँ पर ये सफ़र और भी सुहाना हो जाता है जब हमारे प्यारे लिसनर्स, हमारे फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, और ये पल और भी मेमोरेबल हो जाता है जब सिर्फ मॉरिशस से ही नहीं बल्कि यूके, यूएस, फिजी, इंडिया, इन सभी, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों से हमारे फॉलोअर्स हमारा साथ देते हैं। तो चलिए मिमी जी यहाँ पर जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है। गाना जाता है संध्या, शानिया, सिया, सियाना, श्याम, पूजा, संदीप और सभी लखू फैमिली के नाम। अगला गाना शैलेंद्र जी आपके नाम हम करते हैं। बेमिसाल फिल्म का ये तराना होगा लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। शिवोन प्लीज़ प्ले। ओके रोहिणी, लता जी अगला गाना आपके नाम हम करते हैं। हाय मिली जी, कैसी हैं आप? आई होप आप ठीक हैं। और यहाँ पर अगले इस डेडिकेशन की ओर हम बढ़ते हैं। दौलत तरन जी, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। जॉय रॉकस्टार जी, जो गाना आपने मांगा थोड़ी देर में मौका मिला तो हम इसे ज़रूर चलाएंगे आपके लिए। माया रामदास जी, हम बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अभी के लिए हमारा गाना जो है वो चल पड़ा है, और ख़ासकर गाना जाता है विमला अपादू आपकी ओर से, आपके जीजा जी सनील भंजन के नाम, जो इस समय रिवेदेजोंगी पुलिस स्टेशन में काम कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। मनोज जी, हेलो मनोज जी, आई होप आप ठीक है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू जितने भी हमारे फॉलोअर्स हमारे इस लाइव को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसके लिए। चलिए, पुरानी फिल्में देखने का शौक़ तो हमें भी है, परी जी आपको भी है, जानकर हमें बड़ी खुशी हुई। और इस समय यूके से जो है मिमी और उनकी पूरी फैमिली मॉरिशस आई है घूमने के लिए और हमारे साथ कनेक्टेड है, तो थैंक यू सो मच इसके लिए। और मिमी जी, ये गाना आपकी ओर से जाता है संध्या, पूजा, संदीप, सरस्ती, श्याम, शाना, सिया और सियाना के नाम।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और चलिए सागर फिल्म के इस टाइटल ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं 1 बजे के समाचार की ओर. देखते ही देखते सुहाना सफर का ये जो फर्स्ट आवर है खत्म होने को चला. और ये गाना नवीन कुमार जी आपके नाम हम करते हैं, पांडे जी आपके लिए. फिर वी हैव अशोक जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अरविंद जी, यही गाना आपकी ओर से सभी बिसुनी परिवार के नाम जो दागोचिए से हमारे साथ कनेक्टेड है. एस नन जी आपके लिए भी. प्रीति की ओर से यही गाना यजना आपके नाम. और मुलाकात होती है 1 बजे के समाचार के उस पार. साथ देते रहिएगा हमारा ऐसे ही ऑन रेडियो मनोरंजन इन सुहाना सफर.

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here.
3: सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे सुमेरा नमस्कार आपको
4: नमस्कार आदाब राष्ट्रसभा में प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन प्रवासी कामगारों की भर्ती और कार्य शर्तों पर आधारित रहा विपक्ष नेता जोली जोंगा का प्रश्न श्रम मंत्री को संबोधित रहा मंत्री रिजाउद्दीन ने स्पष्ट किया कि कंपनियों की सभी कार्य शर्तों पर गौर किया जाएगा और सभी ठेकों पर श्रम मंत्रालय की अब से निगरानी होगी ये उल्लेख किया गया कि 9000 टन गन्नों की कटनी नहीं की जा सकी क्योंकि कामगारों की कमी रही है इसलिए गन्ना उद्योग के समर्थन में विदेश से कामगारों की सहायता ली जाएगी प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान सांसद जोआना बेगोंजी का सवाल फोबाग बेलिया सड़क परियोजना पर आधारित रहा सांसद फाहादू मिया के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली जनवरी 2021 से 15 जुलाई 2026 के बीच 731 जुर्मों की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई जिनमें 690 जख्मी हुए प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने पैरास्टेटल बॉडीज के संचालन और कर्जों पर रोशनी डाली जिनका प्रत्यक्ष असर सरकारी खाते पर पड़ता है इनमें डीबीएम बैंक और मेट्रो एक्सप्रेस आदि शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल्स के आखिर में अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने स्पेन के खिलाड़ियों के प्रति जो बर्ताव किया उसके सिलसिले में फीफा की अनुशासन समिति अर्जेंटीना की टीम से जांच करेगी अगर किसी भी तरह किसी खिलाड़ी या कोच को गुनहगार पाया गया तो उसे सस्पेंड किया जाएगा और अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन को जुर्माना भी भरना पड़ेगा और यूरोपीय संघ ने चीन के सबसे बड़े ऑनलाइन व्यापार प्लेटफॉर्म अली एक्सप्रेस को $629 मिलियन का जुर्माना दिया क्योंकि ईयू के अनुसार अली एक्सप्रेस ने गैरकानूनी असुरक्षित और काउंटरफीट यानी जाली पैदावारों की बिक्री पर रोक नहीं लगाई है तो अभी के लिए बस इतना ही शोक समाचार सुनिए रेजिडेंस सत्यावती पाई दे गादू गांधी रोड लेस्पेरेंस कॉर्टिये मिलिटिया में 50 साल के 50 years old श्रीवीरा मुरुगन जो वीरा के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थी कल साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी कामिनी रेशमा मुरुगन के घर रेजिडेंस सत्यावती पाई दे गादू गांधी रोड लेस्पेरेंस कॉर्टिये मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लैग्रीमेंट सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास्ट नून शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है
5: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
6: You're listening to RM3 Radio Man.

0: सुहाना सफर।
1: चलिए सुहाना सफर का ये जो सफर है सेकंड आवर यहां पर शुरुआत हो चुकी है। समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का वेलकम हम करते हैं ऑन रेडियो मनोरंजन इन योर सुहाना सफर। मैं हूं सुमी, आप सभी का साथ दे रही हूं और यहां पर ढेर सारे मैसेजेस भी हमें मिल रहे हैं। यहां पर वीना जी नोवेल फ्रांस से हमारा साथ दे रही है। टुडे यू आर सेलिब्रेटिंग योर 45th बर्थडे। अगला गाना आपके नाम और आपके पूरे फैमिली की ओर से आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, खासकर आपके हस्बैंड देव की ओर से। और बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर आपने यहाँ पर भेजी है, आपने अपने और अपने हस्बैंड की। थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत है ये फोटो। एक्चुअली अगला गाना जो है सुबी जी आपके नाम हम करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं। वी हैव प्रीति, संजीव, धन, कमलेश, डैनी जगरू, गुडलैंड के सभी जगरू परिवारों के नाम ये तराना यहाँ पर बस चलने ही वाला है। और यहाँ पर एक मैसेज

मिस्टर राम, ओके ओके, थैंक यू मिस्टर राम आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए। और अनीता जी, चलिए गाना आपको पसंद आया, चलिए मौका मिला तो चिच्चोर फिल्म का गाना ये ज़रूर हम चलाने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, अभी के लिए ये गाना मुकेश साहब और आशा जी, यस आशा जी की आवाज़ों में।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चलिए आप हमारे फॉलोअर्स हमारे जितने भी लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये दो घंटे का सफर कब शुरू होता है कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता, तो थैंक यू सो मच। चलिए अगला जो गाना है बड़ा ही खूबसूरत सा गीत है, नाम फिल्म का ये तराना है, पंकज उदास और साथियों की आवाज़ों में चिट्ठी आई है। ये जो गाना है जाता है गंगाराम जी आपके नाम, आपकी ओर से अशोक सुखवंती केशनी कृति और जानव के लिए और सभी गंगाराम परिवार के नाम जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। विद्या जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार भरे साथ के लिए। उमा नयन जी जो गाना आप

मांगा है शायद वो नया तराना है नए गाने इस सेगमेंट में हम नहीं चलाते हैं फ्लावर ये गाना आपके लिए भी कारिशी मानिता यहाँ पर मनु शर्मा जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऐसे मनु शर्मा जी जो गाना आपने मांगा अगर थोड़ी देर में हमें मौका मिला तो उस गाने को हम ज़रूर आपके लिए डेडिकेट करेंगे ऐसे माला जरी जी भी हमारा हमेशा साथ देती हैं तो ये गाना माला जी आपके नाम भी हम करते हैं और नाम फिल्म का ये तराना शायद ही कोई होगा जिसे ये गाना पसंद नहीं होगा चलिए साथ मिलकर सुनते हैं

चलिए नाम फिल्म के इस गानों को आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया, आप लोगों को अच्छा लगा जानकर, हमें बड़ी खुशी हुई, थैंक यू सो मच। अगला जी तराना है हर दिल जो प्यार करेगा, संगम फिल्म का ये गाना होगा, लता जी मुकेश साहब और साथियों की आवाज़ों में। इंदिरा जी गाना आपके नाम हम करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ी हुई है। बिहार विकास काशिफ कुलराज जी आपके लिए भी ये गाना, रेजवी से रुकैया जी इस समय काम करते करते हमारे साथ जुड़ी है, तो थैंक यू सो सो मच। कृता महादू अगला गाना आपकी ओर से, आपके बॉयफ्रेंड आजागेन के नाम। तेज सनातन जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, वंडरफुल वंडरफुल ही है ना ये नाम, ओके। अनुराग जी आप भी हमारे साथ जुड़े हैं तो थैंक यू सो सो मच। तेज जी अगला गाना आपकी चाची आरती के नाम, जिनका बर्थडे है आज। चाची जी आरती जी आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम की ओर से। हेलो वीक कैसे हैं आप, विनान जी हाय कैसी हैं आप। ऑलराइट अगला गाना श्रद आपकी ओर से, आपके फ्रेंड साइलेश जगेसो के नाम हम डेडिकेट करते हैं, थैंक यू विक फॉर लाइकिंग द सिलेक्शन। ऐसे मोस्टली जितने भी गाने यहाँ पर चल रहे हैं वो आपकी फरमाइश पर ही हम चला रहे हैं। दया नमस्ते जी कैसे हैं आप। ओल्ड मूवी बॉयफ्रेंड का कोई गाना, ऑलराइट मौका मिला तो हम ज़रूर चलाएंगे फिया जी इस गाने को। तो चलिए हर दिल जो प्यार करेगा गाना चल पड़ा। और यही गाना अजय जी आपके नाम, आपका बर्थडे है, आपको आपकी बहन रंबा जी की ओर से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए पुराने गाने की ये जो दीवानगी है इसे हम आगे ले जाते हैं और अगले गाने के साथ। अब दादा आपका नाम हम जोड़ते हैं, ऐसे आपका नाम क्या है आप बताएंगे तो हमें जानकर खुशी होगी। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, ये खूबसूरत सा नजराना जगजीत सिंह और चित्रा जी की आवाज़ों में बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है। निर्देश जी इस गाने को आपके नाम भी हम करते हैं। फिर स्वराज है, मानन है, सेल्वन है, सभी हमारा साथ दे रहे हैं। उदास जी ये गाना आपके लिए भी, यही गाना पूजा आपकी ओर से आपके मामा सिमी, कविता और इंदिरा के नाम। पूजा जी अगर हमें मौका मिला तो नीलकमल फिल्म का गाना हम जरूर आपके लिए चलाएंगे। ऑलराइट

अच्छा हमारे लिसनर्स ऐसे हैं, फॉलोवर्स ऐसे हैं, हमें टिकटॉक पर देख भी रहे हैं और यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर रहे हैं। चलिए दोनों ओर से आप हमारे साथ कनेक्टेड है इसके लिए शुक्रिया। और ये तराना चल पड़ा।

0: कभी सोचा है
1: MVC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MVC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
0: सफर खाना सफर
2: चलिए यहाँ पर रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफ़र। ये जो प्रोग्राम है, काफ़ी ऐसे गाने हैं जो काफ़ी मेमोरेबल है, काफ़ी यादगार है, काफ़ी दिल के करीब है। ऐसे में जो अगला गाना चलने वाला है वो भी बहुत ही ख़ास है और हमें यकीन है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ये गाना नहीं पसंद है। सिलसिला फिल्म का ये जो गाना है, ये कहाँ आ गए हम यूँ ही साथ साथ चलते, ये जो गाना है ख़ास कर जाता है लालिता जी आपके नाम कालबाज से, आप हमारे साथ जुड़ी हुई है। गाना जाता है आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए और पूरे फैमिली के नाम जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। चांद राज जी फिजी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देन वी हैव नाज आल्सो फ्रॉम फिजी। रोहित जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी हैव अविनाश, वी हैव अरमानी, दीवा गर्ल, वीर सिंह, रावी नालगू जी और अगला गाना राजन जी, अनिल राजन जी आपकी ओर से आपके सभी दोस्तों के नाम हम करते हैं। कुबीर, मीरा, रोहित, रोहित जी आप सुरीनाम से हमारा साथ दे रहे हैं। रवि सीतल जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुसुम जो गाना आपने मांगा है, हमें मौका मिला तो हम ज़रूर आपके लिए चलाएंगे। अभी के लिए ये गाना आपके लिए। ओके okay?

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

ही है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए साथ साथ चलते चलते हमारा ये जो सुहाना सफ़र का जो सफ़र है वो ख़त्म होने को चला और यहाँ पर अगले गाने की ओर तब तक हम बढ़ते हैं। अगला जो गाना है, फाइनली हमें मौका मिला इस गाने को चलाने का, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। तो चलिए ये जो गाना है आप सभी के नाम जाता है, जिन जिन लोगों ने इन गाने की रिक्वेस्ट की है थैंक यू परी जी आपके इस मैसेज के लिए। चलिए आशा जी अगला गाना आपके नाम भी है। कविता तनवीर यूके से हमारे साथ जुड़े हैं, स्मिता नेपाल से हमारे साथ कनेक्टेड है, अमान की ओर से अगला गाना जाता है सभी जमन फैमिलीज के नाम। सिमला जी आपका बर्थडे है, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आपको हमारी पूरी टीम की ओर से। अगला गाना जाता है यश जी आपकी ओर से सलमा जी के नाम। आशी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आशी गाना केशव के नाम, आरोही के नाम और अर्णव के लिए भी। स्कॉटलैंड से सुरेखा जी भी हमारे साथ कनेक्टेड है। श्रीकांत जी आपका भी प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए दिल एक मंदिर फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम।

तो चलिए जितने भी हमारे लिसनर्स, जितने भी हमारे फॉलोअर्स रेडियो के ज़रिए टिकटॉक के ज़रिए हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी के साथ के लिए शुक्रिया। जाते जाते यह लवली सा तराना आप सबके नाम हम करते हैं और इसी के साथ जो है आज का हमारा सुहाना सफ़र ये प्रोग्राम जो है ख़त्म होने को चला। और बस ऐसे ही जब भी मौका मिलेगा रेडियो मनोरंजन से जुड़ते रहिएगा, हमारा साथ देते रहिएगा। 2 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार और उसके बाद रत्ना की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे प्रोग्राम उड़ान की कहानी, उनका साथ ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए हमारी ओर से नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और आज का दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छे से बीते। बाय।

0: खाना सफर।
1: जी हाँ, हंसते मुस्कुराते हुए कब इस सफर की शुरुआत हुई और कब ये सफर खत्म होने को चला आप लोगों के प्यार भरे साथ के साथ पता ही नहीं चला।

0: Center 95.5. North South 95.6. 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night.
3: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
4: नमस्कार आदाब. राष्ट्रसभा में प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन, प्रवासी कामगारों की भर्ती और कार्य शर्तों पर आधारित रहा विपक्ष नेता जुलेश होंगा. ने श्रम मंत्री से सवाल किया. मंत्री रजा उटीम ने स्पष्ट किया कि कंपनियों की सभी कार्य शर्तों पर गौर किया जाएगा और सभी ठेकों पर श्रम मंत्रालय की निगरानी होगी. ये उल्लेख किया गया कि 9000 टन गन्नों की कटनी नहीं की जा सकी क्योंकि कामगारों की कमी रही है, इसलिए गन्ना उद्योग के समर्थन में विदेश से कामगारों की सहायता ली जाएगी. प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान सांसद जोआना बेहोंशी का सवाल फोबाग बेलिया सड़क परियोजना पर आधारित रहा. सांसद फाकादोमिया के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली जनवरी 2021 से 15 जुलाई 2026 के बीच 731 जुर्मों की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई, जिनमें 690 जख्मी हुए. प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री ने पैरास्टेटल बॉडीज के संचालन और कर्जों पर रोशनी डाली, जिनका प्रत्यक्ष असर सरकारी खाते पर पड़ता है. इनमें डीबीएम, मोबैंक और मेट्रो एक्सप्रेस शामिल हैं. डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि मेट्रो एक्सप्रेस, मुर्शिद स्पोर्ट्स अथॉरिटी और अन्य संस्थाओं में नई नीतियां लागू की जा रही हैं ताकि गैर जरूरी खर्चे ना हों, क्योंकि पिछली सरकार ने अपनी पहली कार्यावधि के दौरान ही निवेश किए थे और तब के सुप्रशासन मंत्री गोशी बादे थे. विदेश में ग्रेट ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नाम ने आज ऐलान किया कि पहली अक्टूबर 2026 से सभी घरेलू बिजली बिल्स पर टैक्स की छूट होगी. इस कदम का मकसद लाखों लोगों को राहत पहुंचाना है और लोगों को बचत करने का मौका देकर उन्हें नई उम्मीद देना है. और अफगानिस्तान के परून शहर में जोरदार सैलाब उतर आया है. कम से कम 20 लोग जान से गए हैं और 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए. मूल ढांचों की कमी और जलवायु परिवर्तन के असरात अफगानिस्तान के असरात से अफगानिस्तान कुदरती आफतों के सामने कमज़ोर हैं. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. रेजिडेंस सत्यावती पाइडेगाडू गांधी रोड लेस्पिरंस कोचे मिलिटिया में 50 साल के 50 years old श्री वीरा मुरुगन जो वीरा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी कामिनी रेशमा मुरुगन के घर रेजिडेंस सत्यावती पाइडेगाडू गांधी रोड लेस्पिरंस कोचे मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लाग्रिमों सर्बिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 12:30. शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है.
0: Center 95.5. North South 95.6. 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. Udaan ki kahani. Udaan ki kahani.
4: दर्शकों का हृदय की गहराई से हम स्वागत करते हैं. मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ आज की उड़ान की कहानी को लेकर. और जैसे कि आप सभी को पता है, उड़ान की कहानी एक सशक्त महिला की कहानी जो समाज में अपना योगदान देती है. ना केवल समाज को आगे बढ़ाने के लिए पर देश के विकास में भी उनकी एक बहुत अहम भूमिका रही है. और आज की जो महिला है

0: वो दूसरी महिलाओं को सुंदर बनाने का प्रण ले चुकी है और बिल्कुल जैसे हर महिला सुंदर दिखना चाहती है। भाई सुंदर दिखना ये अधिकार है महिला का, कमजोरी नहीं। और हम तो यही कहेंगे कि हर औरत अपने आप को कमजोर नहीं पर सशक्त देखना चाहती है। तो चलिए आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी सशक्त महिला जो दूसरों को खूबसूरत बनाने में खुद का गर्व समझती है, खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती है। और इतना ही नहीं, जब दूसरी औरतें उनके हाथों से सुंदर बनती है तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती रीना नौरतन, जो कि एक एस्थेटिक है, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ एस्थेटिक इंजेक्टेबल प्रैक्टिशनर भी है। क्या होता है ये सारा आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे, पर चलिए पहले हम रीना जी का स्वागत करते हैं। रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे उड़ान की कहानी कार्यक्रम में।
1: थैंक यू रत्ना जी।
0: और आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल बिजी शेड्यूल को छोड़कर आज हमारे मेहमान बनी है, थैंक यू फॉर दैट, दिल से थैंक यू कहेंगे आप। हाँ बिल्कुल। और उड़ान की कहानी में आज हम आपकी कहानी जानेंगे, तो पहले तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी रीना जी, आप ये काम कितने सालों से कर रही हैं?
1: मैं ये काम 10 साल से कर रही हूँ। 10 साल हो गई जी मैं इस ब्यूटी इंडस्ट्री में हूँ। और मैं I like what I'm doing. मुझे अच्छी लगती हैं जो मैं करती हूँ।
0: बिल्कुल। और पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला?
1: इंस्पिरेशन मैं बचपन से, मुझे मेकअप स्किन केयर ये सब पसंद थी। पर जैसे कि पहले तो सोशल मीडिया नहीं थी, कम थी, इंटरनेट ये सब कम थी, पर मुझे बचपन से अच्छी लाइक आई लाइक टू डू इट। फिर बाद में मुझे इस फील्ड में और ज़्यादा
0: इंटरेस्ट
1: आई। देन मैंने बोला कि हाँ मैं ये चूज़ करूँगी।
0: ये चूज़ करेंगे तो आपने ये चूज़ करने के लिए यहाँ की मतलब ये फील्ड का जो ट्रेनिंग है वो आपने कहाँ से ली?
1: मैंने अपनी ट्रेनिंग जो है वो इंडिया से ली। मैंने न्यू दिल्ली लक्मे अकादमी से, वहाँ से मैंने शुरुआत की। मेरी पहली कोर्स लाइक बिगिनर्स हैं तो मैंने लक्मे अकादमी से प्राप्त की। फिर उसके बाद मैं एस्थेटिक मेडिसिन स्कूल में थी जो स्टिल न्यू दिल्ली में थी, और वहाँ पर मैंने अपनी कोर्स की और फिर इंटर्नशिप भी किया
0: वहीं से किया। ओके। और ये ड्यूरेशन कितना लंबा था?
1: तो पहले मेरे कोर्स 1 ईयर की थी जो बिगिनर थी 1 ईयर। फिर बाद में मैं लाइक एवरी ईयर मैं जाती हूँ इंडिया, टॉप अप कोर्सेज और हैंड ऑन प्रैक्टिस ट्रेनिंग ये सब मैं लाइक एवरी ईयर मैं इंडिया जाती हूँ,
0: वहाँ से
1: करती हूँ।
0: तो आप जब यहाँ से छोड़कर इंडिया गई थी, पहले आपने बताया कि पहले तो सोशल मीडिया वगैरह था नहीं, तो जब आप यहाँ से मतलब आपने ट्रेनिंग करने का सोचा और आप जब इंडिया गई, तो यहाँ से आप यहाँ पर पली बड़ी हैं, यहाँ का जो माहौल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जब आप वहाँ न्यू दिल्ली में गई पढ़ाई करने के लिए और वो भी 1 साल का ड्यूरेशन रहा, तो जब आपने वहाँ पर अपना कोर्स कम्प्लीट किया तो उस दौरान आपका पहला क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पर पहुँचने के बाद?
1: मैं बोलूँगी मॉरिशस छोड़कर मैं जब इंडिया गई दिल्ली, वहाँ हॉस्टल में रही पहले, लाइक इट वाज वेरी चैलेंजिंग। जैसे कि मॉरिशस और इंडिया इट्स डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस, फूड कल्चर शॉक, फूड और
0: एनवायरनमेंट,
1: पोल्यूशन, आई मीन नॉट बैड बट इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। अडाप्ट करना इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, स्पेशली कि आप, मैं स्टूडेंट थी, मैं हॉलीडे पर नहीं गई, मैं स्टूडेंट थी और स्टूडेंट लाइफ और हॉलीडे एक्टिविटीज इज डिफरेंट, तो इट वॉज नॉट ईजी। मेरे लाइक फ्रेंड्स भी नहीं थी, जो मैं अकादमी में थी वहाँ पर फ्रेंड्स नहीं थे, मैं अकेली मॉरिशियन थी, दूसरी लाइक देश से आई थी, पर मैं अकेली मॉरिशियन थी। देन इट वॉज डिफिकल्ट, मैं हिंदी समझती थी, आई कुड स्पीक, बट चैलेंजेस जो हैं होम सिक और You know,
0: different रहता
1: it was different.
0: और वो 1 साल के पीरियड में आप मॉरिशस आई थी या फिर एक कंटिन्यूस 1 ईयर आपने इंडिया में ही बिताया?
1: कंटिन्यूस मेरे कोर्स जो है वो भी इंटेंस थी, जैसे थ्योरी प्रैक्टिकल और इसमें बोला इंटर्नशिप। हमें भेजा गया था सैलून में इंटर्नशिप करने के लिए, लाइक मॉर्निंग में कोर्स था, आफ्टरनून प्रैक्टिस,

0: और फिर बैक स्टेज जो है मेकअप ये सब करती थी, तो इट वाज वेरी इंटेंस. और फिर हॉलीडे जब मिलती थी ओनली वन वीक, जैसे कुछ
1: तो इट वाज लाइक वहां फिर उतने समय के लिए आप भारत से मॉरिशस.
0: हाँ, तो मैं जैसे कि मैं वापस नहीं आई, इंस्टेड मैं इंडिया ही में थी. और
1: दूसरे सैक्रिफाइस किया बेसिकली, यही बोलना चाहिए कि आपने सैक्रिफाइस किया जी. तो रीना जी, आपने जब शुरू में अपने फैमिली से कहा कि मुझे ये फील्ड में जाना है, तो उनका रिएक्शन क्या था?
0: टू बी होनेस, उन्हें लगा कि मैं कॉर्पोरेट में काम कर रही थी, कॉर्पोरेट छोड़कर मैं क्यों अब लाइक स्टूडेंट फिर से पढ़ाई करना, लाइक स्टूडेंट और इसके बाद लाइक शुरू स्टार्टअप, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. उन्हें लगा कि
1: बहुत खराब डिसीजन है.
0: एग्जैक्टली, ये उन्हें लाइक नो, उन्हें नहीं पता था कि ये जो ब्यूटी इंडस्ट्री है ना, देयर सो लॉट
1: इज ग्रोइंग, जैसे हम कह सकते हैं कि आने वाले सालों में. और मैं समझती हूँ ये एक ऐसी फील्ड है जो शायद कभी सैचुरेट होगी, बिकॉज महिलाएं हमेशा अपग्रेड करती रहती हैं अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर, स्किन केयर को लेकर. और पहले उतना स्किन केयर नहीं हुआ करता था, पर आज के ज़माने में जिस तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं, इवॉल्व हो रहा है, तो मैं समझती हूँ ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर हो सकता है कि ये कभी सैचुरेट ना भी हो.
0: नहीं होंगे,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि
1: महिलाएं मेकअप लगाना नहीं छोड़ेंगे,
0: हम नहीं छोड़ेंगे. और फिर
1: कौन सी महिला खूबसूरत नहीं दिखना चाहेंगी?
0: ज्यादा से ज्यादा हमें लाइक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए मेकअप के लिए, ब्यूटी ग्लो स्किन ये सब जो इट वाज.
1: और जैसे हम लोग काम करते हैं इसमें, तो हमें पता है कि हर एक दिन इसमें नया नया कुछ ना कुछ इनोवेशन होता ही रहता है. और रीना जी, मैं पूछना चाहूंगी, आप जब कॉर्पोरेट जॉब की आप बात कर रहे हैं, तो आप किस फील्ड में थी पहले?
0: मैं फाइनेंस में थी पहले.
1: ओहो,
0: फाइनेंस बिजनेस एडमिन. मेरी मास्टर्स है बिजनेस एडमिन में. ये छोड़कर मुझे लाइक ब्यूटी इंडस्ट्री में जाना था. लाइक लोग कह रहे हैं ओ यू सीरियस, तुम क्यों ये करना चाहती हो? मैंने कहा क्योंकि मुझे आई वॉन्ट टू डू समथिंग.
1: एक तरह से जॉब सेटिस्फैक्शन, जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार होता है कि आप जिस जॉब में, भले आपने डिग्री हासिल कर ली, उस जॉब में आप काम भी कर रहे हो, अच्छी अच्छा सैलरी भी है, बट एक तरह का जो सेटिस्फैक्शन कहते हैं वो शायद कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता. इसीलिए हम वी लुक फॉर समथिंग, जैसे हम हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढते हैं. तो आपने वही किया कि आपने जाकर एक अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर आपने ब्यूटी के लाइन में, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपका ड्रीम जॉब था, आपका पैशन था, और आपने इस जॉब को
0: सिलेक्ट किया.
1: हाँ जी, बिल्कुल.
0: चैलेंजिंग मेरे लिए था.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं पूछना चाहूंगी रीना, जो आप जॉब करती थी, जैसे आप बिजनेस लाइन में थी, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में थी, तो अगेन यहाँ पर जब आपने एस्थेटिक का कोर्स किया, तो क्या जो आपने पढ़ा था या जो जिस फील्ड में आप माहिर थी, क्या ये आपको इस फील्ड में भी काम आया?
0: मैं बोलूंगी हाँ, बिल्कुल. क्योंकि मेरे जैसे कि मेरे मैनेजमेंट, फाइनेंस ये सब अभी तक
1: हेल्पफुल है.
0: हेल्पफुल है अभी अभी मैं ये सब करती थी, करती हूँ, क्योंकि मेरे बिजनेस है, मेरे एम्प्लॉइज हैं, स्टाफ हैं, तो उन्हें मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन, पेरोल ये सब अभी भी करती हूँ. शाम को जब घर जाती हूँ तो मैं एडमिन जॉब करती हूँ.
1: चलिए, बिल्कुल. और बिल्कुल, ये एक तरह से हम देखा जाए तो कहते हैं ना, कुछ भी खाली नहीं जाता, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता. जो भी आपने सीखा होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो आपके लाइफ में एड ऑन होता ही है. इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जिस फील्ड में आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि आगे जाकर इसी फील्ड को आप अपनाएं. हो सकता है कि आगे जाकर आप अपने ड्रीम जॉब को सिलेक्ट करें. और जैसे हमारे सामने साक्षात एक ऐसा एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने ड्रीम जॉब को सिलेक्ट करने के लिए वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ी, पर बहुत अच्छा कर रही हैं आज अपने ड्रीम जॉब के साथ. एक जॉब सेटिस्फैक्शन है, साथ ही साथ ग्रो कर रही हैं. पर ये सिनारियो 10 साल पहले ऐसा नहीं था. जी हाँ, रीना जी ने जब की थी शुरुआत, तो क्या था सिनारियो, आइए जानते हैं इस गीत के बाद. और बहुत ही लाजवाब कहानी.

0: की कहानी, उड़ान की कहानी।
1: जी हाँ, उड़ान की कहानी कार्यक्रम में मैं हूँ रत्ना, आपका साथ दे रही हूँ। और आज हमारे साथ जुड़ी हुई है श्रीमती रीना नौरतन जी, जो कि एक एस्थेटिशियन है, साथ ही साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक इंजेक्टेबल प्रैक्टिशनर है। अभी थोड़ी ही देर में जानेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है, पर उससे पहले हम ज़रूर पूछना चाहेंगे, रीना जी, जब आप मॉरिशस वापस आ गई और आपने सोचा कि अब आप अपना एक नया स्टार्टअप शुरू करेंगी, तो उस टाइम में सिनारियो क्या था? क्या लाइफ वाज इजी? क्या आपके लिए ये काम शुरू करना आसान था?
2: जब मैं इंडिया से वापस आई, देन आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, फ्रॉम
1: स्क्रैच। हाँ,
2: इट वाज नॉट इजी, क्योंकि मेरे लाइक आई डिडंट एनीवन टू हेल्प मी, जैसे गाइडेंस नहीं मिला, तो आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय मायसेल्फ। सो इजी नहीं था, जैसे कि सब कुछ पहले लाइक इस अब इजी है, बट 10 साल पहले एवरीथिंग हैड टू डू माई सेल्फ, लोकेशन, इक्विपमेंट, सब कुछ मैंने अपने आप की, लाइक फैमिली गिव्स इनकी हेल्प, बट प्रॉपर गाइडेंस नहीं था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कई बार ऐसे प्रोफेशन में आप जाते हैं जहाँ पर आपको कोई गाइडेंस ना मिले, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल, तो आपने जब शुरुआत किया, फिर जैसे

0: आज के ज़माने में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इन वोग है, जैसे बहुत कुछ भी हमें चाहिए तो टिप ऑफ फिंगर्स आपको मिल जाता है, पर 10 साल के पहले ये उतना ज़्यादा वास्ट नहीं था। उस टाइम पर आपने जब शुरुआत की थी तो क्या लोगों तक आपको पहुँचना कैसा था, डिफ़िकल्ट था, या लोग आप तक कैसे कॉन्टैक्ट करते थे, आप कैसे लोगों को ये बात आपने बताई कि आपने एक सलून खोला है जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, तो कैसे आपने मार्केटिंग किया था अपना?
1: पहले जब मैं स्टार्ट किया था ये सब, जैसे आज हमारे यहाँ वी हैव एवरीथिंग, ऑल टूल्स हैं, मार्केटिंग इज वेरी एडवांस, बट पहले नहीं था तो इट वाज डिफिकल्ट। मैंने अपने सैलून खोला था लाइक अभी तक है पोर्टविस में, तो क्लाइंट को रीच करना इट वाज डिफिकल्ट, कुछ लाइक फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स ये सब में लाइक माउस बोला, फिर देन वी यूज़ फेसबुक सोशल मीडिया ये सब यूज़ करती थी, और आज जो है सोशल मीडिया ये सब टिकटॉक
0: बहुत रैपिड है,
1: बहुत रैपिड, एवरीवन इज ऑन दिस, सब लोग इसमें हैं, देन इट्स मच इजियर उन्हें उनको पहुँचाना हमारे मैसेज, बट पहले डिफिकल्ट था। इट वॉज मेनली लाइक जैसे मार्केटिंग था प्राइमरी मार्केटिंग,
0: जैसे ट्रेडिशनल तरीका पहले होता था उसी तरीके से
1: फ्लायर्स
0: एडवर्टाइजमेंट वगैरह
1: ये सब करती थी, और फिर स्पॉन्सरशिप ये सब, इससे मुझे लाइक
0: क्लाइंटेल आपके बढ़े
1: और पीपल लाइक
0: पता चला
1: कि मैं मेरे सैलून है और मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, देन दे स्टार्ट करना।
0: तो आपने जब पहला, आपको आपको याद है आपका जो पहला क्लाइंट आपके यहाँ आया था उनका सेटिस्फैक्शन, या अगर आपको कुछ ऐसा याद है जो आपके पहले पहले जो क्लाइंट्स आते थे उनको देखकर उनके लिए क्या क्या फीडबैक्स, मतलब आपके लिए क्या फीडबैक उनको मिला और आपको कैसा सेटिस्फैक्शन मिला, कैसा फील हुआ था तब?
1: सेटिस्फैक्शन और उससे 100%, क्योंकि अभी तक वे मेरे सैलून में आते हैं और मुझे भी ढूंढते हैं, जैसे मेरे स्टाफ हैं जो सैलून में काम करते हैं मेरे साथ, पर वे मुझे ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें पर उन्हें I was the one who was doing that treatment, तो उन्हें लगा कि अभी तक वे मुझे ही ढूंढते हैं जब आते हैं, तो
0: आपके पास खास करके आपके
1: मेरे लिए आते हैं।
0: हाँ जी, तो ये एक सही बात है। और मैं समझती हूँ रीना जी, जब आपने शुरू किया था तो क्या तभी आपके साथ कोई स्टाफ जुड़ा था या फिर धीरे धीरे करके आपने स्टाफ को अपॉइंट किया?
1: जब मैंने शुरू किया था मैं अकेली थी, मैंने अकेली आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, और मेरे लाइक वीकेंड्स नहीं थे, सैटरडे संडे को इट वॉज बिजी, मैं अकेली करती थी, देन धीरे धीरे मैंने स्टाफ को एम्प्लॉय किया, तो अब मेरे लाइक एक टीम है।
0: ओके, तो आपके साथ कितने लोग काम करते हैं
1: अब? तो मेरे साथ 4 लोग हैं अभी।
0: ओके, मतलब एटलीस्ट, मतलब बिल्कुल, और एक तरह से ये एक होता है कि काम आपने बांट दिया, उनको ट्रेन कर दिया, उनको सिखा दिया किस तरह से करना है, तो एक तरह से आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ हम कह सकते हैं। पर जैसे आप बता रहे हो कि आपके जो क्लाइंट है वो केवल आपको ही ढूंढते हैं, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक प्लस पॉइंट है कि लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि एक जो महिला होती है, और जब हम सुंदरता की बात करते हैं, एक महिला जब अपने आप को आईने में देखती है, डेफिनेटली हर महिला चाहती है कि वो अपने आप को सुंदर महिलाओं की श्रेणी में प्राप्त करे, तो क्या क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है एक महिला को जब वो अपने आप को, जैसे आप मान लीजिए आपके यहाँ जो भी महिलाएं आती हैं मेकअप करने या वगैरह जो भी ट्रीटमेंट करने, और जब उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जब उनको अच्छा लगता है कि दे आर लुकिंग ब्यूटिफुल, जब आईने में देखती हैं अपने आप को उनको बहुत अच्छा फील होता है, तो आपके अनुसार एक महिला जब आईने में देखती है तो उनका क्या परसेप्शन होना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि जब वह एक महिला अपने आप को आईने में देखती है और खूबसूरत ब्यूटीफुल ग्लोइंग दिखती है, तो कॉन्फिडेंट लेवल जो है, जो आत्मविश्वास है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो लाइक अगर काम करती हैं तो स्टिल उसकी स्किन अच्छी लगती है, उनकी
0: स्माइल अच्छी है,
1: लाइक अच्छी फील होती है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है।
0: बिल्कुल, तो जैसे आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया कॉन्फिडेंट लेवल, तो मैं पूछना चाहूँगी रीना जी, खूबसूरत फील करना और कॉन्फिडेंट फील करना क्या डिफरेंस है इसमें?
1: मैं बोलूँगी कॉन्फिडेंट फील करना और खूबसूरत

0: सीखना पैरेलल जाती है,
1: ओके
0: साथ साथ जाते हैं. अगर आप ब्यूटीफुल दिखते हैं, कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. सो मेरी मानना है कि दोनों साथ साथ में चलते हैं.
1: ओके, यानी एक तरह से देखा जाए तो अगर आप डेफिनेटली जब सुबह अच्छे से आप तैयार होती हैं, अपने आप को आईने में देखती है, आपको लगता है कि आज मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ, तो मतलब आपका आपका एनर्जी लेवल एक दूसरे लेवल पर पहुंच जाता है. बिल्कुल. और मैं ये पूछना चाहूँगी कि कई बार होता है कि हम महिलाओं में, खासकर जब शादी हो जाती है, घर संभालना, पति संभालना, बच्चे संभालना, करियर संभालना, सोशल के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो सारे संभालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. पर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते, हम देते हैं प्रायोरिटी दूसरी चीज़ों को, मेरा घर, मेरा पति, मेरा बच्चा, एंड इन सारी चीज़ों में हम अपने आप को सेकंड सीट यानी बैक सीट पर डाल देते हैं. तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं आपसे 100%
1: सहमत है
0: सहमत हूँ.
1: ओके,
0: क्योंकि हम महिलाएं ना, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, घर के काम, बच्चे देखना, रसोई में कुकिंग, ये सब. और फिर हमारे जो है वो स्किन रूटीन बाद में आते हैं, लॉस्ट वन.
1: ट्रू.
0: सो ये आज से जो स्किन रूटीन है, इट हैज़ टू बी प्रायोरिटी. प्रायोरिटी होता है, इट हैज़ टू बी प्रायोरिटी. और जो जो काम है ना, साथ साथ में कर सकते हैं. जैसे कि हम किचन में है, स्टिल आप फेस मास्क डालो, फिर किचन में डाल, लाइक स्टिल वी आर डूइंग वर्क. सो लॉट्स ऑफ महिलाएं मैं देखती हूँ, उन्हें स्किन केयर ये सब समटाइम करते ही नहीं है. और फिर बाद में जब स्किन खराब हो जाती है, फिर वे आप हमारे पास आएंगे कि ये हुआ, देन इट्स गोना बी टू लेट.
1: बिल्कुल.
0: तो पहले घर घर से ही आप स्किन केयर रूटीन
1: जारी
0: रखना, यानी टू बी प्रायोरिटी,
1: यानी ऑलमोस्ट डेली नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 या 4 बार
0: मैं बोलूंगी. अगर डेली कर सकती हूँ, हाँ करो. अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 2 या 3 बार एटलीस्ट ए वीक में करो.
1: बिल्कुल. जैसे एक तरह से हेल्दी स्किन, जैसे हम हेल्दी शरीर की बात करते हैं तो हेल्दी स्किन, चेहरे का जो स्किन है उसे भी हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है. तो रीना, आप एस्थेटिक में हैं काफ़ी टाइम से, हैं जैसे आपने बताया 10 सालों से आप हैं. तो जब महिला की स्किन में, और जैसे जो वर्किंग लेडीज़ है या फिर जो रूटीन जो घर पर भी रहती हैं महिलाएँ, एक सर्टन एज के बाद उनको पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं होती है, यानी चेहरे पर कई बार काले धब्बे पड़ जाना, नोज़ एरिया, चिन एरिया, या गाल पर, या कई बार नेक एरिया पर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन यानी डार्कनेस शुरू हो जाता है. तो कहीं ना कहीं ये उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल कम कर देता है, उनको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होती है कि ये ठीक नहीं लग रहा है. तो इसके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी कि ये पिगमेंटेशन पहले तो क्यों होता है, आप उस पर अगर थोड़ा सा बता सकें, और क्या ये ट्रीट किया जा सकता है?
0: डेफिनेटली मैं बोलूँगी पिगमेंटेशन वो है वेरी कॉमन है, स्पेशली हम महिलाएं. एज वाइज मैं नहीं बोलूँगी कि आप 20, 30 या 40 पिगमेंटेशन है, इट्स वेरी कॉमन. जैसे कि हम विशेष में एक्सपोजर है, सन्स एक्सपोजर, पोल्यूशन, ये सब लाइक आती हैं.
1: बिल्कुल.
0: और हम एशियन स्किन है, एशियन स्किन इज डिफिकल्ट टू वर्क. तो हमारे यहाँ पिगमेंटेशन इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम. तो हम मेरे यहाँ बहुत महिलाएँ आती हैं जो पिगमेंटेशन है, मेलास्मा, ये सब उनको ट्रीट करते हैं. और उन्हें ट्रीट करना, जैसे मैं बोलूँगी वे मुझे लाइक सलून में कंसल्टेशन के लिए आते हैं, और मैं उनकी बेसिस लाइक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है उनके साथ.
1: अच्छा.
0: लाइक जेनेवर ट्रीटमेंट नहीं है. जैसे आपकी स्किन कंडीशन, आपकी स्किन टाइप और आपकी लाइफस्टाइल, ये सब मुझे जानना है, फिर आपको एक लाइक पर्सनलाइज प्लान
1: तैयार किया जाता है.
0: तो इट इज वेरी पर्सनलाइज. जैसे कि मैं नहीं बोलूँगी आपको, आपके पिगमेंटेशन है तो सिर्फ ये यूज करना, नहीं. लाइक स्किन केयर
1: ए टू जेड से लेके, मतलब आप सब कुछ उसे केयर, जितना भी जो भी ट्रीटमेंट में होता है, उसके अलावा क्या खाना, क्या पीना, कैसे रहना, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें आप ऐड करते हैं.
0: मुझे सब कुछ जाना है लाइक कंसल्टेशन में, फिर उन
1: उसके अनुसार
0: मैं प्लान करूँगी. और ट्रीटमेंट वाइज मैं इस डिफिकल्टी से कितनी ट्रीटमेंट होगा, लाइक इट कैन बी 6, इट कैन गो अप टू 10 ट्रीटमेंट पर भी हो सकती है, देन फॉलो अप करना पड़ेगा.
1: ओके. और ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए 10 ट्रीटमेंट हो गई, 10 सेशंस हो गए, तो क्या ये पिगमेंटेशन फिर लाइफ लॉन्ग रहता है, या फिर हो सकता है कि अगर आपने ट्रीटमेंट छोड़ दी और उसके बाद फॉलो अप नहीं किया और बैक टू दैट नॉर्मल लाइफ आप वापस आते हो, तो क्या पिगमेंटेशन

0: वापस होना शुरू कर हो सकता है?
1: इट कैन बी, इट कैन बी, आई वुडंट से नो, इट कैन कम बैक अगेन अगर आप लाइक
0: केयर ना करें,
1: केयर नहीं कर सकते, केयर नहीं करें तो इट कैन कम बैक. और जैसे लाइक आप 10 ट्रीटमेंट के बाद शायद लाइक वन और दो सेटिंग लेना पड़ेगा, तो इट हैज टू बी फुल.
0: तो रीना, आपके यहाँ क्या ऐसे भी केसेस आते हैं जो सीवियर एक्ने प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पर मैंने देखा है कि हम लोग ट्रॉपिकल आइलैंड में रहते हैं और यहाँ पर कई सारे यंगस्टर्स जो है, यंग लड़कियाँ हैं, यंग लड़के हैं, उनको सीवियर एक्ने की प्रॉब्लम है. या तो फिर आप फेस एक्ने ले लो, चीक पर देख लो, या तो फिर आपके बॉडी पर या बैक पर बहुत बैक एक्ने हो जाता है, या कई बार आर्म्स एरिया में, यानी यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लड़कों को या लड़कियों को बहुत सारी एक्ने होती है. तो क्या ऐसे प्रॉब्लम्स को भी आप ट्रीट करती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, हम ट्रीट करते हैं लाइक एक्ने, सीवियर एक्ने, और लाइक इट्स वेरी कॉमन. तो हाँ, उनके ट्रीटमेंट भी हमारे, ये जो है एडवांस ट्रीटमेंट होती है.
0: अच्छा.
1: एडवांस ट्रीटमेंट, डिफरेंट इक्विपमेंट, मशीन आती है. और अगेन एक्ने का भी उनकी लाइक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होती है.
0: अच्छा.
1: एडल्ट एक्ने है, टीनेजर्स एक्ने, उनके
0: डिफरेंट डिफरेंट स्किन टाइप्स का होता है.
1: बैक एक्ने, ये सब लाइक लाइफ स्टाइल, ये सब जानना पड़ेगा, फिर उनके अकॉर्डिंग तो हम प्लान करते हैं.
0: उनके लिए कोई मतलब खास कोई ऐसे ऑइंटमेंट्स या ऐसा कुछ आप रेकमेंड करती हैं?
1: हाँ, हम रिकमेंड करते हैं जो लाइक केमिस्ट के पास ले सकते हैं, और ट्रीटमेंट इन सलून करते हैं, और खाने पीने लाइक लाइफ स्टाइल, इट हैव टू बी लाइक सीवियर डाइट,
0: बिल्कुल उसके अनुसार आपको फॉलो करना है. कई बार ऐसा भी होता है कि एलर्जी की वजह से भी बहुत सारों को एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स आई बिलीव रहती है.
1: और एक्ने वाले लाइक एक्ने स्किन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कौन सी क्रीम या क्या डाल रही है स्किन पर, ये इंग्रेडिएंट, ये सब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
0: बिल्कुल. और रीना, आपके यहाँ पर आपके सलून में कैसे कैसे समस्याओं को आप अब तक ट्रीट कर चुकी हैं, मतलब कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स या हेयर प्रॉब्लम्स, आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अभी तक देखी हैं?
1: तो हमारे यहाँ महिलाएं आती हैं 20s, 30s, 40s, लाइक नॉट ही महिलाएं, पुरुष भी आते हैं.
0: अच्छा, मतलब आपके सलून में इट्स अ यूनिसेक्स, जैसे आप दोनों को देखते हैं?
1: हाँ, पुरुष भी आते हैं.
0: ओके.
1: और जो स्किन ट्रीट लाइक स्किन कंडीशन, स्किन कंसर्न है, जो जैसे कि रिंकल्स है, एंटी एजिंग, मेलास्मा लाइक सिंचाई, और फिर एक्ने प्रॉब्लम, सागी, लैक ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब लाइक डार्क सर्कल, और कुछ लोग को अनइवन स्किन टोन, ये सब प्रॉब्लम हम हमारे यहाँ ट्रीट करते हैं.
0: ओके. तो मतलब आपने जैसे कहा कि यूनिसेक्स है, यानी पुरुष भी आते हैं और महिलाएं भी आती हैं. और जब हम महिलाओं की खासकर बात करते हैं, तो एक सर्टन एज के बाद बहुत सारे महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बहुत सारी महिलाओं को कंप्लेन होता है कि उनके चिन एरिया पर बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है. तो क्या ऐसी ट्रीटमेंट भी आप करती हैं?
1: हाँ डेफिनेटली, जो हार्मोन इंबैलेंस है वो डिफरेंट एरिया को टारगेट करती हैं, जैसे फेस, अंडर आर्म, इनर थाइस, ये सब. और इनके हमारे यहाँ भी ट्रीटमेंट है, वो डिस्क में एडवांस ट्रीटमेंट है, लेज़र ये भी करते हैं. बट उनके रिजल्ट हैं, वो उनके रिजल्ट पर्सनलाइज डिपेंड है आपके शरीर पर, आपके लाइफ स्टाइल, क्या लाइक
0: हो सकता है कि किसी का 5 सीटिंग में ही क्लीन हो जाए, या किसी को बहुत ज्यादा सीटिंग्स लेनी पड़े, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स, बहुत ज्यादा सेशंस करने पड़े. आई बिलीव
1: बट ये वेरी कॉमन है कि हम महिलाएं वो इनबैलेंस
0: हार्मोन्स का शिकार होती हैं. बिल्कुल. तो आज के इस कार्यक्रम में, जी हाँ, जहाँ पर हम खूबसूरती की बातें करते हैं, खूबसूरत दिखना इतना आसान काम नहीं होता, और जहाँ पर हम छोटी छोटी बातें, और आजकल जब हम थ्रेडिंग, वैक्सिंग जैसी समस्याएं, एपिलेशन जैसे हम कहते हैं, लोगों को लगता है कि ये बहुत ही आसान होता है, पर जी नहीं, इसमें भी बहुत दर्द झेलना पड़ता है. पर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी एक्सपर्ट जो इन सारी समस्याओं को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करती हैं, और आज तक उन्होंने कई सारी महिलाओं को अब तक बहुत खुश किया है, और आज तक वे उनको मिलने आती हैं अपनी ट्रीटमेंट, खासकर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट जो है, कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं, कि हर इंसान की जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल उनके अनुसार, उनके शरीर, उनके बॉडी एजिंग के अनुसार होती है. तो ज़रूर हमारे साथ बने रहें उड़ान की कहानी में. अभी थोड़ी ही देर में हम आपसे शेयर करेंगे कि रीना जी का सलून पाया कहाँ जाता है, उनका नंबर क्या है, जिससे कि आप उनसे भी संपर्क रख सके. आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे उड़ान की कहानी, जो है रीना जी की कहानी.

0: 到。
1: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. उड़ान की कहानी, उड़ान की कहानी, उड़ान की कहानी, सशक्त महिला की कहानी। आज हमारे साथ एक ऐसी एस्थेटिशियन जुड़ी हुई हैं जो नए नए तकनीकों के साथ सुंदरता के ऊपर काम कर रही हैं, ना केवल चेहरा पर आपकी स्किन, आपके बालों की सुंदरता, आपके नाखून की सुंदरता और किस तरह से इसे बरकरार रखा जाए इस पर बहुत काम किया जा रहा है। और ये हर बार अपग्रेड करना, इसके नए तकनीकों को अपनाना और इस पर कैसे कहते हैं कि लोगों तक ये सेवाएं प्रदान करवाना, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और बिल्कुल रीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और आज हम जब इनोवेशन की बात करते हैं, इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो आपने भाई पहले कहाँ बोटॉक्स हुआ करता था, पहले कहाँ फिलर्स हुआ करते थे, पर आजकल ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक मोड ऑफ लाइफ बन चुका है। और आज बहुत सारे ऐसी महिलाएँ हैं, ऐसे पुरुष हैं जो इस तकनीक को अपने शरीर को बिल्कुल सुंदर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं रीना जी से कि बोटॉक्स, फिलर्स या फिर प्रोफिलियो ये क्या है, ये किस तरह से इस्तेमाल होता है और क्या ये हेल्दी है, ये क्या डैमेज तो नहीं करता हमें। आइए जानते हैं रीना जी से। रीना जी, जब हम बोटॉक्स की बात करते हैं, पहले के ज़माने में हमने कभी बोटॉक्स जैसी चीज़ सुनी नहीं थी, पर बोटॉक्स क्या होता है, फिलर क्या होता है, प्रोफिलो क्या होता है, ये हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएँ।
2: बिल्कुल, बोटॉक्स, फिलर, प्रोफाइलो ये सब पहले नहीं था, जैसे लाइक था पर इट वाज नॉट कॉमन। तो अब इन लाइक जो हमारे लाइफ है, इट्स गोइंग सो फास्ट, बिजी लाइफ में तो हमें महिलाएं लाइक इवन पुरुष को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अगर हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो हम इंजेक्टेबल्स पर जाते हैं, जैसे कि आपके रिंकल्स हैं, एंटी एजिंग, जो आप क्रीम यूज़ करेंगे घर पर एटलीस्ट 6 या 7 मंथ्स तक, फिर उसके बाद रिजल्ट
1: दिखाई देता है।
2: एग्जैक्टली, और जैसे कि आपने बोला कि और मैंने बोला कि हम बिजी लाइफ होती हैं तो समटाइम्स घर आते हैं काम के बाद, वी आर सो टायर्ड, भूल जाते हैं क्रीम डालना, रोज लाइक सीरम डालना भूल जाते हैं। तो लाइक अगर आप ये मिस करते हैं देन रिजल्ट इमिडिएटली नहीं आती। तो अगर आपको इमिडिएट रिजल्ट चाहिए तो आप इंजेक्शन करें, इंजेक्टेबल्स जैसे बोटॉक्स, वो एजिंग को रिवर्स करती है, आप 10 साल यंगर दिखती हैं।
1: ओहो,
2: और आपके फेस पर अगर रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, क्रूल लाइन्स जो आती हैं नियर द आईज, तो हम ये सब फिलर बोटॉक्स से
1: कम कर सकते हैं,
2: इमीडिएटली हो जाती है।
1: मतलब मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को बहुत सारी रिंकल्स हैं, खासकर आंखों के एरिया पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ जमा होना शुरू हो जाता है, लगभग आप देखिए कि अभी आजकल तो 45 के पहुँचते ही आपको ये रिंकल्स नज़र आते हैं, तो जब वो इंजेक्ट करवाते हैं या इंजेक्शन लेते हैं तो ये कितने टाइम के अंदर, मतलब क्या तुरंत उसका रिजल्ट दिखाई देता है?
2: कुछ इंजेक्शन जो हैं डिपेंड जो क्या कर रहे हैं उनके रिजल्ट, कुछ लाइक बोटॉक्स जो हैं 1 आवर में आ जाती हैं, उनके रिजल्ट आ जाती हैं।
1: ओके,
2: फिलर, प्रोफाइलो ये सब कुछ टाइम के बाद, जैसे कि आज से 1 वीक के बाद रिजल्ट आ जाती हैं और उनमें कंसिस्टेंसी हो जाती है कि आप एक बार करेंगे फिर हम बोलेंगे ओके आपको दूसरी इंजेक्ट लाइक इन दूसरी शॉट जो है 1 मंथ के बाद लेना चाहिए और फिर 1 ईयर के बाद, तो आप कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ एक बार किया और
1: छोड़ दिया
2: इट्स नॉट लाइफ टाइम रिजल्ट नहीं आएगा, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट और लाइक फॉलो अप करना पड़ता है।
1: ओके,
2: तो यानी रिजल्ट इंस्टेंट हो जाती है,
1: मतलब आपको तुरंत दिखाई देता है। और क्या ये हेल्दी होता है, क्या ये इसका कोई रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं होता?
2: टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूंगी कि सब व्हाट एवर वी डू वी हैव टू डू मॉडरेटली करेंगे तो इट्स फाइन, अगर एक्सेसिवली करेंगे देन इट कैन बी डेंजरस। और वो इंजेक्टेबल करने से पहले हमें हेल्थ मेडिकल हिस्ट्री जानना पड़ता है,
1: आपकी यानी किसी एलर्जीज या ऐसे कुछ अगर है तो हो सकता है कि उनको प्रिकॉशन लेना पड़े।
2: डेफिनेटली, इट्स नॉट डेंजरस, व्हाट टू डू इट मॉडरेटली।
1: और बिल्कुल जैसे आजकल हमने कहा ना कि ये एक

0: मोड ऑफ लाइफ बनता जा रहा है,
1: ट्रेंड हो जाए,
0: एक ट्रेंड होता जा रहा है, ये ट्रेंडिंग है. बिकॉज आजकल मैं समझती हूँ, देखिए जब जहाँ पर हम लोग बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, कई बार कहते हैं ना कि पब्लिक फिगर है, पब्लिक के साथ डील करना है, कई बार ग्लैमर वर्ल्ड में है, कई बार मॉडलिंग के क्षेत्र में है, तो ऐसे ऐसे कई कई सारे हम कह सकते हैं कि प्रोफेशंस हैं जहाँ पर आपकी स्किन केयर को बहुत ज़्यादा मायने दिया जाता है. और बिल्कुल स्किन केयर, अगर आप जैसे शुरुआत में हमने कहा कि अगर आप सुंदर दिखते हैं तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, आप अपने आप को एक अलग एनर्जी के साथ महसूस करते हैं और एक अच्छी प्रोडक्टिविटी आप दे पाते हैं. इसीलिए कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेंड के साथ बदलना भी भाई स्वाभाविक बन जाता है. और आज हम बात कर रहे हैं इन्हीं सारी चीज़ों के. और यहाँ पर हमारे साथ रीना जी जो हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं इन फील्ड, इस फील्ड के साथ एस्थेटिक में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं. तो यहाँ पर जब हम डार्क सर्कल्स की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जिनको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो क्या डार्क सर्कल्स भी बोटॉक्स के द्वारा या फिर फिलर्स के द्वारा ठीक किया जा सकता है?
1: डार्क सर्कल के लिए हमारे पास इंजेक्टेबल्स हैं, लाइक हम उनको ट्रीट कर सकते हैं
0: जी,
1: पर यू हैव टू बी, जैसे कि इन द आईज एरिया है वो भी सेंसिटिव होती है, तो वी हैव टू बी लाइक प्रोफेशनली, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेन है तो आप कर सकते हैं
0: जी.
1: और जैसे लाइक फाइन लाइन्स लाइक वेन्स ये सब इन द आईज आते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल जब हम इंजेक्ट करते हैं, पर उन इनके ट्रीटमेंट हैं इंजेक्टेबल से जाती हैं, जैसे लाइक क्रीम सीरम से. अब मुझे लगता है कि लाइक हम सब ने यूज किया,
0: टाइम लगता है पर
1: इंजेक्टेबल से है उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है.
0: बिल्कुल, आजकल सब कुछ स्नैपिंग फिंगर्स पर लोगों को चाहिए, यानी चुटकी बजाओ और बस उपाय पाओ, और ऐसा ही जमाना आ गया है, इजी हो गया है, बहुत ज्यादा इजी. तो इजी के साथ हमें थोड़ा चीजी बनना पड़ेगा और ऐसी चीजों को हम अपना सकते हैं. और जैसे रीना जी बता रही हैं, ये काफी हद तक सेफ है, पर डेफिनेटली आपको एक गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए उनकी हेल्थ हिस्ट्री जानना कि क्या उनका लाइफस्टाइल किस तरह का है, ये सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद ही कस्टमाइज किया जाता है उनका ट्रीटमेंट. और बेशक हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट के बाद, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को ये फिलर्स करवाए हैं या बोटॉक्स करवाए हैं, तो उसके बाद क्या उन्हें अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए कोई अलग से ध्यान रखना पड़ता है, या फिर उनको आप एक रूटीन चार्ट बना कर देती हैं जो उन्हें फॉलो करना पड़ता है?
1: यस डेफिनेटली, उन्हें लाइक जैसे आप बोटॉक्स फिलर करेंगे, इट्स नॉट लाइक आपने किया और हो गया, नहीं, लाइक फॉलोअप करना पड़ता है, फॉलोअप और जैसे देखने पड़ेगा कि और कितनी ml डालते हैं, ये सब जानना पड़ेगा, लाइक अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए और कैसे लुक चाहिए, और जैसे कि इसके बाद डेफिनेटली फॉलोअप करना पड़ता है, पड़ता है डेफिनेटली.
0: ओके, और रीना जी आपके सलून में केवल बालों, केवल स्किन को लेकर होता है ट्रीटमेंट, या फिर बालों को लेकर भी आप गाइडेंस देती हैं या ट्रीट करती हैं बालों के लिए भी?
1: अभी तो फॉर द मोमेंट मेरे सलून में सिर्फ एस्थेटिक है, लाइक स्किन केयर, बॉडी ट्रीटमेंट, ये सब, नेल्स, वॉक्सिंग, लेजर, ये सब चलती हैं. हेयर पर लाइक हेयर मैंने शुरू नहीं किया, मेरे स्मॉल स्पेस है, तो शायद जब
0: एक्सपैंड करेंगे, यानी ये एक तरह से देखा जाए तो आपके फ्यूचर प्लान्स में ये शामिल कर सकती हैं, मतलब आपने सोचा है कि इस फील्ड में भी आप आगे बढ़कर इसको एक्सपैंड करेंगी?
1: हाँ डेफिनेटली, मैं ट्रेन हो गई हूँ हेयर ट्रीटमेंट पर, बट शायद ये मेरी लाइक फ्यूचर प्लान होगा.
0: ओके, तो बिल्कुल जैसे आप बता रही हैं कि हो सकता है कि आप बिल्कुल आपने इसमें ट्रेनिंग ले ली है आपने, तो मैं ये इसमें ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आजकल कम एज में भी बहुत सारे लोगों को बाल झड़ने की समस्या बहुत तेज़ी से आ रही है. मैं समझती हूँ तनाव भरा जीवन है, स्ट्रेसफुल लाइफ भी एक तरह से फैक्टर हो सकता है, तो क्या इसमें भी मतलब अगेन उसको रिवर्स करना, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर बाल पूरी तरह से चले गए हैं, जैसे गंजापन आ गया है, क्या वहाँ पर फिर से बाल उगाना ये हो सकता है, क्या ये संभव है?
1: हाँ डेफिनेटली हो सकता है, ये अगर आपको सर्जरी नहीं करना
0: करनी है, हाँ,
1: तो आप इंजेक्टेबल्स कर सकते हैं, जैसे कि हम हेयर थिनिन, अगर कुछ एरिया जो स्कैल्प पर आपके बाल गिर रहे हैं तो उन एरिया पर हम एक स्पेसिफिक इंजेक्शन है
0: जी,
1: तो हम ये कैसे स्कैल्प पर पहले लाइक हम ये कर सकते हैं, अगर इस ये काम नहीं कर सकते हैं फिर आप हेयर इम्प्लांट कटेंगे।

0: जो पहले नहीं था, पहले सिर्फ हेयर इम्प्लांट था, तो अब लाइक हमारी लाइक जैसे न्यू टेक्नोलॉजी है ना, तो ये ट्रीटमेंट भी है मार्केट पर, तो ये ट्राई करना, अगर नहीं हो सकता देन आप दूसरी
1: ओके okay. और जैसे बेसिकली आप जब एस्थेटिक इंजेक्टेबल प्रैक्टिशनर है, तो ये जो इंजेक्टेबल जितनी भी प्रैक्टिसेस

0: बेसिकली जैसे आपने कहा बोटॉक्स है, फिलर है, उसके अलावा किन किन चीज़ों के लिए इंजेक्टेबल्स यूज़ किए जाते हैं?
1: जैसे कि आपको हाइड्रेशन चाहिए स्किन पर,
0: हाँ,
1: लाइक प्रॉपर हाइड्रेशन, हाइड्रेटिंग स्किन, जैसे कि आप हम आपको देखेंगे तो आपकी स्किन
0: हद से ज़्यादा ड्राई है,
1: ड्राई है, हाँ. तो अगर आपको लाइक प्रॉपर हाइड्रेटिंग स्किन चाहिए तो इसके भी इंजेक्शन है हाइड्रेटिंग के लिए, और जैसे प्रोफाइल ये सब हाइड्रेटिंग है. और अगर आपको जो लाइन प्रॉपर जो लाइन चाहिए, क्लम्पिंग स्किन है, ये सब इंजेक्शन, लाइक वी हैव लॉट्स ऑफ इंजेक्शन फेस पर.
0: हाँ, तो ये केवल फेस के लिए होते हैं?
1: ये फेस और अंदर आर्म के लिए, अगर आपके एक्सेसिव स्वेटिंग होती है ना,
0: हाँ,
1: तो इसके लिए भी हमारे यहाँ इंजेक्शन होती है.
0: ओके, यानी हम ये कह सकते हैं कि कई सारे लोगों को जैसे अंडर आर्म डार्कनिंग हो जाता है, या फिर वेस्ट लाइन एरिया पर डार्कनिंग हो जाता है, नेक लाइन एरिया पर डार्कनिंग हो जाता है, तो क्या ये ट्रीटमेंट भी इन सारी चीज़ों से क्योर की जा सकती है?
1: इनकी ट्रीटमेंट है,
0: हाँ,
1: है, लाइक इट्स नॉट कॉमन, मॉरिशस में कम है, बट है इनकी ट्रीटमेंट, इंजेक्शन से, लाइक हाफ वी हैव इनकी ट्रीटमेंट होती है.
0: ओके, और जैसे इस केवल इंजेक्शन के द्वारा ही, या फिर बॉडी केयर, या फिर आप जैसे बोलते हैं कि कोई ऐसी अलग से उनको ट्रीटमेंट भी दी जाती है, या स्किन केयर के लिए भी उनको सजेस्ट किया जाता है?
1: हाँ हाँ, डेफिनेटली उनकी लाइक स्किन केयर, लाइक इंजेक्शन के बाद फॉलो अप होम केयर आती है इसके साथ, होम किट है, आती है, सिर्फ इंजेक्शन.
0: ओके, तो यानी उसके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये भी आपके पास अवेलेबल होते हैं कि कौन से अवेलेबल, मतलब कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करना है, या फिर उनको आप रिकमेंड करती हैं कौन से बाज़ार से, दूसरे कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स वे यूज़ करना चाहें? तो
1: मेरे यहाँ है कुछ, लाइक कुछ मैंने लाइक मैं बेचती हूँ, और अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं उन्हें केमिस्ट के पास
0: रेकमेंड
1: करते हैं. होम केयर है हमारे पास, अगर नहीं है देन फिर केमिस्ट के पास बेचते हैं.
0: और जैसे मान लीजिए आज के समय में तो हम बिल्कुल, हमारे साथ ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी यंग लड़कियां हैं जो एस्थेटिक को एज अ प्रोफेशन बनाना चाहती हैं, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि 10 साल पहले आपके लिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, कि आपको गाइडेंस नहीं थी, आप नहीं जानती थी. और जब हमारा ब्रीफिंग सेशन चल रहा था तब रीना जी ने कहा कि उनको केवल एक साल लगा था रिसर्च के लिए कि उन्हें ये सारी जो स्टडीज़ है कहाँ पर करनी है. तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी रीना जी, पहले तो हमारा ये कहीं ना कहीं ये बीच में एक सवाल छूट गया था कि आपने न्यू दिल्ली ही क्यों चुना, आप क्यों इंडिया ही आपने क्यों चुना जाकर? आप कहीं और भी, मतलब आप विदेश कहीं वेस्टर्न कंट्रीज में भी जाकर सीख सकती थी. और हालांकि आज के समय में देखा जाए तो कोरिया बहुत इस ब्यूटी मार्केट में, तो कोरिया के जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वर्ल्ड फेमस होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं बहुत लोग पसंद करते हैं. तो आपने केवल न्यू दिल्ली को ही क्यों चुना?
1: जैसे आपने बोला था कि मैं इट टुक मी 1 ईयर, मैंने रिसर्च किया कहाँ मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे लाइक स्टार्टअप करनी है, कहाँ मैं कोर्स जाऊँ, कौन सी अकादमी में जाऊँ. मैंने लाइक यूरोप या इंडिया दोनों स्टडी किया, और डिफरेंट अकादमी वहाँ से मैंने इंक्वायरी किया, मैसेज भेजा, ईमेल, और इंडिया में भी. फिर मैंने लाइक क्यों इंडिया चूज़ किया, क्योंकि हमारे लव जो है वो एशियन स्किन है, और एशियन स्किन इट्स वेल नोन फॉर वी हैव ऑल द डिफिकल्टीज, जो वर्ल्ड प्रॉब्लम है हमारे एशियन स्किन में आती है. तो हमारा लाइक इट्स मोर डिफिकल्ट एशियन स्किन पर काम करना, इसलिए मैंने इंडिया, और इंडिया है लाइक जो इंडिया है वो इट्स वेरी एडवांस, जो स्किन केयर इन स्किन लाइक टेक्नोलॉजी में इट्स वेरी एडवांस, तो इसीलिए मैंने इंडिया को चूज किया. और न्यू दिल्ली इट वाज बिकॉज आई मीन मैं न्यू दिल्ली और मुंबई दोनों जाती हूँ.
0: एक कॉस्मोपॉलिटन कंट्री, एक सिटी है, और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एडवांस सारी चीज़ें मिल जाती हैं.
1: सो मैं अब आई स्टार्टेड विद न्यू दिल्ली, फिर बाद में मैं मुंबई जाती हूँ, बट दोनों बट स्टिल आई एम कनेक्टेड टू इंडिया
0: ऑफकोर्स. और यहाँ पर जितनी सारी महिलाएं इस वक्त देख रही हैं, क्या मान लीजिए अगर कोई महिला 40s के अबव है, 50s के क्रोमियली टच हो चुकी है, और अगर वो इस सा ये उम्र में अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, हो सकता है बेसिकली एस्थेटिक के लिए, तो क्या उसके लिए कोई स्कोप है इस फील्ड में? और अगर है तो आप उनको क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगी?
1: डेफिनेटली मैं महिलाओं को बोलूँगी, एज इज़ नॉट, अगर आपको स्टडी करना है एज जैसे नंबर, अगर आप इवन 40, 50 या 60 में

0: शुरू करना चाहती हैं
1: पैशन है अगर आपको, हाँ
0: है, आप कर सकते हैं, पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोफेशनली करना, प्रोफेशनली अकादमी चूज करना और प्रोफेशनली सब कुछ करना. प्रोफेशनल अकादमी जैसे लाइक छोटी मोटी जो है
1: ऐसे ही देख कर नहीं सीखे, exactly. उसको सीखना है तो बकायदा करना,
0: एग्जैक्टली हैंड्स ऑन थ्योरी ये सब सीखकर फिर आप मार्केट में आना. और उनके स्कोप है, हम ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री कभी मरती नहीं,
1: बिल्कुल कभी बंद नहीं होगा. एक फूड इंडस्ट्री एक ऐसा है और एक मैं समझती हूँ ब्यूटी इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप हमेशा ग्रो कर सकते हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेट कर सकते हो. और डेफिनेटली रीना आप एक महिला हैं और मैं समझती हूँ बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए, तो मेरा आखिरी सवाल यही होगा, वुमेन एम्पावरमेंट आपके लिए क्या है?
0: वुमेन एम्पावरमेंट और से इज़ वेरी ह्यूज दूसरी महिलाओं को सपोर्ट देना, हेल्प करना जो मैं करती हूँ, देन इट्स वेरी वी नीड दिस. हम सब महिलाएं वी नीड दिस गाइडेंस ये सब, क्योंकि इट्स नो मीनिंग कि हम कुछ करना चाहते हैं पर
1: सपोर्ट
0: नहीं है. तो हम लाइक आई एम इन मेनी महिलाएं ग्रुप में मैं जाती हूँ मीटिंग्स ये सब, तो गाइडेंस सपोर्ट देती हूँ और ट्रेनिंग ये सब अगर कुछ चाहिए एनी सपोर्ट मैं देती हूँ.
1: बिल्कुल. और मेरा बिल्कुल लास्ट सवाल यही होगा कि आपका सैलून कहाँ पाया जाता है? डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप अपना नंबर शेयर करें ताकि जो महिलाएं देख रही हैं जो कांटेक्ट करना चाहें वो कार्यक्रम को देखकर या सुनकर आपको आप तक पहुंच पाएं.
0: डेफिनेटली. सो मेरी सैलून जो है वो पोर्ट्रिस में है, एस्थेटिका इस पास बूटे. मैं वो लागोलिनो के साइड में हूँ, एक बिल्डिंग किनू स्क्वायर है, इसमें ब्लैक आई ऑन द फर्स्ट फ्लोर. और मेरी नंबर है 5257 3866. और इट वुड बी अ प्लेजर अगर आप आएंगे, यू कैन मीट मी, मैं वहाँ पर हूँ, मेरी स्टाफ भी है वहाँ, हम आपको गाइड कर सकते हैं और कुछ भी है कुछ स्किन कंसर्न आप मुझसे पूछ सकती हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल. मैं चाहूँगी एक बार आप नंबर फिर दोहरा दे रीना जी, एंड देन यहाँ पर हम हमारे प्रोग्राम को समाप्त करेंगे. जी हाँ,
0: डेफिनेटली. सो एस्थेटिका एस्पास बूटे, फर्स्ट फ्लोर, किन्यू स्क्वायर, पोर्ट्रिस, जाविस लागोलिनो. और हमारे नंबर है 5257 3866.
1: जी हाँ. तो इसी के साथ आज हमारे साथ जुड़ी एस्थेटिशियन रीना नौरतन जी, और बिल्कुल हमारे टेक्निकल टीम पर इस वक्त हमारे साथ हैं काविश, हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुसा, और हमारे साथ हमारे प्रोड्यूसर जिनेश. उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे. हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी ऑडियंसेस हैं, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे. और आज की उड़ान की कहानी थी रीना जी की कहानी. ऐसी बहुत सारी सशक्त महिला आज भी हमारे समाज में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. ज़रूर अगले सप्ताह हम एक और बार एक नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे. तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति. नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
1: नमस्कार आदाब. मॉरिशस के कृषि क्षेत्र में विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए

0: ट्रैक्टरों को ठेका देने से पहले सभी दस्तावेजों की प्रामाणिकता परखने के लिए एक तकनीकी कमेटी कायम की जाएगी। सिर्फ पंजीकृत संगठन, फेडरेशन और सहकारिता तंजीमें भर्ती करने के लिए योग्य होंगी। आज राष्ट्रीय सभा में श्रम एवं औद्योगिक विकास मंत्री रिजाउटीम ने ये बात कही। उन्होंने विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक उनके मंत्रालय को विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए कोई मांग नहीं मिली है। गैर कानूनी तस्करी, अवैध मछली मार और समुद्री प्रदूषण, समुद्र के खतरे सरहदों के पार जा रहे हैं। इन सब का सामना करने के लिए एक ही हल है। इसीलिए आज से आते 24 जुलाई तक हिंद महासागर आयोग ने यूरोपीय संघ के सहयोग से ईयू मैरिटाइम सिक्योरिटी वीक का आयोजन किया। पोर्टली में इलाके के राष्ट्र प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन समुद्री सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए एकत्र हुए हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन और सऊदी अरब के ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी नाजाहा के दरमियान आज गजवी में एक समझौता तय हुआ। मकसद दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग को और मजबूत करना है ताकि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे वित्तीय जुर्मों के खिलाफ संघर्ष किया जा सके। इस प्रोटोकॉल समझौते के तहत जानकारियों और अनुसंधान कार्यों का आदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा तहकीकात के सेक्टर में ट्रेनिंग, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। विदेश में यूरोपीय संघ ने चीन के सबसे बड़े ऑनलाइन व्यापार प्लेटफॉर्म अली एक्सप्रेस को $629 मिलियन का जुर्माना दिया है, क्योंकि ईयू के अनुसार अली एक्सप्रेस ने गैर कानूनी, असुरक्षित और काउंटरफीट यानी जाली पैदावारों की बिक्री पर रोक नहीं लगाई है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल्स के आखिर में अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने स्पेन के खिलाड़ियों के प्रति जो बर्ताव किया, उसके सिलसिले में फीफा की अनुशासन समिति अर्जेंटीना की टीम से जांच करेगी। अगर किसी भी तरह किसी खिलाड़ी या कोच को गुनहगार पाया गया तो उसे सस्पेंड किया जाएगा और अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन को जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Up centre, 95.5. North, south, 95.6. East, west, 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

संविता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। तो आइए आज की इस चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। इस महीने की 15 तारीख को यानी कि 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया गया यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। और आज जो है हमारा आज की चर्चा कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है। और युवाओं की बात करें तो कहते हैं युवा जो है हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का कल है। और युवाओं को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करना, युवाओं को आने वाले कल के लिए तैयार करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक कार्य होता है। और आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच डॉक्टर नंदिनी झुमक जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने जो है मास्टर्स पीएचडी की है इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में इंडिया से। साथ ही जो है वो अभी नेशनल वाइस चेयरपर्सन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ की, और MBC के साथ भी इन्होंने कुछ समय पहले काम किया है। उसके अलावा जो है

0: ये लेखिका भी है, लिखती भी है, और अभी के लिए वो एक कंटेंट एंड कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव है एक ऑफशोर कंपनी में, और आज हमारे साथ जुड़ी हैं। तो नंदिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं।
1: धन्यवाद सुनी जी।
0: और आप खुद अपने आप में एक युवा है और आज के इस विषय को लेकर आप आई है, तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे होता क्या है और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है।
1: सबसे पहले सभी श्रोताओं और मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हम लोग वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हर 15 जुलाई को मनाते हैं, और इसका मकसद ये है कि हम युवाओं को बताते हैं कि बस पढ़ाई काफ़ी नहीं होती है, आपके साथ साथ टेक्निकल स्किल्स भी ज़रूरी होती है जिसको हम लोग लागू करते हैं। और जब आप टेक्निकल स्किल्स को प्रैक्टिकल में लेकर आते हैं तो आप अपने फ्यूचर में या कैरियर के लिए जॉब में इसका प्रयोग कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं स्किल्स की बात करें, कौशल की बात करें, तो ये स्किल्स जो है ऐसा नहीं है कि हमने अभी के लिए एक स्किल सीखा तो पूरे जीवन के लिए हमारे लिए काफ़ी है। स्किल्स, कौशल एक अपने आप में ऐसी चीज़ है जो हमें समय के साथ अपग्रेड करते रहना पड़ता है, क्योंकि आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में हर पल कुछ नया आ रहा है हमारे सामने। तो अभी का समय युवाओं की अगर हम बात करें तो पहले के समय से अगर हम अपने यंगस्टर्स को कंपेयर करते हैं तो बहुत गलत होता है, क्योंकि अभी के लिए उनके सामने चैलेंजेस बहुत आ गए हैं, ऑप्शंस बहुत आ गए हैं, उनके सामने इतनी सारी चीज़ें हैं, कभी कभार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस फील्ड में जाए किस फील्ड में ना जाए। तो ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स का होना बहुत आवश्यक है। तो अभी के समय में किस तरह के चैलेंजेस आप देख रही है सोसाइटी में?
1: देखिए, आज ना जो सोसाइटी है वो बहुत तेज़ी से चल रही है और हम लोगों को उसके साथ साथ चलना पड़ता है। और यहाँ पे मॉरिशस के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ऐसी चुनौतियाँ हैं जो हम लोग युवाओं फेस करते हैं रोज़। तो ये घर में भी शुरू होता है, ये स्टडीज़ में भी शुरू होता है, यूनिवर्सिटीज़ में और वर्कप्लेस में भी होता है। और ऐसे चैलेंजेस क्या होते हैं, जब आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते हो तब युवा क्या करते हैं, हार मान जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग खुद अगर रेडी नहीं होते हैं, हम लोग खुद सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, सेल्फ एनालाइज नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का हम लोग सामना नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और जहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हर दिन हर जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट की इशू आ रही है, तो बहुत ऐसी युवाएं हैं जो हिम्मत हार के इस चीज़ का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों को टैकल करना है।
0: जी बिल्कुल। और युवाओं की बात करें तो सिर्फ हम स्किल्स पर बात करते हैं, हम रोज़गार पर बात करते हैं, युवाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं आजकल समय के साथ कम्युनिकेशन गैप काफ़ी बढ़ गया है, और बहुत सारे युवा जो है आजकल बहुत गलत राह पकड़ रहे हैं। ड्रग्स का अपने आप में एक इशू भी हो गया है, जो सिर्फ मॉरिशस तक ही ये बात सीमित नहीं है, आई बिलीव ग्लोबली भी ये सारे एक बहुत बड़ा कंसर्न है अपने आप में। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं के कौशल की अगर हम बात करते तो इसमें कम्युनिकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है?
1: देखिए, मेरा मानना है कि हर शिक्षित युवा देश के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। ठीक है, अगर एक युवा को सही मार्गदर्शन, सही डायरेक्शन जो बोलते हैं उसको दिया जाए तो वो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि जो ड्रग्स का इशू है, सोशल प्रॉब्लम्स है, वो बस मॉरिशस में नहीं हो रहे, पूरे दुनिया में पूरे हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग मॉरिशस के संदर्भ में बात करें, जितने भी युवा हैं उन लोगों को सही बस मार्गदर्शन चाहिए कि अपने आप को सुधारे, जानिए और अपने आप को सोसाइटी में लेकर आए वापस।
0: और कहीं ना कहीं अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो कौशल की खासकर बात करते हैं तो इसे ज़्यादातर हम जो है प्रोफेशनल फील्ड से जोड़ते हैं, तो क्या कौशल सिर्फ प्रोफेशनल फील्ड तक ही सीमित है या इन कौशल, इन स्किल्स की शुरुआत हमारे पर्सनल जीवन से भी होनी चाहिए?
1: जैसे आपने बोला ना कम्युनिकेशन स्किल, वो पहले अपने आप से शुरू होता है, वो पर्सनल लेवल पे शुरू होता है। जब आप खुद अपने दिमाग में क्लियर हो कि अच्छा मुझे ये चीज़ जैसे दूसरों तक लेकर आना है तो आप पहले क्लियर हो जाएं कि मुझे ये मैसेज सेंड करने हैं, मुझे अपने फीलिंग्स बताने हैं, मुझे बताना है कि देखिए मुझे फोर्स मत कीजिए, मुझे ऐसे जॉब चाहिए, मुझे ऐसे स्टडीज चाहिए,

0: तभी जाकर आप प्रोफेशनल काम में भी अच्छे करते हो. मान लीजिए खुद इंसान ठीक नहीं है अपने आप में, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा. तो आई थिंक कि पहले अगर हम लोग इस संदर्भ में बात करें, तो पहले आपको खुद ठीक होना है एज ए पर्सन, फिर आप प्रोफेशनल में भी एक्सेल कर सकते हैं.
1: यानी कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप जीवन में किस, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, है ना. और कभी कभार आपने लक्ष्य की बात की कि ऐसा भी होता है कि एक बच्चा कुछ करना चाहता है लेकिन पेरेंट्स की अपेक्षाएं उन बच्चों से अलग होती है. कभी कभार ऐसा होता है, बहुत से परिवारों में, समाज में हम देखते हैं कि माता पिता अपने जिस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था या लॉयर बनना चाहता था, मैं ही नहीं बना तो शायद मेरा बच्चा वो करेगा. तो माता पिता की जो आशाएं हैं वो बच्चे से बचपन से जुड़ जाती हैं, लेकिन समय के साथ जब बच्चा बड़ा होता है, वो चीजों को देखता है, नई नई चीजें उसके सामने आती है, तो शायद उसका सपना कुछ और होता है. तो ऐसे में इस चीज को किस तरह से हम माता पिता को भी समझा सकते हैं और बच्चे को भी किस तरह से मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं.
0: देखिए ये सिचुएशन 50-50 है. जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरे यहाँ पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा. तो मेरा ये हमेशा था कि मुझे कुछ इसमें जाना था, पब्लिक स्पीकिंग्स में जाना था, कंटेंट क्रिएटर बनना था. तो मेरे मम्मी पापा ने हमेशा साथ दिया है. अब दूसरे जैसे परिवार में हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत जैसे रिजिड हो जाते हैं कि समझते नहीं है कि बच्चे को डॉक्टर नहीं बनना है, उनको म्यूजिशियन बनना है. तो इस हालात में अगर वही चीज़ आता है ना, कम्युनिकेशन आते हैं, अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को समझाएं और तीसरा जो थर्ड पर्सन होता है ना कि आप बताते हैं कि देखिए बच्चा ये करना चाहते हैं, तो उस चीज़ का समाधान अगर ढूंढते हैं तो पेरेंट्स भी समझ जाएगा.
1: और कहीं ना कहीं इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या जब एक दूसरे की बात को हम नहीं समझ पाते तो कभी कभार परिवार में दूरियां आ जाती है ना, मतलब कि बात करना बंद हो जाता है या ऐसा लगता है कि चलो मेरे माता पिता मुझे नहीं समझते तो मैं क्यों अपनी बात उनको बताऊँ. तो समय के साथ रिश्तों में दूरियां आ जाती है और फिर एक दूसरे को समझना बंद हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें आगे चल के अन्य प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है. तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझना ये बहुत ज़रूरी होता है. और ख़ासकर युवाओं की बात करें तो आजकल युवा जो है काफ़ी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उन पर ज़्यादा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है. वो यहाँ मॉरिशस में बैठे बैठे दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सभी चीज़ से वो दिन ब दिन रूबरू हो रहे हैं. क्योंकि एक दिन में इतने सारे फीड्स हमारे फ़ोन पर आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, तो किस तरह से इस चीज़ को हम हैंडल कर सकते हैं युवा होने के नाते.
0: देखिए ये जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, मैं एक चीज़ इसमें और जोड़ना चाहती हूँ कि आजकल जो कंपनीज है ना दूसरे दुनिया में, वो बस डिग्री नहीं देखते हैं, वो बस नहीं देखते हैं कि अच्छा आपके पास ये है, वो कुछ और ही देखते हैं आपके पास. वो देखते हैं कि आप डिग्री के अलावा क्या लेकर आते हो. ठीक है, तो जो जितने भी युवा हैं जो आगे बढ़ रहे हैं मॉरिशस में, जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको ये अपने आप में जागरूक करना है. ठीक है, कि मुझे ये क्षमता दिखाना है, तभी जाकर वो आगे बढ़ता है. क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बाधाएं आ रहे हैं अपने रास्ते में, कि ठीक है मुझे ये करना था नहीं कर पा रही हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होता है, दूसरे प्रॉब्लम्स होता है. लेकिन अगर आप इस चीज़ को बस सीमित रखेंगे अपने आप को, तो कुछ प्रोग्रेस ही नहीं होते हैं.
1: बिल्कुल, यानी कि पढ़ाई के अलावा, सर्टिफिकेट्स के अलावा जो है एडिशनल स्किल्स भी बहुत आवश्यकता है. आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, खासकर जो है कि एडिशनल स्किल्स की बात करें, तो घर का कामकाज आपको आना बहुत ज़रूरी होता था ना, कि माता पिता खासकर लड़कियों को कहते थे कि पढ़ाई तो कर रही हो लेकिन तुम्हें पकाना आना चाहिए, तुम्हें सफाई आनी चाहिए, तुम्हें ये आना चाहिए. और आज समय के साथ कितना कुछ बदल गया कि पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें टेक्नोलॉजी से जो है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. तो ये जो बदलाव आया है इस पर, इसको आप कैसे देखती हैं?
0: ये जो बदलाव है मुझे लगता है हम इस जनरेशन में अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है बहुत. क्योंकि जैसे आपने कहा, मेरे टाइम में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो मम्मी बोलते थे तुम ऐसे स्कूल नहीं जाओगे, तुम पहले सफाई कर

0: है, बिस्तर रेडी करना है, अपने ब्रेड को जैसे खाना, टिफिन बॉक्स ये सब खुद रेडी करना है. अब ये जो चेंज हुआ है वो हद तक, एक हद तक अच्छी है और अच्छा भी नहीं है. और हमारे टाइम में हम जब हम लोग खुद करते थे तो उस टाइम पे हम लोग एक स्किल्स डेवलप करते थे कि दूसरों पे निर्भर नहीं करना है.
1: बिल्कुल
0: ठीक है. अपने आप वो जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है ना, ये भी आता है इसके साथ साथ. और जब मैं भारत में थी, पढ़ाई कर रही थी, तो ये जितने भी मम्मी ने सिखाया ना कि खुद करना है,
1: ये बहुत काम आया होगा.
0: ये बहुत काम आया है. और उसके साथ साथ सोशल मीडिया का भी बहुत काम आया है. जैसे मेरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, मुझे जैसे फोल्ड करना नहीं आता है, जैसे कपड़े ये
1: समेटना,
0: हाँ समेटना नहीं आता है. तो उस टाइम पे यूट्यूब ने बहुत हेल्प किया है. जब मैं पैकिंग करती थी सूटकेस में कि कैसे पैकिंग करना है, उसको कैसे स्क्वेयर करना है, उसको कैसे रखना है ताकि लगेज के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए, तो यहाँ पे सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, एवरीथिंग बहुत हेल्प किया है.
1: बिल्कुल. यानी कि कहीं ना कहीं जो पुराने स्किल्स है, नए स्किल्स के आने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है. जैसे आपने कहा कि आप भारत में जाकर पढ़ी है, जब एक बच्चा बाहर जाता है पढ़ने, अगर उसे अपनी बेसिक चीज़ें करना नहीं आता है तो बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि आपको थोड़ा सा पकाना आना चाहिए, ये भी अपने आप में स्किल्स है. अपने आसपास के, अपने जहाँ आप रह रहे उस जगह को साफ सुथरा रखना, क्योंकि हाइजीन यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. अपने आप को जैसे कि कम पैसों में किस तरह से आप अपना गुजारा कर सकते हैं, ये भी अपने आप में एक स्किल्स है. तो ये सारे स्किल्स के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर अपने स्किल्स को एनहांस करना, ये एक अच्छी बात होती है. अभी के लिए एक छोटे से गाने के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं.

0: चलिए आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं और आज हम विश्व युवा कौशल दिवस पर बात कर रहे हैं और आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नंदिनी जुमक जी जुड़ी हुई है। नंदिनी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की बात करते तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है होते हैं इस दिन के दौरान, किस तरह से इस दिन के बारे में लोगों को बताया जाता है, जागरूक किया जाता है, इसके महत्व पर जो है रोशनी डाली जाती है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से एक्टिविटीज है जो किए जाते हैं इस दिन पर, खासकर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो।
1: इस दिन को मनाने के लिए आई थिंक पूरी दुनिया में ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, काउंसलिंग्स होती हैं हमारे युवाओं के लिए, सेमिनार्स होते हैं ताकि युवाओं को ये बताएं कि आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, आपके कैरियर ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज खड़े होते हैं, ठीक है। इसके लिए, इस चीज़ को जैसे साकार करने के लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं युवाओं के लिए, उन लोगों को एक मार्गदर्शन देते हैं कि ठीक है, आप अपनी स्टडीज़ के बाद या आप स्टडीज़ में क्या क्या और चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि मेरे बैच में बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्टर्स के साथ साथ डिप्लोमा भी कर रहे थे, कि उनको पता है कि अच्छा, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ जर्नलिज्म में लेकिन मुझे डांसिंग आता है, भरतनाट्यम आता है, तो वो जो कौशल है ना उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे काउंसलिंग होते हैं, एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूँ तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में हो रहा है। मॉरिशस के बारे में बात करूँ, जैसे अगर मैं रिसर्च काउंसिल के बारे में बात करूँ, MCCI के बारे में बात करूँ, या खुद आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनीज खुद प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग्स कि आप जी आप ये काम कर रहे हैं तो उसके अलावा आपके पास और क्या ऐसे टैलेंट है, क्या स्किल्स है जो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो।
0: ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे समय की अगर बात करें कि जब स्कूल हॉलीडेज होता था, जैसे आपने 10th पूरा कर लिया तो आपको पता है कि आपके हाथ में 2-3 महीने होते हैं आपके रिजल्ट का इंतजार करते करते, तब तक हमारे पेरेंट्स हमें किसी कंप्यूटर कोर्स में डाल देते थे। फिर 12th हो गया तभी भी आपके पास एक लंबा इंतजार होता था, उस समय आप किसी और कोर्स में जुड़ गए क्योंकि उस समय कंप्यूटर एक चीज ऐसी जो उभर रही थी ना, इस एज अ सेक्टर, एज अ फील्ड कहे, लोग इस पे, इसके बारे में पढ़ रहे थे, जान रहे थे, कोडिंग वगैरह तो अभी आया है, उस समय तो हम जो है जावा, ये
1: IC3 वाला
0: ये सारी चीजें थी। तो कहीं ना कहीं स्किल्स को आज के समय में इम्पोर्टेंस दी जाती है, ऐसी बात नहीं है। अभी के समय में स्किल्स अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज हो चुकी है, लेकिन ये तभी भी उतना ही मायने रखता था। आज एक बच्चा अगर डिग्री पूरा कर रहा है तो सिर्फ उसके पास अगर डिग्री का सर्टिफिकेट है और वहीं पर उसके साथ में कोई और है जिसके पास और भी सारी चीज़ें हैं, यानी कि अपने आप को एनहांस करने के लिए उसने कहीं से कोई डिप्लोमा कर लिया है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है, तो शायद कंपनी जब सिलेक्शन का समय आएगा तो शायद उसको ज़्यादा अहमियत देगी क्योंकि उसने अपने आप को सीमित नहीं रखा है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जब हम करियर की बात करते हैं।
1: जी, और अगर मैं अपने बारे में बात करूं, जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तब जो मैनेजर्स होते हैं वो आपसे पूछते हैं, ठीक है, आपने ये पढ़ाई की है तो उसके साथ साथ आपने क्या सीखा है? तो मेरे पास कुछ बोलने के लिए था, प्रूफ करने के लिए था

0: कि अच्छा पढ़ाई के साथ साथ मैंने फोटोग्राफी भी सीखी है, मैंने एडिटिंग भी सीखी है जब मैं एमबीसी में थी, तो ये सब चीज़ें ना बहुत मान्यता रखता है। और अगर हम लोग एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मॉरिशस में अभी क्या चल रहा है, जो सरकार है और प्राइवेट सेक्टर है दोनों मिलकर हमारे युवाओं को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। मैं ये एक चीज़ इसमें और ऐड कर सकती हूँ कि युवाएँ इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। आप रिसर्च कीजिए, आप इंटरनेट पे जाइए, देखिए कौन कौन से ऐसे काउंसिल है, सेंटर्स हैं जहाँ पे हम लोग इस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके। अगर आप बैठे रहेंगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप वेट करोगे कब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे कि कब मैं अपने स्किल्स को डेवलप करूँ, तो ये नहीं आते हैं, आपको खुद जानना है।
1: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अभी का जो समय, मतलब कि इस तरह से हम ग्लोबली दुनिया से कनेक्टेड है, मतलब कि आपको अगर किसी विषय के बारे में जानकारी चाहिए या कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, बहुत ही ईजिली आप इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। हमारे समय में ये नहीं था। हमारे समय में अगर आपका पड़ोसी कुछ कर रहा है तो माता पिता कहेंगे देखो वो ये कर रहा है तो तुम भी जाके करो, या किसी ने आपको बता दिया कि देखो वहां पर कुछ हो रहा है। लेकिन अभी के समय में हमने तो देखा है कितने सारे बड़े बड़े ग्लोबल यूनिवर्सिटीज है जहां पर बच्चों का एडमिशन मुश्किल होता है क्योंकि शायद पैसे ज्यादा होते हैं या वो मतलब के मैच नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फ्री सर्टिफिकेट कोर्स देते हैं, आप ऑनलाइन ही उन सर्टिफिकेट कोर्स का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनसे हम मिलते हैं, बातचीत होती है, तो पढ़ाई के साथ साथ के ऑक्सफोर्ड में कोई कोर्स चल रहा है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है विच इज़ फ्री ऑफ चार्ज, वो लोग जुड़ते हैं। ये सारे जो है उनके स्किल्स को एनहांस करने के लिए, आगे जाकर करियर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें देने के लिए इट इज़ वेरी यूजफुल।
0: आपने सही बोले हैं, क्योंकि अभी एक प्लेटफॉर्म है आपको पता है लिंक्डइन, इसमें बहुत ऐसे फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, वो वन मंथ, एक महीने या डेढ़ महीने तक चलता है। अगर आप इस चीज का लाभ उठाते हैं या ना केवल स्क्रॉल करें, तो आपके लिए ही लाभदायक होते हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना तो ये लोग पूछते हैं आपने क्या क्या कोर्सेज की है, सर्टिफिकेशंस क्या है, आपकी क्या कौन कौन सी अवार्ड्स भी है, ये सब भी मैटर होते हैं।
1: आज तो हम युवाओं के स्किल्स पर बात करें, लेकिन थोड़ा सा मौका लेकर हम ये भी बात करेंगे कि बहुत सारी महिलाएं जो है जो घर पर है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, है ना, अकेले है, तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर आप जुड़ सकती है, अपना जो है एक तो आपका टाइम भी बीत जाता है, आप कुछ नया सीख भी रही है और अपने आप को आप अपग्रेड भी कर रही है। तो अगर हम कौशल की बात करें तो सिर्फ ये कौशल आज युवाओं तक सीमित नहीं है, क्योंकि आज अभी के समय में लोग जो रिटायर हो गए हैं यूनिवर्सिटी में जाकर बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज है जो करते हैं, काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं, अगर उन्हें गाने का मौका मिल रहा है, जाकर योगा सीखने का मौका मिल रहा है या डांस सीखने का मौका मिल रहा है करते, इससे क्या होता है हमारी नेटवर्किंग बढ़ती है, हम अलग अलग कल्चर के लोगों से जब मिलते हैं तो हमारी भी एक जो है सोचने समझने की क्षमता को एक नई दिशा मिलती है।
0: जो आपने सही बोला इस कॉन्टेक्स्ट को लेके, बहुत ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट लेकर घर में रहते हैं, ठीक है, फेसबुक चलाते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, और ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी रिटायरमेंट लेते हैं ताकि उन लोगों को समय मिले कि मैं कुछ और करूँ, ठीक है। आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि जब मम्मी लोग घर पे रहते हैं या पापा लोग घर पे रहते हैं तो ये लोग बहुत टिकटॉक चलाते हैं, दे यूज अ लॉट ऑफ ऐसे सोशल मीडिया ये सब, तो ये जो स्किल्स हैं इनको जैसे अगर हम लोग देखते हैं, एक बच्चा होते होने के नाते हम लोग देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी हम लोगों की तरह हैं, लेकिन उनका माइंडसेट अलग है, वो भी डिजिटल वर्ल्ड में कनेक्टेड हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब में, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं अपनी मम्मी के बात में करूँ, वो बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, काम से वो घर आती है, तो ये भी एक स्किल्स है जो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकती ऑनलाइन शॉपिंग, मेरे पास उतना जैसे पेशेंस नहीं है कि मैं किसी को देखूं लाइव और मैं कुछ खरीदूं, लेकिन मेरे मम्मी के पास है, तो ये भी मैटर करते हैं कि पेरेंट्स अपने अपने स्किल्स को भी इस तरह डेवलप करते हैं,
1: कर सकते हैं। बिल्कुल, कि अगर हम अन्य देशों की बात करें ग्लोबली, यूके हो गया, यूएस हो गया, इंडिया हो गया, जहाँ पर लोग अपने स्किल्स को ऑनलाइन जाकर जो है अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं और उसके बदले में पैसे कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद ये भी अपने आप में एक स्किल है, किस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से अपने मैसेज को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और ये इन द रन, मतलब कि आपके लिए एक रेवेन्यू क्रिएट कर

0: रहा है। और जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग की बात की, बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं जो शायद नौकरी नहीं करना चाहते, अपना बिजनेस करना चाहते, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनके लिए एक रोजगार का जरिया बन रहा है। तो ये भी अपने आप में एक स्किल्स है कि किस तरह से आपको एक सोशल प्लेटफॉर्म पर लाइव जाना है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, किस तरह से जानकारी देनी है। तो ये ओवरऑल अपने आप में एक पैकेज होता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप में क्या कमी है और किस तरह से आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
1: सही बोला आपने। और इस बात पे मैं कुछ और जोड़ना चाहती हूँ कि युवाएं जो हैं उन लोगों में बहुत क्षमताएं हैं। जो क्षमता है इसको जैसे सीमित नहीं रखना चाहिए। आप जाके दुनिया देखिए, आप जाके दुनिया देखिए, लोगों से बात कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपका जो अनुभव है और मेरा जो अनुभव है वो अलग होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है। तो अगर आप अनुभव शेयर करेंगे, आप बताएंगे कि ठीक है मैंने ये सीखा है और मेरे पास ये टैलेंट है, मेरे पास ये कौशल है, तो साथ मिलकर ये जो नुवा जो अभी उभर रहा है वो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि ठीक है मेरे इर्द गिर्द मेरे सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को एक एग्जाम्पल लूँ और आगे बढ़ो।
0: बिल्कुल, मैं इस बात से आपके बिल्कुल सहमत हूँ। घर से निकलना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई मैंने कर ली, अब घर बैठकर मैं इंतज़ार करूँ कि कब एक नौकरी मुझे दिखेगी या नौकरी मुझे ढूंढते हुए आएगी। अगर मुझे अभी के समय में कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है तो शायद मैं घर से निकल सकता हूँ, बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। क्या पता मुझे कुछ ऐसा दिख गया जिसे मैं बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ या एक स्टार्टअप कर सकता हूँ। क्योंकि आज मॉरिशस में जो है बात करें, आजकल बहुत से ऐसे जो है सेक्टर्स है, प्राइवेट हो पब्लिक हो, जो स्टार्टअप्स को काफी प्रमोट कर रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट करने को देखते हैं। तो आप भी अपना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाकर अपने जो है अपने आइडियाज को लोगों के सामने रख सकते हैं और उसके जरिए आप अपने लिए रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं।
1: क्योंकि हर जो आइडियाज होते हैं वो यूनिक होते हैं। जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं कर सकती हूँ, वो एक दूसरा जैसे आदमी नहीं कर सकते। उनके पास भी ऐसे कौशल हैं, लेकिन जो यूनिकनेस है वो इंडिविजुअली आता है। ठीक है, जैसे आपने बोला कि बैठ के नहीं होते हैं चीज़ें, आपको जाना है, एक्सप्लोर करना है। हमारे अगर आप बात करते हैं, मेरे तरह बहुत ऐसे युवाएं हैं जो मॉरिशस आते हैं पढ़ाई के बाद। ठीक है, अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे अपनी डिग्रीज के साथ कि अच्छा मैं भारत गई थी, मैं पढ़ने गई थी कि कब मुझे नौकरी मिलेगा, मुझे नौकरी नहीं मिल रहे, एफर्ट्स नहीं हो रहे, तो कुछ नहीं होता है।
0: कुछ नहीं होगा।
1: मेरे जब मैं आई थी तो मैं नहीं बोल रही कि संघर्ष नहीं था, देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। ये भी एक स्किल्स होते हैं, हिम्मत नहीं हारने के लिए।
0: ये आपने बिल्कुल सही कहा।
1: आपको अपना जो हिम्मत है जोड़ना है और उसको लेके आपको चलना है,
0: आगे बढ़ना है। बिल्कुल ऐसा होता है कि जब हमें अपॉर्चुनिटी सही समय पर नहीं मिलते हैं तो हम डिस्करेज होने लगते हैं, और वहीं डिस्करेज ना होकर शायद उस टाइम को हम किसी और चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने स्किल्स को एनहांस करते हैं। चलिए एक श्रोता है, उनसे मिलते हैं। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है।
2: नमस्ते, दोनों बहन जी को नमस्ते।
0: जी कौन बोल रही है?
2: मैं नंदिनी नेपोल मोगू से बोल रही हूँ।
0: अच्छा नंदिनी जी, आज हमारी मेहमान भी नंदिनी ही है।
2: अच्छा अच्छा, हाँ खुशी की बात है।
0: अच्छा बताइए, क्या जोड़ना चाहेंगी आप?
2: मैं यह जोड़ना चाहती हूँ कि जब हम सिटीजन हो जाते हैं तो हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। केवल घर में बैठने से कुछ नहीं होता
0: जी।
2: हाँ, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे लोग सभी नौकरी पर चले गए, अभी मैं अकेली हूँ
0: जी,
2: और नातिन भी अपने लेसों में गई
0: जी।
2: तो अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए ताकि आपको स्ट्रेस ना हो।
0: बिल्कुल,
2: हाँ ये चाहिए अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, जो हमने छोटा में सीखा बैठका जा जाकर
0: जी,
2: संस्कार के बारे में, रामायण के बारे में अच्छी अच्छी बातें तो हमारे बड़े जनों से सीखा है
0: जी।
2: तो कोशिश करके मैं ये सब बांटती हूँ अपने गांव में
0: जी।
2: हाँ यही है मेरी कहना बेटी कि अपने आप को व्यस्त रखो, जो राग है बनाना है, जो पूजा पाठ है, संस्कार है, सब कुछ अपने आप में नहीं रखो, उसको बांटो
0: जी।
2: बांटेंगे तो अधिक होगा। विद्या कभी समाप्त नहीं होती है, चोरी नहीं होती है
0: जी।
2: विद्या जितना सिखाएंगे उतना बढ़ेगा।

0: बस यही मेरी कहना है आप लोगों की बात के लिए, आपसे बात किया बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद नंदिनी जी आपके विचारों के लिए, बिल्कुल सही कहा, यानी कि अपने आप को किसी न किसी चीज में व्यस्त रखना, और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात अपने बातों बातों में कही स्ट्रेस के बारे में, थोड़ा सा हम इस पर भी आएंगे नंदिनी जी। आजकल युवा जो है स्ट्रेस का जो है ज्यादा बात करते हैं, मेंटल हेल्थ मेंटल वेलनेस की ज्यादा बात करते हैं। आज से कुछ समय पहले ये सारी चीजें उतनी मायने नहीं रखती थी, लेकिन समय के साथ जिस तरह से एवोल्यूशन हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही है, मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत जोर दिया जा रहा है, बहुत सारी काउंसलिंग हो रही है, स्ट्रेस के बारे में बात की जा रही है। ये नहीं है कि हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी को स्ट्रेस नहीं था, लेकिन किस तरह से वो सभी चैलेंजेस को पार कर पाते थे, और अभी के समय में हमारे लिए इस स्ट्रेस को हैंडल करना इतना मुश्किल हो रहा है।
2: देखिए, जितना, जैसे मैंने बोला था, जितना तेज़ी से दुनिया चल रही है उतना तेज़ी से स्ट्रेस भी बढ़ रही है। ठीक है, हमारे टाइम में जैसे जैसे मम्मी पापा थे, दादा दादी थे, इन लोगों के पास भी बहुत ऐसे स्ट्रेस थे। अगर मैं स्ट्रेस के बारे में बात करूँ तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत थे। ठीक है, कि घर को कंस्ट्रक्ट करना है, हम लोगों को परिवार समेटना है, तो ये अपने आप में एक स्ट्रेस थे। लेकिन उनको डील करना, उनको जैसे संभालना, उन्होंने ये स्ट्रेस को जैसे एक स्किल्स की तरह, जैसे समाधान ढूंढना कि बात करना है कि ठीक है, अभी इस महीने हमारे पास जैसे अभी फाइनेंशियल नीड्स नहीं है तो हम लोग ये नहीं कर पाएंगे।
1: एक बजटिंग होती थी ना,
2: लेकिन आज के युवा में वो टॉलरेंस स्किल्स नहीं है,
1: पेशेंस की कमी,
2: पेशेंस नहीं है
1: जी।
2: ठीक है, उन लोगों को हर चीज जल्दी चाहिए,
1: तुरंत चाहिए,
2: तुरंत चाहिए कि अच्छा मम्मी मुझे ये आईफोन, आपको मुझे देना ये आईफोन क्रिसमस में, तो आपको देना ही है। ठीक है, तो आजकल कुछ कुछ ऐसे युवाएं हैं, जो मैं सारे युवाएं के बारे में नहीं बोल रहे, कुछ कुछ ऐसे युवाएं हैं जो हर चीज में जल्दी करती हैं कि मुझे रिजल्ट्स जल्दी चाहिए। तो असल की दुनिया में, जॉब मार्केट में, लाइफ में ये सब नहीं चलता है, आपको पेशेंस रखना ही है। ये पेशेंस ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर युवाएं के बात करूं, अगर आपको अपना ड्रीम जॉब चाहिए जो आपने स्टडीज़ किए हैं, जैसे मैंने कम्युनिकेशन में पढ़ाई किया है, तो हर बच्चा यही चाहता है, हर स्टूडेंट ये चाहता है कि मैंने इस चीज़ पे स्टडी है तो मुझे यही जॉब मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा ही लकी हो तो मिल जाते हैं, लेकिन हर जो युवा है, हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति लकी ऐसे नहीं होते हैं।
1: मतलब जो चाहता है वो
2: नहीं होता है, इतना आसानी से नहीं होता है। ठीक है, तो आपको हार्ड वर्क करना है, आपको एक एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये स्ट्रेस कोज करता है, और मुझे लगता है कि हमारे जो समाज में है, जैसे अभी हमको एक कॉल आया था ना, तो उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है, उसको हम लोग स्ट्रैटेजी में देखते हैं। तो पहले बैठकाएँ होते थे, अभी अभी होते हैं ना, कि आप बच्चों को मार्गदर्शन दे, ठीक है, कि आप स्ट्रेस ना ले, आप उस चीज़ को टैकल कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशंस कैसे लेकर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे संस्थाएं होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारे युवाओं को एक मार्गदर्शन दे, उनको बताएं कि अगर आप ऐसे स्ट्रेस लेते हो तो आप खुद हिम्मत हारते हो। और हम लोग बहुत देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे युवाएं हिम्मत हार के कुछ गलत काम भी करते हैं, ड्रग्स की ओर बढ़ते हैं, या खुद अपने आप को जैसे सेल्फ सुसाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या, कौन जैसे हार मानते हैं, हमारे पेरेंट्स, ठीक है, कि हम लोगों ने युवा को, इस बच्चे को इतना कुछ दिया है,
1: इतना काबिल बनाया है,
2: उतना काबिल बनाया, और खुद जाके आगे हार मानते हैं। तो उस सिचुएशन को ना होने के लिए हम लोगों को बहुत काम करना है, संस्थान को जैसे अपील करना है कि अपने युवाओं को जैसे एक फोमाशों दे, एक एनकैडरमेंट दे, कि इन लोगों को सही मार्गदर्शन दिए जाए।
1: चलिए, यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक और गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं, फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।

0: आज की चर्चा इस कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद डॉक्टर नंदिनी जी से। अब हम जानना चाहेंगे, जब हम कौशल की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, तो किस तरह से रोज़गार की दुनिया में ये अपॉर्चुनिटीज़ को और बढ़ाता है। जैसे हमने काफ़ी पहलुओं पर तो ऑलरेडी नज़र डाल दी है, लेकिन अभी का जो समय है काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, और अपने आप को साबित करना कहीं ना कहीं एक युवा के लिए पहले के समय से अभी ज़्यादा मुश्किल हो गया है।
1: जी, इसमें मैंने पहले बताया था कि अगर आपके पास बस डिग्रीज हैं, ठीक है, जब आप इंटरव्यूज़ में जाते हो तो इंटरव्यू पैनल में आपसे पूछते हैं, ठीक है, कि आपने कौन कौन सी कौशल सीखे हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या आता है कि अगर आपके पास स्किल्स है वो आपके चांसेस को और भी बढ़ाता है, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपके चांस बढ़ रहे हैं तो आपके अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रहे हैं ना, आपके कैरियर के लिए भी बढ़ रहे हैं ना, आपके फ्यूचर के लिए भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग आपको पहचानते हैं, ठीक है। रोज़गार में एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए एक कंपनी है जहाँ पे एक मैनेजर को हायर कर रहे हैं, ठीक है, और उस इंटरव्यू के लिए देने के लिए 10 लोग आ गए, तो उस 10 लोग को कैसे फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है, 10 लोग के पास ऐसे 10 क्वालिफिकेशंस हैं, तो उन

0: ठीक है। और ये भी एक इशू है कि बहुत ऐसे युवाएं हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या काम आते हैं, क्या यूटिलिटी आता है, आपका स्किल्स। मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स नॉट एन इशू, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। आपने अभी अभी फ्रेश फ्रेश पढ़ाई की है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे अनदर एडिशनल स्किल्स हैं, कौशल है, तो आप उसको इंटरव्यू में प्रूव कर सकते हैं कि ठीक है, मैंने इसमें बीए किया है, मैंने मास्टर्स किया है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, मैंने सोशल वर्क भी किए हैं। तो ये यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही मदद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा कि हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब स्कूल हॉलीडेज होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं थोड़े से पॉकेट मनी के लिए जाकर कोई कहीं पर पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ये सिर्फ पॉकेट मनी तक ही सीमित नहीं होता है, ये आपको एक्सपीरियंस भी देता है, और प्लस ये आपके सर्टिफिकेट पर भी आता है कि देखो आपने किस तरह से आपने ये भी सीखा है, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ आपको इस फील्ड में भी थोड़ी जानकारी है। या तो अगर आप पार्ट टाइम नौकरी नहीं करना चाहते हैं, मे बी आपके फैमिली नहीं अलाउ करती है, जो भी रीजन है, तो कहीं ना कहीं उस टाइम को आप कुछ नया सीखने में जो है लगा सकते हैं। कहीं पर कोई कोर्स चल रहा है, कहीं पर कोई एक्टिविटी हो रहा है, कोई वर्कशॉप हो रहा है, आप जाकर उसका हिस्सा बन सकते हैं। या ये भी नहीं कर पाए तो आजकल आपने सोशल एक्टिविटी की बात की, बहुत से ऐसे एनजीओज है जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं, बहुत से युवा है जो एनजीओज को चलाते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप इनके साथ जुड़कर भी अपना योगदान दे सकते हैं, है ना जी। और आपसे हम जानना चाहेंगे, एज आप नेशनल वाइस चेयरपर्सन है एट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ, आप युवाओं के साथ बहुत काम करती हैं, तो किस तरह से आप युवाओं को जो है तैयार करते हैं आने वाले कल के लिए?
0: देखिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या होता है, हम लोग मॉरिशस के कॉन्टेक्स्ट के सीमित नहीं रहते हैं, ठीक है। भारत में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो दुनिया भर में आके पढ़ाई करते हैं, हम उन लोगों के साथ काम करते हैं। हम लोग बस एकेडमिक नहीं देखते हैं, हम इन लोगों कि जैसे अडेप्टेबिलिटी कल्चर है, वो जो स्किल्स है उन पे काम करती है। कि आप जब आते हो एक नए देश में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कल्चर शॉक मिलेगा, तो उस जैसे सिचुएशन को, उस स्थिति को आप कैसे संभालते हो, उस स्किल्स को आप कैसे डेवलप करते हैं। और जब आप ऑर्गेनाइजेशन में, हम इस चीज़ पे भी फोकस करते हैं कि आप अपने डिसीजन कैसे लेते हो, समाधान कैसे ढूंढते हो, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ साथ आप बाज़ार में जाएंगे, आप कुछ खरीदेंगे खाने पीने के लिए, आप दोस्तों के साथ घूमेंगे, तो उस सब चीज़ों को आपको मैनेज करना है।
1: उसके अलावा अगर आप बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्ट टाइम नौकरी भी करते हैं, तो अपने आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है।
0: हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये भी प्रमोट करते हैं कि बच्चे जो है जो भारत में आते हैं विभिन्न देशों में, आप लोग जाके भारत में इंटर्नशिप कीजिए। हम लोग इस चीज़ पे भी बहुत फोकस करते हैं कि आप इंटर्नशिप लीजिए, आप बाहर की दुनिया को जानिए, आप रिसर्च कीजिए, और आप जानिए कि जब हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं तो इसमें बहुत ऐसे विभिन्न ऐसे लोग हैं, क्योंकि भारत भी बहुत बड़ा है कि आप एक दिन पंजाब से एक आदमी से मिल रहे हो, दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल से, तो हर जो कैसे बोलूं,
1: अलग अलग कल्चर के लोगों से,
0: अलग अलग कल्चर से आप मिलते हो लोगों से, तो अलग अलग आइडियाज
1: मतलब बहुत सारी चीजें आपको सीखने का और जानने का मौका मिलता है। इससे क्या है, आप अपने आप को एनहांस करते हैं, मतलब कि आपने आज उनके कल्चर से कुछ नया सीखा, आज उसे देखकर कुछ नया सीखा, तो ये आपको जो है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है।
0: और हम लोगों ने देखा है वो उसी में ऑर्गेनाइजेशन में, कि जब हम लोग प्रमोट करते हैं युवाओं के लिए स्टूडेंट्स को, तो हम लोगों ने देखा है कि एट द एंड ऐसा होता है कि इन लोगों को में बहुत प्रतिभाएं आ जाती है, जागरूक हो जाते हैं। हम लोग खुद यकीन नहीं होते कि अच्छा, ये पहले बहुत शांत शांत रहती थी, अब अचानक से दो साल हो गए स्टडीज़ के बाद, तो एकदम से जैसे खुला हो गए, ओपन हो गए आइडियाज़ में, दिमाग में बोलने लगते हैं बच्चे। तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में यही काम करते हैं कि जब बच्चे आते हैं भारत में स्टडीज करने के लिए, वो ना केवल डिग्री लेकर जाते हैं वापस, वो अन्य अनुभवे अन्य स्किल्स लेकर जाते हैं।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नंदिनी जी, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ी, और लगभग हमारे प्रोग्राम का समय भी खत्म होने को चला, और आज का जो हमारा विषय था वो था विश्व युवा कौशल दिवस, जो हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो जाते जाते आप सबको क्या संदेश देना चाहेंगी?

0: मैं यही संदेश देना चाहती हूँ सभी युवाओं के लिए, खासकर हमारे मॉरिशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ, कि आप दुनिया देखिए, आप पढ़िए और ज़्यादा सोशल वर्क कीजिए, क्योंकि जब आप ये सब करोगे तो आप सीखोगे कि असल में रियल लाइफ कैसे होती है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि सपने सच होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हार भी मत मानिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी, आप आई हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और आज के इस विषय को लेकर आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी। आशा करते हैं जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, आज के इस कार्यक्रम से अवश्य आपने लाभ उठाया होगा। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी को, आप हमेशा इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं, और साथ ही हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को और टेक्निकल टीम को, हमारे प्रोड्यूसर जिनेश, साथ में यूसुफ और दीपशिका का सहयोग भी हमें मिला। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार आप सभी को।

0: आइए सुनते हैं समाचार सुमेरा अकबर अली के साथ। नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। मुर्शस के कृषि क्षेत्र में विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए कॉन्ट्रैक्टरों को ठेका देने से पहले सभी दस्तावेजों की प्रमाणिकता परखने के लिए एक तकनीकी कमेटी कायम की जाएगी। सिर्फ पंजीकृत संगठन, फेडरेशन और सहकारिता तंजीमें भर्ती करने के लिए योग्य हैं। आज राष्ट्रसभा में श्रम एवं औद्योगिक विकास मंत्री रजा उद्दीन ने ये बात कही। वे विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तक उनके मंत्रालय को विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए कोई मांग नहीं मिली है। पारिस्थितिक संस्थाओं और सार्वजनिक उद्योगों की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार चेतावनी दे रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक इन इदारों के बढ़ते कर्जों से सरकार के वित्त के लिए बहुत खतरे पैदा हो रहे हैं और इस हालत को सुधारने के लिए जल्द से जल्द सुधार लाने की जरूरत है। जून 2026 के आखिर में 5 सार्वजनिक संस्थाओं का कुल कर्ज 18.6 बिलियन रुपए रहा। 20 सार्वजनिक उद्योगों के उधार 48.9 बिलियन रुपए थे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पुष्टि की कि पिछली सरकार की हुकूमत के दौरान यह कर्ज बढ़ गई। गैर कानूनी तस्करी, अवैध मछलीमार और समुद्री प्रदूषण, समुद्र के खतरे सरहदों के पार बढ़ते जा रहे हैं। इन सबका सामना एक ही हल के जरिए किया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में आज से आते 24 जुलाई तक हिंद महासागर आयोग ने यूरोपीय संघ के सहयोग से ईयू मैरीटाइम सिक्योरिटी वीक का आयोजन किया। पोर्टली में इलाके के राष्ट्र प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन समुद्री सुरक्षा में सहयोग मजबूत करने के लिए एकत्र हुए। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन और सऊदी अरब के ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी नजाहा के दरमियान आज गजवी में एक समझौता तय हुआ। मकसद दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग को और मजबूत करना है ताकि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे वित्तीय जुर्मों के खिलाफ संघर्ष किया जा सके। इस प्रोटोकॉल समझौते के तहत जानकारियों और अनुसंधान कार्यों का आदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा तहकीकात के सेक्टर में ट्रेनिंग, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। नजाहा के डेलीगेशन प्रमुख ने आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टली में रस्मी मुलाकात भी की। विदेश में ग्रेट ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नाम ने आज ऐलान किया कि पहली अक्टूबर 2026 से सभी घरेलू बिजली बिल्स पर टैक्स की छूट होगी। इस कदम का मकसद लाखों लोगों को राहत पहुंचाना है और परिवारों को बचत करने का मौका देकर उन्हें नई उम्मीद देना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio.

0: के सितारे।
1: तो चलिए दोस्तों, एक प्यार भरा नमस्कार आपके लिए हम लेकर आए हैं 4:10 ट्यूसडे की ये खूबसूरत सी आफ्टरनून, खूबसूरत सी दोपहर, जहां पर आपके लिए सजाया है हमने ये खूबसूरत सा कारवां। हमारा ये प्रोग्राम आपके सितारे, जहां पर एक खास सितारे के ऊपर हम बात करते हैं। तो वेल, आज का ये प्रोग्राम भी कुछ खास रहने वाला है। अगले दो घंटों तक हम सेलिब्रेट करने वाले हैं एक खास सितारे को, और मैं हूं परी आपके साथ शाम के 6 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अगले दो घंटे हम डेडिकेट करने वाले हैं उस एक्ट्रेस के नाम जिन्होंने सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी नाम रोशन किया है। द वन एंड ओनली प्रियंका चोपड़ा जोनास, मिस वर्ल्ड से ग्लोबल आइकॉन बनने तक का उनका सफर हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो बस यहाँ पर शुरू करते हैं ये स्पेशल शो, जहाँ पर उनकी कुछ प्यारे गाने होने वाले हैं, उनकी कुछ कहानियाँ, ट्रिविया और प्रियंका के अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो बस हमारा साथ दीजिए।

आप अगर आप भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250-6200-5250-6200. फरी का साथ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. एंजॉय दिस नेक्स्ट ट्रैक, गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ प्रियंका चोपड़ा.

0: के सितारे।
1: तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सितारे प्रोग्राम। वैसे आज हमारे एमवीसी में एक सेलिब्रिटी आए थे और आप तो इन्हें जानते ही होंगे, बहुत सारी सीरियल्स में ये नज़र आए हैं, करण वीर बोहरा। और बिल्कुल कुछ लाइव वीडियोज इनके आप देख पाएंगे ऑन टिकटॉक, और साथ ही साथ इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो मैं हूँ परी, आपके साथ लेकर आई हूँ प्रोग्राम आपके सितारे, जहाँ पर हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस जिनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। और सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, अब तो एक ग्लोबल आइकन बन गई है वो और ग्लोबल स्टार बन गई है, जहां पर उनकी एक्टिंग, उनके जो गाने हैं उन्हें लोग पसंद करते हैं। गाने इसलिए बिकॉज शी इज वेरी वर्सटाइल, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि ये गाना भी गाती है, और उनके गाए हुए गानों को भी लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा पसंद किया। सो वेल टुडे हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की, और उनकी कुछ पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। सो वेल आप साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपके सितारे प्रोग्राम, जैसे हमने कहा कि रोमांस हो या फिर कॉमेडी, एक्शन हो या फिर इमोशनल ड्रामा, प्रियंका का हर रोल में उनका जो किरदार है वो एकदम फिट बैठता था। कमीने, बर्फी, डॉन, बाजीराव मस्तानी, मैरी कॉम जैसी फिल्मों से उनकी वर्सिटैलिटी जो है वो नज़र आती है। और एक ख़ास बात ये भी है कि मैरी कॉम के लिए प्रियंका ने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली थी, यानी कि हर रोल को वो बहुत सीरियसली लेती है। ये नहीं कि बस एक बॉक्सर का किरदार निभा रही है तो बस ये सिनेमा के लिए होगा, ये बड़े पर्दे के लिए होगा, लेकिन इसके पीछे की मेहनत वो भी नज़र आती है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग की ट्रेनिंग उन्होंने ली मैरी कॉम का किरदार करने के लिए। दैट्स प्रियंका चोपड़ा, जहां पर 100% देती है वो अपने हर किरदार के लिए। सो एक फिल्म जहां पर उनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, और ये कुछ वो फर्स्ट फिल्मों में से थी जहां पर वो पहली बार बड़े पर्दे पर नज़र आई थी। और ये जो फिल्म है अंदाज के बाद, इट वॉज हर फर्स्ट या सेकेंड फिल्म, यानी कि डेब्यू हुआ था उनका अंदाज फिल्म के साथ, जहां पर एक सेकेंड लीड में वो नज़र आई थी, और लारा दत्ता एंड अक्षय कुमार थे उनके साथ। दूसरी फिल्म जहां पर सलमान खान एंड अक्षय कुमार के साथ वो नज़र आई, यानी कि बड़े बड़े सितारे थे उनके साथ, लेकिन फिर भी वो जो उनका रोल है, वो जो उनकी एक्टिंग है, वो उन्होंने ऐसे साबित कर दिया कि बड़े स्टार्स ही उनके आसपास क्यों ना हो, लेकिन अपनी एक्टिंग से अपनी जो क्षमता है वो लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगी। सो वही वो फिल्म थी मुझसे शादी करोगी, जहाँ पर उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और बॉलीवुड में एज अ लीड एक्ट्रेस वो नज़र आई।

0: RM3 Radio.
1: You're listening to RM3 Radio. My

सारे लोगों को काफी पसंद आया बीट क्रश या फिर क्रश 3 और ये जो गाना है उसी फिल्म से लिया हुआ लेकिन इट वाज पिक्चराइज्ड ऑन ऋतिक रोशन एंड कंगना रनौत लेकिन ऑफ कोर्स इस फिल्म में छोटा सा रोल था लेकिन दमदार रोल था एंजॉय दिस वन हमारा साथ दे रहे हैं आप ऑन आपके सितारे ये है आपका अपना आरएम 3 रेडियो मनोरंजन एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना अलीशा चिनाय जुबिन गर्ग की आवाज एंजॉय दिस वन

0: के सितारे।
1: तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ प्रियंका चोपड़ा स्पेशल का सफ़र जो है वो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को पसंद किया। मैं हूँ परी आपके साथ और अभी के लिए यानी कि थोड़े समय के लिए आपसे इजाज़त लेती हूँ। एक बार फिर मुलाकात होगी शाम 6:30 बजे, जहाँ पर लेकर आएंगे आपके लिए प्रोग्राम नई सोच और उसके बाद दिलों की आवाज़। अभी थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे प्रोग्राम हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। तो बस हमारा साथ देते रहिए ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन और प्रियंका चोपड़ा स्पेशल। आज के लिए ऑन आपके सितारे, अगला गाना उनके सभी फैंस के नाम।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने भारत के एगो ऐसन इमारत पर ध्यान देव जा जिके विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करा गल बा। लेकिन साल

2017 में ई पहला हल्ला रहल कि भारत के कोनो एगो पूरा शहर के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के दर्जा देवल गल। गल सप्ताह दिखले रही जा कि पेरिस के जोन शहर है वो एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन भारत भी पीछे नहीं बा। गुजरात के अहमदाबाद शहर के पहला शहर मानल जाला ई वर्ल्ड

बसावलगल अहमदाबाद के साबरमती नदी के पूर्वी तट पर ई बसे राहुल रहल ई शहर में आर्किटेक्ट के बेहतरीन एगो उदाहरण बा। उदाहरण खातिर भद्रा सिटाडेल किला यानी फोर्ट के दीवार और ओकर गेट एगो मुख्य आकर्षण है। यहाँ कितने मस्जिद और मकबरा बा, हुमें बाद में बनल कितने हिंदू और जैन मंदिर भी, और अभी ले उ सब हुआ बाटे। अब देखी जा कौन दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात खातिर अहमदाबाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनल। साबरमती नदी के तट पर साबरमती रिवर फ्रंट के विकसित करा गल बा। 1960 के दशक में ही ये रिवर फ्रंट के नामजदगी के प्रस्ताव रखा कर रहा, लेकिन 2005 में एके बनावे के शुरू कर लगा रहा और 2012 से साबरमती रिवर फ्रंट के आम जनता खातिर खोल देवल गए। हिया के झूलता मीनार ऐतिहासिक वास्तुकला के एगो प्रतीक मानल जाला। दिलचस्प बात यह है कि जब ई में से एगो मीनार हिलेला तब बाकी सब मीनार में भी एगो कंपन पैदा हो जाला। अन्य कोठी में कारीगरी द्वारा बनावल गल ई मीनार के कैसे बनावल गल बा ई एगो रहस्य मानल जाला। बहुत ही पुराना ई सब मीनार है। अहमदाबाद के ऑटोवर्ल्ड म्यूजियम भारत के सबसे बड़ा ऑटोवर्ल्ड म्यूजियम है। ई में कार और मोटरसाइकिल के पुराना कलेक्शन आप देख बा। और यहाँ पर 1573 में 1573 में हिया के एगो मस्जिद के स्थापना हो रहा जेके बोली राजा सुल्तान अहमद शाह, और सुल्तान अहमद शाह ही एकर निर्माण करवैले रहलन। हिया पर एगो साइंस सिटी बा। 107 एक्टर से जस्ती बड़ा जगह में बनावल गल गुजरात के साइंस सिटी के विशेषता यह कि ई मनोरंजन के तौर पर आम इंसान से साइंस के जोड़ेला। और हुआ पर नक्षत्र यानी कि स्पेस और म्यूजिकल फाउंटेन भी स्थापित करा गल बा। स्पेस से जुड़ल एगो म्यूजियम बा और फिर एगो म्यूजिकल फाउंटेन। साबरमती रिवर फ्रंट के अलावा साबरमती के तट पर गांधी आश्रम के स्थापना गांधी जी 1917 में कर ले रहलन। एक सत्याग्रह आश्रम के रूप में जाना जाला और ई भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र रहल। त जैसे देखत हवा ई जोन अहमदाबाद शहर बा ई हर रूप से विशेष बा, और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के विशेषता पाइबा, विज्ञान से लेके नक्षत्र और आध्यात्म तक। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

नमस्कार आदाब समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। पारास्टेटल संस्थाओं और सार्वजनिक उद्योगों की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार चेतावनी दे रही है। प्रधान एवं वित्त मंत्री के मुताबिक इन इदारों के बढ़ते कर्जों से सरकार के वित्त के लिए बहुत खतरे पैदा हो रहे हैं और इस हालत को सुधारने के लिए जल्द से जल्द सुधार लाने की जरूरत। पीएमक्यूटी सत्र के दौरान सरकारी नेता ने कर्ज के सभी आंकड़े आम किए। बजट की बाधाओं के बावजूद सरकार बड़ी मूलढांचा परियोजनाएं चलाने पर बरकरार। आर्थिक वृद्धि को दांव पर लगाए बगैर सार्वजनिक निवेश की प्राथमिकताओं पर दोबारा गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम का मानना है कि M4 परियोजना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। मॉरिशस के कृषि क्षेत्र में विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए कॉन्ट्रैक्टरों को ठेका देने से पहले सभी दस्तावेजों की प्राथमिकता परखने के लिए एक तकनीकी कमेटी कायम। सिर्फ पंजीकृत संगठन योग्य हैं। आज राष्ट्रीय सभा में श्रम एवं औद्योगिक विकास मंत्री रेजा उतीम ने ये बात कही। FCC और सऊदी अरब की ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी के दरमियान आज समझौता पक्का। वित्तीय जुर्मों के खिलाफ संघर्ष करने में दोनों संस्थाएं एक दूसरे को सहयोग देंगी। और ग्रेट ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नाम ने आज ऐलान किया कि 1 अक्टूबर 2026 से सभी घरेलू बिजली बिल्स पर टैक्स की छूट होगी। नमस्कार और आदाब। पारास्टेटल संस्थाओं और सार्वजनिक उद्योगों की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार चेतावनी दे रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक इन इदारों के बढ़ते कर्जों से सरकार के वित्त के लिए बहुत खतरे पैदा हो रहे हैं और इस हालत को सुधारने के लिए जल्द से जल्द सुधार लाने की जरूरत है। जून 2026 के आखिर में 5 सार्वजनिक

0: सार्वजनिक संस्थाओं का कुल कर्ज 18.6 बिलियन रुपए रहा, 20 सार्वजनिक उद्योगों के उधार 48.9 बिलियन रुपए रहे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पुष्टि की कि पिछली सरकार की हुकूमत के दौरान ये कर्ज बढ़ गए, जिन्होंने वादा किया था कि कोई भी सार्वजनिक फंड किसी कर्ज की भरपाई के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, मिसाल के तौर पर पुराने बीआई ग्रुप के शिकार लोगों के लिए। इस हालत के मद्देनजर कई सरकारी संगठन पुनर्गठन योजनाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र की कारगरता पर एक पायलट कमेटी कायम की जाएगी, ताकि मंत्रालयों और सार्वजनिक संगठनों में फिजूल खर्चों का पता लगाया जा सके। सांसद रवीन जगौनाथ के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को सुनते हैं, विवरण करुणालालू का है।
1: The House will recall that the state of the economy document prepared by the Ministry of Finance.
2: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा, सदन को स्मरण होगा कि वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए स्टेट ऑफ द इकोनॉमी दस्तावेज में कई अर्ध सरकारी निकायों तथा सरकारी कंपनियों की चिंताजनक वित्तीय स्थिति को उजागर किया गया था। इन संस्थाओं पर लगातार बढ़ता भारी ऋण तथा इनके कारण सरकार पर बढ़ती संभावित वित्तीय देनदारियां, खासकर उनके पेंशन फंडों में संचित उच्च बीमांकित घाटे के कारण देश की सार्वजनिक वित्त की स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करती हैं। रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया कि कई वर्षों तक अपर्याप्त वित्तीय निगरानी और ऋण पर बढ़ती निर्भरता ने सरकारी वित्त पर भारी दबाव डाला, इसलिए बजटीय अनुशासन बहाल करने, सुशासन को मजबूत करने तथा इन संस्थाओं की वित्तीय क्षमता और लचीलापन बढ़ाने के लिए निर्णायक सुधारों की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा संकलित जानकारी के अनुसार जून 2026 के अंत तक 5 अर्ध सरकारी संस्थाओं पर कुल 18.6 बिलियन रुपए का ऋण था। इनमें से 15.4 बिलियन रुपए कमर्शियल बैंकों से तथा 3.2 बिलियन रुपए अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए थे। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में अर्ध सरकारी संस्थाओं का ऋण दुगने से अधिक बढ़ गया। ये दिसंबर 2014 के अंत में 6.2 बिलियन रुपए से बढ़कर दिसंबर 2024 के अंत तक 15.9 बिलियन रुपए हो गया। केवल पैसे दिए जा रहे थे, कोई नियंत्रण नहीं था, कोई वित्तीय दायित्व नहीं था। इस वृद्धि का मुख्य कारण सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वित्तीय आवश्यकताएं थी, जिसका ऋण 3.4 बिलियन रुपए से बढ़कर 10.3 बिलियन रुपए हो गया। इसी प्रकार एसटीसी का ऋण 1.1 बिलियन रुपए से बढ़कर 5.3 बिलियन रुपए तक पहुंच गया। अर्ध सरकारी संस्थाओं और सरकारी कंपनियों के ऋण में हुई ये महत्वपूर्ण वृद्धि पूर्ववर्ती सरकार में पूर्ण वित्तीय अनुशासन की कमी और सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण को नियंत्रित करने में उसकी प्रणालीगत विफलता के परिणामों को दर्शाती है। ऋण के इस संचय ने सार्वजनिक वित्त पर दबाव बढ़ाया है, प्राथमिकता वाले निवेशों के लिए उपलब्ध बजटीय गुंजाइश को कम किया है और राज्यों को वित्तीय जोखिमों, खास रूप से संभावित देनदारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है। इस प्रकार प्रश्न के भाग एक के संबंध में वर्ष 2020 से सरकार को मुख्य रूप से सरकारी कंपनियों को उनके ऋण भुगतान दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए कुल 14.4 बिलियन रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करनी पड़ी। यदि सुपर कैश बैंक गोल्ड स्कीम के ग्राहकों को भुगतान करने के लिए लगाए गए धन को ध्यान में रखा जाए तो एमएसएम के शासन के दौरान कुल 11.5 बिलियन रुपए की सार्वजनिक धनराशि लगाई गई। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पुराने बीएआई समूह को समाप्त करने के जानबूझकर लिए गए कठोर निर्णय के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री और उनके सुशासन मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि बचाव योजना के लिए सार्वजनिक धन का एक भी रुपया इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होकर लिए गए उनके फैसलों का सार्वजनिक ऋण पर सीधा प्रभाव पड़ा, यही सच्चाई है।
1: One single rupee from public funds would be injected into any bailout activity. Blinded by the political vendetta, their action led to a direct hit on the public sector debt. This is the truth, Madam Speaker.
0: बजटीय बाधाओं के बावजूद सरकार बड़ी मूल ढांचा पर

0: योजनाएं चलाने पर बरकरार हैं। आर्थिक वृद्धि को दाव पर लगाए बगैर सार्वजनिक निवेश की प्राथमिकताओं पर दोबारा गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम का मानना है कि M4 परियोजना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है, जिसका मकसद इलाकाई कनेक्टिविटी को बेहतर करना होगा और एक संतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होगा। सरकारी नेता ने फयानी इलाके के संदर्भ में पर्यावरणीय चिंताओं का भी उल्लेख किया। पहले प्रस्तावित मार्ग में बदलाव लाया गया ताकि उस इलाके के किसी भी पर्यावरणीय क्षेत्र को क्षति न हो। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री ने ये बात कही। मॉरीशस के कृषि क्षेत्र में विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए कॉन्ट्रैक्टरों को ठेका देने से पहले सभी दस्तावेजों की प्रमाणिकता परखने के लिए एक तकनीकी कमेटी कायम की जाएगी। सिर्फ पंजीकृत संगठन फेडरेशन और सहकारिता तंजीमें भर्ती करने के लिए योग्य हैं। आज राष्ट्रसभा में श्रम मंत्री रिजाउटिम ने ये बात कही। उन्होंने विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दिया। रिजाउ टीम ने कहा कि अभी तक उनके मंत्रालय को विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए कोई मांग नहीं मिली। ये जाने कि विदेशी कामगारों को मोशन कर्मचारियों की जैसी तनख्वाह दी जानी चाहिए। माधवी जागवनाथ, करुणा लालू।
1: विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में मंत्री रेजा उत्तम ने बताया कि मॉरीशस में कृषि सेक्टर के लिए विदेशी कामगारों की भर्ती से पहले ट्रेड यूनियन सहित सभी संबद्ध साझेदारों के साथ सलाह मशवरे किए गए थे।
2: गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट ओनली रजिस्टर्ड फेडरेशन एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी।
1: सरकार ने फैसला लिया कि केवल पंजीकृत संघ संगठन अथवा सहकारी संगठन जिनके सदस्य छोटे खेतीहर और पशुपालक हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं या अन्य सेवा प्रदान करने वाली कंपनी को इस कानून के तहत लेबर कॉन्ट्रैक्टर के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। मेरा मंत्रालय सुपुर्द किए गए दस्तावेजों की ऑथेंटिसिटी आदि की जांच करेगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस दिए जाने से पहले। एक तकनीकी कमेटी लेबर कॉन्ट्रैक्टर की अर्जी पर अध्ययन करेगी, जिसमें मेरे मंत्रालय, कृषि खाद्य उद्योग मंत्रालय और प्रधानमंत्री दफ्तर के प्रतिनिधि होंगे। मंत्री ने कहा कि नियमों में कई नियंत्रण तंत्र निर्धारित हैं। रजिस्ट्रेशन पश्चात निरीक्षण भी होगा। मेरे मंत्रालय और एम्प्लॉयमेंट डिवीजन के अफसरों द्वारा ये देखने के लिए कि क्या प्रवासी यानी कि माइग्रेंट श्रमिकों को केवल छोटे खेतीहरों और छोटे पशुपालकों के लिए भर्ती किया गया है और कि क्या भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के अनुकूल काम किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि विदेशी श्रमिकों को मॉरीशियन कामगारों की तरह ही वेतन दिया जाएगा और कि उनका मंत्रालय इस नियम संबंधी प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर काम कर रहा है।
2: Can the Honourable Minister inform the House when the first batch of labourers is expected to reach the country and where will they be accommodated?
3: Madam Speaker, we have not received as at today any request for registration of labour contractor. But what is already provided in the regulation is that the labour contractor will obviously need to make arrangement for the accommodation of all the migrant worker and the appropriate lodging accommodation permit will have to be sought.
2: Can the Honourable Minister inform the House whether there will be two different salary levels, that is, the migrant workers' salary based on remuneration orders and that of local workers as per collective agreement signed?
3: We made a specific provision, and that was one of the requests made by the trade unions, that we need to have equal pay for equal work.
1: मंत्री ने बताया कि मॉरीशस में विदेशी श्रमिकों की भर्ती एक प्रायोगिक परियोजना है, जो देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी फैसले का एक परिणाम है।
0: आज शाम राष्ट्रसभा में मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल को सुधार के बगैर पारित किया गया। मंत्री शकील मोहम्मद के समिंग अप

0: कि इससे पहले तीन सांसदों ने इस बिल पर अपनी अपनी राय पेश की। याद रहें, इस विधेयक का मकसद राष्ट्र की औपचारिक सेवा की स्थापना करना है। मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सेवाएं देश की सभी हाइड्रोग्राफिक जानकारियों को सुरक्षित रखेगी और मॉरिशस के समुद्री क्षेत्रों में अध्ययन चलाने की जिम्मेदार भी होगी। आज मंगलवार को 2:30 बजे के करीब बंदरगाह के इंधन पेट्रोली की में तेल रिसाव की नौबत पेश आई है। इंडियन ऑयल संगठन ने इसकी पुष्टि की। मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी की जानकारियों के मुताबिक करीब 200 लीटर तेल है। एमपीए ने फौरन इस घटना के चलते अपनी योजना यानी पोर्ट वी हॉबर ऑयल स्पिल रेस्पॉन्स प्लान लागू की है और सभी सेवाओं को हस्तक्षेप के लिए वहां बुलाया गया है। इनमें पर्यावरण पुलिस की टीम और मंत्रालय के अफसर भी शामिल रहे। पर्यावरण पुलिस ने एक जांच शुरू की है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन और सऊदी अरब के ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी नजाहा के दरमियान आज गजवी में एक समझौता तय हुआ। मकसद दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग को और मजबूत करना है ताकि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे वित्तीय जुर्मों के खिलाफ संघर्ष किया जा सके। इस प्रोटोकॉल संधि के तहत जानकारियों और अनुसंधान कार्यों का आदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा तहकीकात के सेक्टर में ट्रेनिंग, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। अजमल मोइतब, यचना मिश्रा।
1: बेहतरीन जांच कर पाना और वित्तीय अपराधों के नए रूपों से अच्छे तरीके से निपटना, यही उद्देश्य है फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन और सऊदी अरब के एंटी करप्शन अथॉरिटी नाजाहा के बीच तय समझौते का। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच जानकारियों और विशेषज्ञता का आदान प्रदान किया जाएगा। जांचकर्ताओं की क्षमताएं बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी इसमें शामिल
2: है।
1: भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में हम मात्र मॉरिशस के संसाधनों पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। इलाकाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। इस एमओयू के तहत जानकारियों का आदान प्रदान होगा। दोनों देशों की जांच के लिए ये संवाद का माध्यम बनेगा। जांच तक ही सीमित न रहकर दोनों संस्थान तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। इनमें डिजिटल संपत्तियां, साइबर सुरक्षा और वित्तीय जांच में एआई का उपयोग शामिल है। समझौतों को अमल में लाने के लिए आने वाले महीनों में एक संयुक्त कार्य योजना कायम की जाएगी।
0: करप्शन के खिलाफ संघर्ष में महारत बांटना एक जरूरी पहलू है। आज दोपहर बाद पोर्टवी के ट्रेजरी बिल्डिंग में सऊदी अरब की ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी नाजाहा के डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से इस सिलसिले में मुलाकात की है। गैर कानूनी तस्करी, अवैध मछलीमार और समुद्री प्रदूषण, समुन्द्र के खतरे सरहदों के पार बढ़ते जा रहे हैं। इन सब का सामना करना एक ही इस हल के जरिए इन सब का सामना किया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में आज से आते 24 जुलाई तक हिंद महासागर आयोग ने यूरोपीय संघ के सहयोग से ईयू मैरिटाइम सिक्योरिटी वीक का आयोजन किया। पोर्टवी में इलाके के राष्ट्र प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन समुद्री सुरक्षा में सहयोग मजबूत करने के लिए एकत्र हुए। हम आपको बता रहे थे, बजटीय बाधाओं के बावजूद सरकार बड़ी मूल ढांचा परियोजनाएं चलाने पर बरकरार हैं। आर्थिक वृद्धि को दाव पर लगाए बगैर सार्वजनिक निवेश की प्राथमिकताओं पर दोबारा गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री का मानना है कि M4 परियोजना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है जिसका मकसद इलाकाई कनेक्टिविटी को बेहतर करना है और एक संतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। सरकारी नेता ने फैनी इलाके के संदर्भ में पर्यावरणीय चिंताओं का भी उल्लेख किया। पहले प्रस्तावित मार्ग में बदलाव लाया गया ताकि उस इलाके के किसी भी पर्यावरणीय क्षेत्र को क्षति न पहुंचे। क्लोदिया जोफ्रा गादेवादू, यचना मिश्रा।
1: सरकार सार्वजनिक निवेश परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर बजट घाटे को कम करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए एक समिति प्रत्येक परियोजना की कई मापदंडों के आधार पर समीक्षा करेगी जिनमें उसकी तैयारी की स्थिति, आर्थिक और सामाजिक लाभ तथा सार्वजनिक वित्त पर उसका प्रभाव शामिल होगा। प्रधानमंत्री

0: ने स्पष्ट किया कि उद्देश्य निवेश को रोकना नहीं बल्कि उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देना है जो दीर्घकालिक रूप से आर्थिक विकास को समर्थन दें। इन परियोजनाओं में 29.7 किलोमीटर लंबा M4 मोटरवे शामिल हैं जो बेलिया को फोबाक से जोड़ेगा।
1: It will certainly contribute to rebalancing economic development, stimulating investment, create employment during construction, supporting tourism and promoting commercial and residential development along the north eastern corridor of the island.
0: इस परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी पूरी हो चुकी है, जमीन उपलब्ध है, टेंडर तैयार हैं और भारत से रियायती फाइनेंसिंग भी प्राप्त हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए फेनिक क्षेत्र को बचाने के लिए सड़क के मार्ग में बदलाव लाए गए हैं।
2: Benoît Premier ministre, peut-il nous dire si le comité a vérifié que le projet d'autoroute M4 dispose d'une étude d'impact environnemental actuelle, mais surtout pour l'ensemble du projet? C'est-à-dire sur un tracé définitivement arrêté.
1: Following the approval of the detailed project report by the Indian authorities, I understand that the EIA report will be revised as necessary to incorporate comments of the ministry and any changes arising from the approved report. And therefore, it will be resubmitted to the environment in accordance to the Environment Act.
0: प्रधानमंत्री दफ्तर के अंतर्गत एक नई प्रोजेक्ट मॉनिटोरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य सख्त निगरानी, बेहतर प्रबंधन और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की सहायता से बड़ी मूल ढांचा परियोजनाओं को पूरा करना है। PMQT के दौरान प्रधानमंत्री ने तेज धार वाले हथियारों से होने वाली हिंसा से जुड़े सवाल का जवाब दिया। 1 जनवरी 2021 से 15 जुलाई 2026 के बीच ऐसे 731 मामले दर्ज किए गए जिनमें 40 लोगों की मौत हुई और 697 लोग घायल हुए। सरकारी नेता ने रोड्रिग्स में चल रही विकास परियोजनाओं पर भी जानकारी दी। ये परियोजनाएं भारत की ओर से प्रदान की गई 19 मिलियन रुपए की वित्तीय सहायता से चलाई जा रही हैं।
3: अफगानिस्तान के पारून शहर में जोरदार सैलाब उतर आया है। कम से कम 20 लोग जान से गए हैं और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। मूल ढांचों की कमी और जलवायु परिवर्तन के असरात से अफगानिस्तान कुदरती आफतों के सामने कमजोर है। ग्रेट ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नाम ने आज ऐलान किया कि 1 अक्टूबर 2026 से सभी घरेलू बिजली बिल्स पर टैक्स की छूट होगी। इस कदम का मकसद लाखों लोगों को राहत पहुंचाना है और लोगों को बचत करने का मौका देकर उन्हें नई उम्मीद देना है। यूरोपीय संघ ने चीन के सबसे बड़े ऑनलाइन व्यापार प्लेटफॉर्म अली एक्सप्रेस को $629 मिलियन का जुर्माना दिया क्योंकि EU के अनुसार अली एक्सप्रेस ने गैर कानूनी, असुरक्षित और काउंटरफीट यानी जाली पैदावारों की बिक्री पर रोक नहीं लगाई है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल्स के आखिर में अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने स्पेन के खिलाड़ियों के प्रति जो बर्ताव किया उसके सिलसिले में फीफा की अनुशासन समिति अर्जेंटीना की टीम से जांच करेगी। अगर किसी भी तरह किसी खिलाड़ी या कोच को गुनहगार पाया गया तो उसे सस्पेंड किया जाएगा और अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन को जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत, हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। कल दोपहर बाद बादल घिर आएंगे सेंट्रल प्लाटो और पूर्व के हिस्से में रह रहकर बारिश होगी और दूसरे इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। आज रात के दौरान हल्की हवा चलेगी। कल दिन के दौरान हवा दक्षिण की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इसी वजह से दूर समुद्र में आज रात न जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 23 से 25, साहिल इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आपको ये भी बता दें कि तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस औसतन ज्यादा रहेगा। कल सुबह 6:44 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:48 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की खबरें आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी लुडोविक जोहंगीर की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार और आदाब। एमबीसी के साथ आप जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। शोक समाचार सुनिए। सिमेट्री रोड प्लान मान्यो में 73 साल के 73 इयर्स ओल्ड जनाब अब्दुल अजीज सोंदागर, जनाब अब्दुल अजीज सोंदागर जो किस्को के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज रात 8 बजे इनके घर सिमेट्री रोड प्लान मान्यो से उठाकर दफनाने के लिए प्लान मान्यो का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8 PM। स्टैनली रोजिन में 55 साल के 55 इयर्स ओल्ड श्री धीरज रामदानी जो चिकीवी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे मुरा फ्यूनरल पिछली त्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्लिव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। नंबर 38 नंबर 38 राम गुलाम रोड प्लेंदी पपाई में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड जनाब नसीम अकबर अली जो नसीम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा कल दो बजे इनकी बेगम आशा अकबर अली के घर नंबर 38 राम गुलाम रोड प्लेंदी पपाई से उठाकर दफनाने के लिए प्लेंदी पपाई का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमारो एट 2 PM। माता बदल रोड बोनाकोई में 47 साल के 47 ईयर्स ओल्ड श्री सूरज लक्ष्मण जो दीपक शोफे अब्यूस के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर के दो बजे इनके पिता भानु लक्ष्मण के घर माता बदल रोड बोनाकोई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोनाकोई की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। स्कूल लेन ते आगोज में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड श्री कृष्णा मेनन मुतुसामी जो गोविंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दस बजे इनके घर स्कूल लेन ते आगोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसालीन पोटलुवी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। रेजिडेंस सत्यावती पाइडेगाडू गांधी रोड लिस्पिरोंस कच्चे मिलिटिया में 50 साल के 50 ईयर्स ओल्ड श्री वीरा मुरुगन जो वीरा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी कामिनी रेशमा मुरुगन के घर रेजिडेंस सत्यावती पाइडेगाडू गांधी रोड लिस्पिरोंस कच्चे मिलिटिया में से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लैग्रेमो सैंपिया की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

0: बिल्कुल दोस्तों, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जिंदगी तो चार दिन की होती है, उसमें दो दिन तो हम इसी चिंता में बिता देते हैं कि पता नहीं आगे चलकर क्या होने वाला है। हमारा ये प्रोग्राम नई सोच, जहाँ पर कुछ मिनटों के लिए ही सही, लेकिन हाँ, कुछ पॉजिटिविटी हम आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं। वैसे तो ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सवाल जीवन में चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम नई सोच आपकी लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाता है, और कुछ ऐसे गाने जो हमें ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए हमारा साथ दे रही हैं आप और लेकर आए हैं प्रोग्राम नई सोच।
1: नहीं सो।
0: तो जी हाँ दोस्तों, शाम के 6:35 हो रहे हैं, मैं हूँ परी आपके साथ। वादा किया था साथ निभाने आएंगे जरूर, तो अभी से लेकर रात के 9 तक होने वाला है आपका और मेरा साथ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। अभी के लिए हमारा ये प्रोग्राम नई सोच, और ये जो सफर है, ये हर रोज आपकी जिंदगी को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम चिंता की बात करते हैं, हमेशा सोचते हैं कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, और हम सब किसी ना किसी बात की टेंशन लेते ही रहते हैं, चाहे वो जॉब की टेंशन हो, फैमिली की टेंशन हो, फ्यूचर की, हेल्थ की। लेकिन जैसे हम हमेशा कहते हैं कि इन सब सवालों के पीछे आप एक चीज़ भूल जाते हैं, और वो है ज़िंदगी को खुलकर जीना, ज़िंदगी को खुशी से जीना। जो आज के पल आपको मिले हैं वो तो चिंता में बीत गए, तो अब आज के ये जो पल है वो कहाँ लौट कर आने वाले हैं। सो लाइक वी से, कभी कभार हम इतना सोचते हैं, कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम्स भी हम सोच सोच कर क्रिएट कर देते हैं जो शायद कभी होने ही ना वाला हो। सोचना अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव सोचिए, सोचिए कि ज़िंदगी में जो भी होगा अच्छा ही होगा, और जो आपके लिए ऊपर वाले ने सोचा है वो बुरा कैसे हो सकता है। ज़िंदगी में अक्सर सब सही हो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना कि क्यों डरे क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा तो नया होगा। सो अभी के लिए तो हम भी कहेंगे कि लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, और इसे खुल कर जिए। हमारा साथ दे रहे हमारे सभी लिसनर्स, स्पेशली गोज आउट हमारी जो किचन टीम है, हमारे डियरेस्ट विशाल भैया, हमारी डियरेस्ट रीना भाभी, और सभी हमारी किचन टीम, आपके नाम हम डेडिकेट करेंगे अगला गाना, और आपकी वजह से हम भी मुस्कुराते हैं। तो यहाँ पर कोशिश यही रहेगी कि हमारे गानों के साथ आप भी थोड़ा सा मुस्कुराए, और आपका ये जो हेक्टिक शेड्यूल है इसे हम थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं इन गानों के साथ, जहाँ पर हंसते मुस्कुराते हुए बस जीवन को जीना है, और जो शायद कुछ प्यारे रिश्ते आपके पास है उन्हें संजो कर रखना है।

0: लिए दोस्तों नई सोच प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए साथ दे रहे हैं आप ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
0: वैसे तो हम अक्सर कहते हैं कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं लेकिन सोचना है तो अच्छा सोचो कभी कभार हम भी सोचते हैं कि ये जो पल मिले हैं इन्हें कैसे खूबसूरत बनाया जाए ना बस हमारे लिए बल्कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनके भी लिए तो ये प्यारा सा गाना सोनू निगम की आवाज डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम एंजॉय दिस वन

एक और प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म बॉर्डर, हरिहरन और साथियों की आवाजें। जैसे हम कहते हैं कि हमारे गाने जो हैं बॉलीवुड के बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, और ये भी एक गाना ऐसा है जो बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। आज तो बात ही हम सोच पर कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम भी है नई सोच। तो जी हाँ दोस्तों, अक्सर कुछ बातें ऐसी होती है जो जीवन को खूबसूरत बनाती है, और अक्सर कुछ बातें ऐसी होती है जो जीवन को थोड़ा सा मुश्किल बनाती है। लेकिन फनाओ हम कुछ ऐसे गाने लेकर आए हैं जो अच्छे जो सोच है, अच्छी जो फीलिंग्स है वो आप तक पहुँचाए। सो दैट्स अ

ब्यूटीफुल ट्रैक जहां पर कहते हैं ना कि भाई दो देश हैं, दुश्मन देश बना दिया गया है उन्हें, जहां पर लड़ाई भी होती है लेकिन दोनों ही तो अपने अपने देश के लिए काम कर रहे होते हैं. फ्रॉम द फिल्म बॉर्डर वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सभी के लिए हम डेडिकेट कर रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. नई सोच प्रोग्राम लेकर आए हैं ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन. ये गाना आप सभी के नाम.

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. और चलिए दोस्तों, हर एक गाना खास होता है और आज हम बात कर रहे हैं सोच के बारे में, चिंता के बारे में। चिंता जो है वो कल का दुख कम नहीं करती, बस आज की खुशियां कम कर देती है। इसीलिए मुस्कुराइए और डू योर बेस्ट, और बाकी तो वक्त पर छोड़ दीजिए। मैं हूं परी आपके साथ, और बस इसी गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं हमारे अगले प्रोग्राम की ओर, जिसका नाम है दिलों की आवाज़। और जैसे हम कहते हैं कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन अगर अपनों का साथ है, भले ही वो चंद लोग जो शायद आपके बारे में सोचते हैं, आपकी खुशियों के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में आप भी सोचें, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट उनके लिए भी मायने रखती है। सो लेट्स मेक इट स्पेशल फॉर एवरीवन, स्पेशली हमारे अपनों के लिए। अभी के लिए हमारे लिसनर्स जो हमारे अपने हैं, ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम। इक्वली गुजार फॉर विशाल भैया, रीमा भाभी, हमारी पूरी जो रेडियो मनोरंजन टीम है उनके नाम, एंड हमारे सभी लिसनर्स। साथ देने के लिए शुक्रिया दोस्तों। दिलों की आवाज़ प्रोग्राम की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। मैं हूं परी आपके साथ, रहेगा साथ आपका और मेरा रात के 9 बजे तक। अभी के लिए सोनू निगम, जसविंदर नरूला की आवाज़ें और ये गाना आप सभी के नाम।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. और चलिए दोस्तों, नई सोच प्रोग्राम के बाद इट्स टाइम फॉर सम रोमांटिक सॉन्ग्स. शाम के 7:02 ट्यूसडे की ये शाम जहां पर लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम दिलों की आवाज. मैं हूं परी आपके साथ, रोमांटिक गानों के साथ आपकी इस शाम को सजाएंगे. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस का वेलकम करेंगे 5250-6200-5250-6200. चलिए अभी के लिए बाजीगर फिल्म टाइटल ट्रैक कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजें पिक्चराइज्ड ऑन शाहरुख खान एंड द वेरी गॉर्जियस काजोल. चलिए हमारे सभी लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं दिलों की आवाज प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए और शामिल होते हुए कुछ प्यारे गाने हमारे सभी लिसनर्स के नाम. एंजॉय दिस वन.

बिल्कुल जी, गाने कुछ ऐसे जिनके साथ आपको भी इश्क हो जाए, कुछ गाने ऐसे जो आपको बैक इन टाइम लेकर जाए, कुछ गाने ऐसे जिनके साथ शायद आपकी कुछ खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए कुछ प्यारे गानों के साथ आपके दिल को लुभा रहे हैं, लेकर आए हैं प्रोग्राम दिलों की आवाज़। मैं हूँ परी आपके साथ ऑन रेडियो मनोरंजन रात के ठीक 9 बजे तक।

So yahan par ek aur beautiful track and that's taken from the film Refugee. वो पहली पहली फिल्म जहां पर अभिषेक बच्चन और करीना कपूर नजर आए थे सो यहां से उनकी बॉलीवुड की जर्नी शुरू हुई और अभी के लिए आपकी इस जर्नी को हम स्पेशल बना रहे हैं कुछ खूबसूरत गीतों के साथ शामिल होता हुआ ये गाना एंजॉय दिस वन

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: तो चलिए दोस्तों, साथ दे रहे हैं आप। शाम के 7:46 हो गए हैं ट्यूसडे की ये खूबसूरत सी शाम, जहां पर आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ रोमांटिक गाने। और चलिए अभी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कुछ दोस्त और ज्ञान बिहारी जी, साथ दे रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। साथ रहेगा आपका और हमारा ऑन रेडियो मनोरंजन। और अभी के लिए जो अगला गाना है डेडिकेट कर रहे हैं फॉर योर वाइफ सबिता, आपकी सिस्टर इन लॉ गीता, साथ में है संजीव, सुनील, रानी, शीतल एंड सभी RM3 लिसनर्स के नाम। सो थैंक यू सो मच ज्ञान बिहारी जी। और बिल्कुल अभी आप साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन, गाना आपके नाम। निर्मला जी हमारा साथ दे रहे हैं आप भी, सो अगला गाना होगा आपके नाम। और यहाँ पर कुछ और मैसेजेस जहाँ पर हमारे जो लिसनर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललिता जी आप भी गानों को पसंद कर रही हैं, गानों को सुन रही हैं, टैहूट से हमारा साथ दे रही हैं, सो गाना होगा आपके नाम। एंड वेल यहाँ पर कहते हैं कि आज अम्मा अपना बर्थडे मना रही हैं, उनके लिए स्पेशल विशेज। यह है फ्रॉम उनकी बेटी, उनके हस्बैंड, साथ में है रानी, शिवानी और सभी परिवार उनके लिए भेज रहे हैं प्यार एंड स्पेशल विशेज। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ परी आपके साथ दिलों की आवाज़ प्रोग्राम ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। साथ दे रहे हैं आप भी, तो आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन आप हम तक पहुँचा सकते हैं ऑन 5250-6200-5250-6200। इसी नंबर पर हो रहा है आपका इंतजार। अभी के लिए राहत फतेह अली खान साहब की आवाज और एक और ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के नाम। चलिए इस शाम को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ रोमांटिक गाने इन योर प्रोग्राम दिलों की आवाज फ्रॉम द फिल्म आजा नचले। एंजॉय दिस वन।

So well friends, some beautiful songs are आपके लिए और ये गाना तो आप जानते हैं सभी के दिल के बहुत ज़्यादा करीब और well इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं that पंछी वाला जो गाना था that was really sweet and हरे कांच की चूड़ियाँ फिल्म का ये गाना आप सुनना चाहती हैं हरियाणा जी फेनिक्स से I'll try my best to play this गाना आपके लिए for now ऐसे ही कुछ प्यारे गाने हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं दैट्स मुकेश अग्रवाल अलका याग्निक की आवाज़ें एंजॉय दिस वन

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. रात के 8:27 रेडियो मनोरंजन पर साथ दे रहे हैं आप एक और ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म दिल तो पागल है. माधुरी दीक्षित शाहरुख खान की ब्यूटीफुल केमिस्ट्री और ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारे सभी सुनने वालों के नाम साथ दे रहे हैं आप. सो हैव अ वंडरफुल टाइम, एंजॉय दिस वन.

और चलिए दोस्तों ऐसे ही प्यारे गानों के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. मुलाकात होगी आपसे जल्द यहीं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. तब तक के लिए एंजॉय करें इन गानों को, एंजॉय करें अपनी रात को, और जैसे हम कहते हैं कीप इट म्यूजिकल, कीप इट मैजिकल एंड स्टे कनेक्टेड RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ.

0: संगतिया लोग घड़ी मिला लाई बकत रात के ठीक 9 बजे बाद तू सुना तो और एमप्री रेडियो मनोरंजन और एएम2 रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन 94.95 मेगाहर्ट्ज एफएम पर और एएम2 यानी कि 819 किलोहर्ट्ज पर
1: Continuous music.

0: चोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा।
2: सब संगत चलो क्या जय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन एमबीसी के दोनों रेडियो चैनल पर सबको के स्वागत बा। और आज हम मंगल की रात मंगल 21 जुलाई 2026 अभी से लेके रात के 11 बजे थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के नंबर वा घुमाइया का जगह दे जगह बिचा क्या फिर हम के SMS करिए हम के टिकटॉक पेज पर टिकटॉक पेज रेडियो मॉरिशस के सबके के हमने स्वागत करा थे जा। और बेशक अभी तो हंगामा शुरू बा भैया अभी रात भर हंगामा हो अभी से लेके रात के 11 बजे एक से एक बेहतरीन भोजपुरी गीत तो लोग के पसंदीदा भोजपुरी गीतों पर।

और बेशक जब हम आए तो खूब गमट होइला और बेशक आजकल ढेर लेका लोग सब लेका लोग स्कूल की छुट्टी में बा अध्यापक लोग भी और ढेर पाहुन लोग भी कौन से जोन से लेका लोग के घुमाए खातिर तो सबको एक मतलब है ये हैप्पी स्कूल हॉलीडेज बन वैकेंस और चला शुरू कर जाए एक जोली गीत के साथ मार ताली मार हम संगे है गीत सब रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन के लिसनर्स के नाम और सब भोजपुरी लवर्स के नाम है गीत।

जेमी वेंसिस के फिनाल में कर जीत होलबा जी हाँ, स्पेन के जीत होलबा, बधाई हो, बधाई स्पेन के। और एक महीना से ज़्यादा वर्ल्ड कप 2026 चैनल दुनिया भर में और एमबीसी टीवी पर इस सब तो लोग देख ला जाओ, जितना कोई स्पेन के सपोर्ट कर लगता बधाई हो बधाई। और हाइजन वर्ल्ड कप फिफा हलकर में रहल 48 टीम और कुल मैच रहल 104 और बेशक ढेर मना देश अगर में भाग लेलक, ढेर कोई के हार हो, ढेर कोई के जीत भी। और 19 जुलाई 2026 एक फाइनल रहल और एक में स्पेन के 1 अर्जेंटीना 0, स्पेन सबके पछाड़ दिलक और स्पेन के जीत होल। चैंपियन स्पेन और उप विजेता अर्जेंटीना, तीसरा स्थान इंग्लैंड फ्रांस के हरा के। और विश्व कप मॉरिशस वासी ढेर कोई गरल अंसर, ढेर कोई के मौका मिल रहा, टिकट मिल रहा लोग जाए के देखे के सब खेल। और बेशक सब सब कोई खुशी होल कि बाद में जो जीत होल तो उस सिकंदर जो जीता वही सिकंदर, यानी कि जीत होल स्पेन के और स्पाइन जीत लग, बहुत बहुत बधाई। और अभी यहाँ पर ही हमने से और अभी अगला गीत जो है भाई सराबी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना और है गीत। तो हमने श्रावती सब संगत्यारों के नाम सुनीता गणेश, अनीता जोगी, दिलीप चौधरी, केलान माया रामदोस, रोहित यादव, दिलीप जी, फिर पद्मिनी कौदन, देवीना विशेषर और दिनेश मातो, कर्मा रिशन, माया रामदोस, शोभा और निजाम बहादुर, हेमा निपुल सिंह, बीना भैरव और देखा फेक प्रोफाइल यूटिलाइज करके बोल बत फेक प्रोफाइल में नहीं सकब से नुमे करे कहे के निमन नाम देव से तो हम नहीं सकब से बोले माफ़ी चाहते हैं पर ऐसे चलेला। दिल दिल ब्रिज सारे गीत हर खातिर कविता अनु है गीत हर नाम चली सागर कुमार और है गीत हेमा खातिर, हेमा कनाई और सब कर परिवार उकर दुगो लेका उकर घरोला। हेमा जी नमस्ते, हेमा निपुल सिंह साथ में शाहिद इकबाल खान है गीत तोहरो नाम, बहुत बहुत प्यार के साथ शाहिद इकबाल खान। प्रोग्राम भोजपुरी का है, भोजपुरी गीत चली ठीक बा। और प्रीति भीम के साथ देवत हवन, हेलो विश नूरा है गीत तोहरो नाम। और जीवी श्यामा महेराली हेलो जी। और जितना कोई अभी हमने की देखा था हमने की टिकटॉक पेज पर और जितना कोई हमने की रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर सुनाता है गीतों के नाम भाई शराबी है गीत खास हम खास रेणु काकी और से उकर बहिन खातिर, उकर बहिन है अमृता रीता की ओर से, अमृता रेणुका खातिर और सब उकर परिवार के नाम चलक साथ सुने गीत भाई शराबी।

0: पहली भाई शराबी बन गईली।
1: हमने सब श्रोताओं की मांग करते सकी है जो लाइव टिकटॉक हमने की चलाता एकर में हमने कोई कैंप दे करके नए सकब से प्रोग्राम करें प्रोग्राम खाली हमने के हत अपन एसएमएस करिए वीडियो कॉल नहीं करिए कि नहीं बोले कैंप दे क्या होत हो हम माफी चाहते हैं पर सब काम एगो फ्रेंडशिप से एगो अनुशासन से चलेगा मन करता गीत मांगे के तो गीतवा सकबा मांगे पर लाइव वीडियो कॉल नहीं करे के हमने के टिकटॉक पेज पर ठीक बा समझदार की इशारा काफी बा और बेशक जब कोई गलती करेला तो हमने के चेहरा वो गलती के सुधारे के वो लड़का जब गलती करेला तो बड़ा आदमी के काम सुधारे के पर जब बड़ा आदमी गलती करेला तो चेहरा वो लोगों के सुधारे के कहकर हमने अक्सर देखे ऐसा कि बड़ा आदमी लोग भी गलती करेला। हाँ बड़ा आदमी लोग हमेशा सही नहीं रह रहा है ढेर को ढेर बार वो लोग जब लाजम चावला उम्र बढ़ जाला तो वो लोग कबुआ मानी हो जालन सर कब कब ऐसा नहीं को डिसीजन लेवेलन सर कि घर जो है ऊपर नीचे हो जाला महाभारत हो जाला तो जे भी गलती करी तो हमने के कर्तव्य है वो लोग के सुधारे के ठीक बा। और अगला गीत भागते रहेला आदमी और है गीत तो हमने चलावते इस ललिता कुशल जी के नाम भवन त्रिजोली से उनके साथ देवत हवन ललिता कुशल तोहर सब परिवार के नाम चाचा आत्मा राम खातिर भी चाची भरवावती वन वेल फौसे और है गीत रीता है गीत चलावते इस रानी की ओर से कर बेटी परी कर कर कर घर वाला साइलेन और सब परिवार के नाम और इस गीत हमने चलाओ संजय बिहारी खातिर और पत्नी और सब लड़का और सब बिहारी परिवार के नाम और चाचा साइलेन की ओर से और नेफ्यू माधव के नाम भी गीत चली बहुत प्यार के साथ भागते रहे आदमी

सच के आदमी भागते रहेला, कभी इधर भागेला कभी उधर भागेला, भागम भाग भागम भाग। जी हाँ, जैसे मैं रात के 9:22 हुआ था, जैसे तुरा बोली हमने कि टिकटॉक पेज पर वीडियो कॉल नहीं करे के, मन करता गीत मांगे के तो SMS करिया, ठीक बा। अगला गीत आई लव यू बोलेला, गीता का जाधर गीतवा गई रे हवन, और एक गीत चलावत इस सब संगतियालो के नाम आकेश आकाश डोंडिया, माला बौरू, शोभा जी हवन, कविता अनु, अरुणा मानती गोकुल, और है गीत चलावती से अरुणा, हाँ बतौन लविश के मामा हवन जा। ओके अरुणा, तो गीत तोहर खातिर और तोहर बेटा लविश खातिर, कुमार जी के साथ देवतन शबरान है गीत तोहरो नाम, और अमृता डुंगूर लाल माटी से हवन, रविराज बिचुक का गीत तोहरो नाम, तोहर पत्नी तोहर बेटा तोहर माता जी और तोहर सब परिवार के नाम, मीराबाई है गीतोरो खातिर, नानी खातिर, और आयशा पमीला है गीत तोहरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ, और राज साहब हम के साथ देवतन हाय पमीला है गीत तोहरो नाम, और बेशक जितना कोई भी रात के मन के साथ देवता है गीत तोहरो नाम, गीतवा के बोल है आई लव यू बोलेला, गीता गजाधर की जुबानी।

गाड़ी में इस्तेमाल होला जैसे हमने लाइसेंस दाइला सा डीजल दाइला सा कुरान से चले रहता है शेल में वहाँ के ढेर गाड़ी में कोको तेल से भी होला अब ढेर को बताए कि इससे क्या लाहौई प्रताप जी हाँ जी सेशल के बाद बोला थे मॉरिशस में कोको तेल से हमने कपार में दाइला सा जब कपार दुखाला तब कोको तेल और करवा तेल भी दाइला सा पर इस जान के तो आश्चर्य में पड़ जाएगा कि सेशल में कोको तेल जो है वो मासिन में डाला और मासिन ऊर्जा ओके मिलेगा फंक्शनल की खाली सेशल में होला और अगला गीत स्वास्थ्य जी का अच्छा बाय गीत चावते ऐसा खास हम खास जयराज रानी अंतिश अंकुश स्नेहा और सब दुलार परिवार के नाम लाल माटी से और है गीत राजीव के नाम इंदिरा ननकु है गाना चावते ऐसा माता जी इंद्रानी बिहारी के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत चली रिशन के नाम और है गीत लाविश भाविश गणपत आरुष और अरुणा खतीर बहुत बहुत प्यार के साथ है गाना इंद्रानी बिहारी जी के नाम कौची में जैसे अंजाम के साथ देवतवन और फिर है गीत ग्रीक गर्ल से पर प्यार शक्ति खतीर हेमा गीत हरो नाम हेमा निपुल सिंह रामजीत रामहित सुमन जी गीत हरो नाम और बेशक जितना कोई नींद नहीं लगता तो गीत लोग के नाम भी स्वास्थ्य जी का अच्छा साहिल चगारू की आवाज़ में

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: RM3 Radio.

और संगत आलो तो खुश रह बने कि वन डे आज है तो वैंसिस जुएट लेकर सकबा जाए को वीडियो करके व्हाट्सएप पर विदा करे और देखा सर केकर में कितना तालों बा और सकबा जा एक दिन खातिर आज है बने तो जरूर पार्टिसिपेट करिया ये वन डे आज है में और कर डेडलाइन है क्लोजिंग डेट है दिमास 26 जुलाई के यानी कि और एक सप्ताह में क्लोजिंग डेट चलाई तो फटाफट लिया गो वीडियो अपन पोता बड़े को वीडियो बनाइए और विदा करिए जैसे कभी वेदिता और विकास कौर थोड़ा बोला कैसे जहाँ पुगामा में पहुँची पे है के और अगला गीत मच्छी मरवा हमर नाम और एक गीत हम चलाते हैं जहीना खातिर हाय जहीना देश है तोरो नाम फिर एक गीत चली योगेश सिबोरन कौछ मिनी जैसे वन नर्मदा रमा सोमी एक गीत तोरो नाम सनोज कुमार यो हीरा मगर विक्रम दिल बरना है गीत तोरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ जहीना और आफेज हवन लावेनिया से पिया से हाय आफेज और लागोजा से हवन संगीता मिरन सब मोहन परिवार और मामा कास्तेल में और भाई दान आजी फिर बहन रक्षिता का बहन बहिमा शांति रक्षिता वंशिका और सब अमीरन और मोहन परिवार के नाम मच्छी मरवा हमर नाम और बेशक कहेगी तो अरे जना मंगले रहल प्रोग्राम की शुरुआत में आलिए एस एम एस के और बढ़ब जा और देखब जाके गीता मंगले रन ओके गीता एक जना मंगले रकर माँ खातिर मच्छी मरवा हाँ यो मंगले रन गीत कर माँ खातिर और माँ के नाम इंद्राणी बिहारी तो चला गीता इंद्राणी जी के नाम माता जी गीत और खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ आलो मैं गीत और नाम लुई क्रिस्टोफर और रॉय साहबियन के साथ देवतन फरोज मकर लाल हेलो और

17 जुलाई से 17 अगस्त ले सब ले कालो कौनसे मेरे प्रीमियर और सेकंड के एक महीना के कौनसे तो खूब नचिया गईया मजा करिया गमत करिया का एक महीना के मिलल बा गमत करे के तो सब कोई गमत करब स तो लोग के संगे संगे और बेशक जब गमत की बात आवेला तो हमने सबसे पहले आईला था कहे कि हमने खुशिया सा रेडियो पर भी गमत करे की अगला गीत वॉइड खातिर यो खातिर भी और सुनीता हमने के साथ देते हाई सुनीता है गीत धोरो नाम सारू है गीत धोरो खातिर रामोस है गीत धोरो नाम और है ये गीत चलावती स्वीट डेविल के नाम आप होन ब्रम्बुलिस्तान से और बेशक हम के साथ देते हैं और इंद्रानी भी हमने के साथ देते हैं हाय इंद्रानी नमस्ते साथ में जितना कोई हमने की सुनता है बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत धोरो नाम अकेले घूमे जाले अब कहाँ अकेले घूमे जाला चल एक साथ सुनब जा

स्कूल की छुट्टी बाद लेकर लोग खुशी रंग से स्कूल की छुट्टी में सिनेमा जाएगी तो सिनेमा में कौन कौन फिल्म खेला था आजकल जहाँ आजकल खेला था दुगो फिल्म एगो फिल्म के नाम है धमाल चार और एगो आके फिल्म एगो दूसर का फिल्म के नाम है अल्फा वेलकम टू द जंगल दो सप्ताह से शुरू कर पर अभी जो फिल्म खेला था धमाल चार और अल्फा धमाल चार में तू देखवा जय देवगन रितेश देशमुख अरशाद वारसी जावेद जाफरी और संजय दत्त के ये फिल्म के निर्देशक हवन इंद्र कुमार कॉमेडी से भरपूर मूवी है हाई फिल्म धमाल चार शुरू से लेके अंत ले तो लोग हंसते रह बस गारंटीड है कॉमेडी फिर दूसर का फिल्म है अल्फा ये आदित्य चोपड़ा और शिव रावल की बनावल फिल्म है ये एगो पहला लेडी लेड फिल्म है महिला लेड फिल्म और एगो एक्शन से भरपूर मूवी है इस फिल्म में दिग्विजय आलिया भट्ट शर्वरी बॉबी देओल अनिल कपूर और आर माधवन की तो याद रखिए दुगो फिल्म खेला था इनके सिनेमा में आजकल एगो फिल्म के नाम है धमाल चार धमाल कत और दूसरा है अल्फा अब तो देखिए कौन फिल्म तुम्हारा मन करा था देखेगी और अभी खातिर रख लगे जिंदासन से ढोलक मंगेली और रिसोल बुलाता हूँ काल जातवन गौबे घूमे थे गीत गौबे और सब परिवार के नाम हाय जोशना हाय दया हाय ऋषि दिनेश गोपी मनीष चामी सिंह है गीत तुहर खातिर तुहर पत्नी तुहर तीन गो लड़का तुहर माता जी और सब चामी सिंह परिवार के नाम सुबी एम के साथ देव तुहन इम्तियाज को हो है गीत तुहरों नाम यूश गनौगी है गीत तुहरों खातिर और सेंट SSS कॉलेज के सब स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ वहाँ के रेक्टर एक्टिंग डायरेक्टर मिस्टर रुबेन मुनसामी और सब संगत यारों के नाम खासकर मिस्टर धर्म गंगू मिस्टर सौजू मिस्टर गोसाई मिस्टर बीरापेन मिस्टर अपाया फातिमा दीना शोभना और केत खातिर और जितना कोई हमने के भी रात के साथ दे होता है गीत और खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ और है गीत प्रताप के और बेस्ट फ्रेंड हरीश नारायण खातिर हरीश नारायण हेलन Midlands.

हमने की पुरानिया लोग हमेशा बोला चला बोले आंसर की सिल में पिसल चीज के स्वाद आहाहा नंबर वन सिल पर पिसल मसाला सिल पर पिसल चटनी या कोनो भी से पीस सिल में जब पीस बा तो कर स्वाद एकदम बढ़िया रोस्कारी बात अलग है रोस्कारी की नहीं हम अलग है बाप भैया हम अभी ये चटनी है पोलडामन की चटनी पीसी रहा हमारे रोस्कारी में हालांकि बा जो पीस खास कर पारिवा पर हम खुशी रही अपन हाथ से चटनी खास कर कचब पानी डाल के मन से हाँ कि नहीं अगला गीत गीत गवाई में चलेगी चलोगे चंदा है गीत रवि बंगारू की ओर से और बेटा रायन खातिर शांतिर गीत और नाम बबीता बोला कि है गीत तोर खातिर सुमन क्षेत्रीय गीत और नाम रोशन भाई आजागी कंदा सामी नमस्ते किंग हवन और इम्तियाज को हो तो चला एक साथ सुने गीत हुआ बहुत ही प्यारा संगीत है गीत गवाई में चले के बाद चलोगे चंदा प्रेमिला भरोसे है गीत और नाम

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
2: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का।
3: चौरानवे पंचानवे छः और थर्टी दो FM पर यह रेडियो मनोरंजन और 8 किलोहर्ट्ज़ AM पर यह रेडियो मॉरिशस यानी कि रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर चलता है एगो कार्यक्रम भोजपुरी तड़का। रात के 11 बजे अभी रात के 10:03 हुआ बा। वेलकम इन द सेकंड आवर और बेशक लोग सब जाए टेलीफोन करे अब टिकटॉक पर नहीं चली चली लाइव प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और टेलीफोन करे के नंबर काट जाओ देव जाओ विद सैंक। चाची प्रभावती हवन नोवेल फ्रांस से गीत तौर खाती चाची बहुत बहुत प्यार के साथ बीच सीमा में गाड़ी खोलेला और गीत गैली हवन हरि गणेश बीच सीमा में और सासी बन मारियम के साथ देवत हवन गीत और खातिर तोहर सब ड्राइवर दोस्तों के नाम और तोहर पत्नी तोहर बेटी दामाद बेटा विवेक और सब बुनुमारी परिवार के नाम बीच सीमा में है गीत। फिर है गीत चली राज मन्ना खातिर सुदेश जसवा गीत तोहर माँ राजकुमारी और प्रवीण भैरव लोंग चिबुक राजा संजीव श्याम मंगल स्टीव माना है गीत तोरो नाम और नानो खातिर भी है गीत चली बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना कोई भी रात के मैंने की सुना था है गीत थोड़ो नाम रतन निहाल हवन गॉम्बे से कर पत्नी करुणा पापा विजय और सब निहाल परिवार के नाम बीच सीमा में

सुनना ना बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं खोल गया 18 साल हो जाए तब जाइए अपन लाइसेंस निकाले जब लाइसेंस मिल जाए तब गाड़ी चलेगा रात के 10:09 बोला तो संगत या कैसी लगा था ये प्रोग्राम सबके हमने के साथ नाचता

0: गाया हुआ था झुमटा प्योगी चली हल्दी और शादी पर गीत अकेली हवन किशोर कुमार रमेशर जोरी गीत है। और जब गीत की बात करते सर हल्दी की बात करते सर तो देखो कुसे रह जाए कि हल्दी में काय के साथ को प्रकार की थकारी और पूरी मिला खाए के गर्मा गर्म और शादी में मिला बिरयानी खाए के। और संगतियारों का आजकल छुट्टी की बात करते सर तो छुट्टी के समय कुछ चकल जा करे सकबा जा सिनेमा जाए फिल्म देखे या जगबा फिशिंग करे चाहे या लामिया जाइब नाजी करे इनडोर गेम्स वा का होम डोमिनो लूडो बैडमिंटन और आउटडोर गेम्स फुटबॉल गुडी राई के और अपन माँ बाप संगे जैया घूमे दादा दादी लोग संगे जैया नानी लगे जैया विजय जैया घूमे और ढेर मना बहाना बा है छुट्टी बिताए कह के एक महीना के छुट्टी मिला था तो चेहरा भरपूर मजा लेगी हों कि नहीं कह के जम टैम में निवन से काम कर ली है वो सब ढेर लेखा लोग गजलता मिल गई बा पर ढेर लेखा लोग कौनसे में गजलता मिली और जन बजा कि घाट नेफ घाट ओंस घाट थ्रेज और मैं कितना निकल लिया हुआ तब भाई सब के घाट के अपनी फोकस पर जाकर अब सब कैम्ब्रिज के ऐसा मेरे को बड़ा प्रोसेज लंबा फमानी थी। अगला गीत है हल्दी और शादी के गीत और है गीत हमने चलावा इस सब संगत के नाम है गीत चली खासम खास विमी की ओर से अशोक खतेर और है गीत चली प्रियंवदा की ओर से प्रियंवदा की ओर से शैलेश खतेर भी बहुत बहुत प्यार के साथ साथ में है गीत चलावत जितना संगत चालू रात के भी हमने सुनाता तय गीत लोग के नाम हल्दी और शादी।
1: हे मामू कहाँ जाइबा शादी में या चौथारी में

0: days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
1: RM3 Radio. Radio.
2: संगत लोग रात के 10 बज के आधा होता और तू सुनते हो रेडियो मॉरिशस 819 किलो हर्ट्ज पर और रेडियो मनोरंजन 94.6 और 98.2 FM पर। ये दोनों चैनल है MBC रेडियो के और हम है अजय प्रताप सिंह तो लोग के साथ देवत है जा भोजपुरी गीतवन के संगे भोजपुरी तड़का। हमने के देश में ढेर विदेश लोग आके काम करता है, जैसे पंजाबी, नेपाली, बांग्लादेशी और मलागासी लोग सबको एक में स्वागत करते हैं जा। और आजकल देखते हैं सब एक दूसरे का इतने रिटर्न करता है।

रात के और फजीर के जो है तड़का फजीर के और रात के ठंडा दिन के तो घामा आज के जो घामा रहा बाप रे बाप तो बुझाती नहीं बात कि लीटे में है सर कि लीबिया में है सर मौसम चाहे कैसे मेरी बस हमने चलो के साथ देते रह जा रेडियो मर्चर्स रेडियो मनोरंजन पर अगला गीत था माचे के गवल गीत ढोल बाजे ढोलक बाजे और बेशक हमने जी बाजा ढोलकवा बजाते रही जैसा रात के 11 बजे ली अभी नाचिक में ढेर कोई काम करता है रेडियो विज्ञान केंद्र मिट्टी मॉरिशस मिट्टी सर्विसेज पुलिस विभाग पुलिस फोर्स दमकल विभाग फायर सर्विसेज इनके एस एम एस के नौजवान लोग गार्ड कोच लोग काम करता सिक्योरिटी गार्ड्स लोग और कॉल सेंटर में ढेर कोई काम करता और पुलिस लोग रात के सीमा में पेट्रोल करे रन से जितना कोई काम करता है बखत सबको की वजह से बोको आज रात के काम करके आसान नहीं बा जाए ना से पर अपन पेट के सवाल खाती अपन परिवार खाती परेला काम करके थोड़ा सुन वो टाइम करवा काम करवा थोड़ा पैसा जस्ती मिलते अच्छा बा हाँ देर कोई कुछ गमट करेगी तो कैसे गमट करवा पैसा पोस्ट में इतना अपना गमट करवा अब माची भाई क्या बोला था चल एक साथ सुनम जा और है गीत हमने चलावा तो इस संदेश भैरव के उसे कर पत्नी लता बेटी अंजलि फिर शिवानी कर शिवानी की घर वाला सब भैरव परिवार के नाम कवि की ओर से चाहे गीत कर पत्नी थीना कर माँ माला कर बहन रीना और कर बेटा माधव खातिर और रोजी दाहवन हाईलैंड से हाई में से बेन पोट्री से भाई आबू हवन बाकवा से भाई आबू कैसे बस समाचार क्या होते हुए जगह बुझे एक बार टेलीफोन नहीं कर लाइन खुलर बा भैया अभी मौका मिलता बजाय की तो नहीं बोलिए मौका नहीं दिए क्या जगह होते हुए जगह बुझे एक पर सक बजा टेलीफोन नहीं करी चिलक सा सुन अब जाएगी तो ढोल बाजी राफिक मोहित वन तायक से है गीत थोड़ो नाम

0: से ही। यस।
1: हमनी जीवित हैं सा त भगवान की कृपा से ऊपरम पिता परमेश्वर वो भगवान के कबो नहीं भुलाया सुख मेरा बा दुख मेरा बा चाहे कोनो भी परिस्थिति मेरा बा त भगवान के हमेशा याद करिया कबो कबो सब सीमा बंद हो जाला पर तुम्हारे को मंत्र से तुम्हारे को पूजा पाठ से तू भगवान में आस्था करेला भक्ति रखेला त एकाए के को दरवाजा खुल जाला हमें को एक्सपीरियंस कर ले आई कि जे तू सच्चे हृदय से भगवान के पूजा पाठ करेला त भगवान कोनो न कोनो रूप में आके तुम्हारा मदद करेला है दुनिया के सृष्टि करक बा भगवान और रूप जानेला सही समय पर कौन सी चेहरा करे के सब काम सही समय पर होला हमने कहा भगवान से नाराज हो जाए कुछ झगड़ा कर सर पर भगवान दुनिया भर के बने लग बा अब सोचो कब पर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बा कि इंसान से लेके जीव जंतु तक के उनके चेहरा देखे के फासिल काम नहीं है तो चाहे कुछ भी हो जाए तू भगवान के ना भुलाइया भगवान के ध्यान करिया भगवान के पूजा पाठ करिया भगवान के जब पूजा पाठ के सब भगवान के जब याद के सब भगवान के जब स्मरण करिला सा तो मन के शांति पहुँचेला और हमने के मन में अच्छा पवित्र विचार आवेला तो दुनिया में सब कुछ भुला जाइया पर भगवान के कबू न भुलाइया कोनो भी मंत्र हो जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे या जय माता दी और कोनो भी तो हर आराध्य देव आ कोई के शिव है कोई के दुर्गा है कोई के काली है तो कोनो भी भगवान के तू पूजा पाठ करेला अपन मन में के थान लिया और नहीं बोलते कि दिन भर मंदिर में बैठ के भजन करे के तू कहूँ जाता हुआ गाड़ी में हुआ तो कोई तपन मन ही मन में भगवान के नाम ले लिया कहूँ जाता हुआ बाजार जाता हुआ क्या कहूँ से आओ तो काम पे जाता हुआ या कहूँ भी तो भगवान के को नाम ले जा भगवान की जप करिया और लिखे भगवान तो हर रक्षा करी तो चला भी को दुर्गा भजन सुनब सा ओम नमस्तुते ओम नमस्तुते।

जितना कोई भगवान के पूजा पाठ करेगा भक्ति में तो लोग अपन जीवन व्यतीत करेगा सा ता गीत तो लोग के नाम सब भक्त लोग के नाम है गीत नमस्तुते नमस्तुते भगवान से प्रार्थना कर सके हे प्रभु तोहरा आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे सबके जीवन में सुख शांति रही

मॉरिशस में हमनी को शिक्षित लोग हैं सर शिक्षित जनता है सर हमनी के चेहरा जाने के अपनी के स्वास्थ्य खातिर कौन सी चेहरा खाए के संतुलित आहार बैलेंस डाइट और साथ में जब बात करी रहा सर तो संतुलित आहार के तो ओकर में आवेला एगो सब्जी ओकर नाम है इमली इमली बड़ा खट्टा रह रहा हूँ कि नहीं अब इमली जो है ये जो है एक में ढेर मना पौष्टिक तत्व बा इमली में कार्बोहाइड्रेट्स बा फाइबर बा प्रोटीन बा विटामिन बी एन विटामिन बी टू विटामिन बी थ्री विटामिन बी सिक्स विटामिन सी पोटाशियम बा मैग्नीशियम बा कैल्शियम बा फॉस्फोरस बा आयरन बा कॉपर बा और ये बहुत अच्छा है इनके स्वास्थ्य खातिर तो इमली ज़रूर खाया जा वो चाहे तीखा रहेला पर स्वास्थ्य के बहुत अच्छा है ये खट्टा मीठा फल है इमली ये पेट डाइजेशन खातिर अच्छा है पेट के इमली के चटनी बनीला इमली सब्जी में डाइला सा कच्चू में जमी मुँह नहीं खजवाए और है जो इमली है ये हर व्यंजन में कर उपयोग होला और इमली के जूस भी बनेला जुटामागें ग्लासे पर अभी ठंडा का तभी ग्लासे नहीं सकवा पिए वो जिन्हें पिया पर इमली के तत्व ढेर है जैसे बोली जैसे कि ओकर में बोली ढेर चीज बाद आयुर्वेद में भी कर प्रयोग होला और इमली तरकारी में से भी होला इमली के टक्कर बनेला शादी में खाई ले वो ना शादी में जब चिपूरी है से आगे चिपूरी खाइबा तो में टक्कर नहीं रही तो वो कौन से अच्छी के कॉम्पोट थे कोई कॉम्पोट बोलेला तो इमली के को टक्कर खट्टा मीठा रहेला और इमली कच्चू भाजी में गायला स और इमली ढेर चीज में कर प्रयोग होला तो ज़रूर जब बाजार जेबा भौतिक जेबा तो इमली एक पाकि ले ले या ताकि सब प्रयोग करे और ढेर कोई लेकर लोग नहीं कुछ इमली खाए कि खट्टा मीठा रहा अंगे यार बाद जब हम स्कूल जाते थे प्राइमरी स्कूल में रही तो मोहताबा गवर्नमेंट स्कूल में एक दादी आवा था लू कॉम्पोट बनावा था इमली के और पत्ता कौन सी के पत्ता में फेउज के पत्ता में थोड़ा सुन कॉम्पोट डाल के बेचे बहन से आंसू की नदरी सा ऐसा न अच्छा लगे खाए के तो हमने के दादी नानी लोग हो तो लोग जाने ला कैसे टक्कर बनाए के तो लड़का लोग भाभी कौनसे में होन सा पर नानी नानी दादी लेके जेब तो बोलिए चाचा चाचा बोला था राजो में चाचा प्रताप सिंह फैन चिकित टक्कर मौजे दादी नानी नानी लोग बार लड़का लोग के बड़ा दुलार करेगा नानी लोग बा ना नाना नानी दादा दादी लोग बा ना तो चिकन नाना

दादा दादी बा पुरानिया लोग बा तो जरूर अभी लड़का लोग पहुंचे में बा तो थोड़ा सा इमली के टक्कर बना दिया लड़का लोग उंगली चाट चाट के खा ली आहा अगला गीत काम करवा रहे काम करवा है गीत बिना की ओर से कर दूगो बेटा कर घरोला और सब कर परिवार के नाम है गीत चली और रवि दिनों गीत तोहर खातिर तोहर पत्नी दुगो तोहर दुगो रवि दिनों के अवसर कर पत्नी कर लड़का लोग कर माँ बाप और सब कर परिवार के नाम जिमी और सावन दुखिया गीत और खातिर तुल के माता जी खातिर सब दुखिया परिवार के नाम और है गीत कवि हर नाम की ओर से चली कर पत्नी कर बेटा और सब हर नाम परिवार के नाम और जितना कोई भी रात के अपनी की सुनता तो लोग नींद नहीं रखता कोई इधर करवट बदलता कोई उधर करवट बदलता है गीत और नाम फातमा न्यू ग्रुप से अवन उदय धनी नाम के जिपस से प्रीतम राज मिला और अभिलक भाई हवन नया अंदाज का आओ के गीत और खाते ऋषि रापू जी है और सब रापू जी परिवार के नाम है गीत चली काम करवा रे काम करवा

संग लोग श्वेता बाबूलाल और किशोर खिमिया के गवल गीत ओबलमा के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से अभी उनके साथ ही रजा बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग के फोन कॉल खातिर धन्यवाद। हम इनके टिकटॉक पर देख ला, टिकटॉक पर SMS कर ला, बहुत बहुत शुक्रिया। रात के ठीक 11 बजे हो रहा, 11 बजे प्रोग्राम समाप्त हो जाए। सुन बजा नीतू शाह से सुनहरे पल प्रोग्राम, और रात के 12 बजे से कल फजर के 6 बजे ले नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने के तलों की मुलाकात हुई कल सांझ के 6 बजे से रात के 11 बजे ले रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर। प्रोग्राम रही नई सोच, दिलों की आवाज और भोजपुरी तड़का। तक कल तक हमने की इजाजत दा और जय प्रताप सिंह की ओर से सबको के प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि बाय बाय लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: प्रणाम श्रोताओ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? स्वीकार करें नीतूषा का करजोर प्रणाम। इस समय आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं एक बार फिर सुनहरे पल कार्यक्रम में। तो आइए रात्रि के 12 बजे तक बेहतरीन सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग्स आपके

नाम करते हुए आज एक ऐसे कलाकार की दुनिया में आपको ले चले हैं जो कभी जाने ऐसे किया करते थे। हाँ, अंदाज़ा तो लग गया होगा। हम बात करने वाले हैं राजकुमार, हिंदी सिनेमा के एक ऐसे नाम जिन्हें सिर्फ एक महान अभिनेत्रा जो एक सिर्फ एक महान अभिनेत्रा अभिनेता ही नहीं बल्कि एक लेजेंड, एक स्टाइल आइकॉन और डायलॉग डिलीवरी के बादशाह के रूप में भी आज याद किए जाते हैं। साथ निभाते रहिएगा।

राजकुमार, उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को लोरालई, जो आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वे मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करते थे। कहते हैं कि उनकी शानदार पर्सनालिटी और दमदार आवाज से प्रभावित होकर एक फिल्म मेकर ने उन्हें फिल्मों में आने का मौका दिया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने हिंदी सिनेमा को एक अनमोल सितारा दिया।

राजकुमार की पहचान उनकी गहरी भारी आवाज, शाही अंदाज और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी थी। उनके हर डायलॉग में एक अलग ही गरिमा और दम होता था। जानी, उनका अंदाज़े गुफ्तगु इतना मशहूर हुआ कि आज भी लोग उनकी मिमिक्री करते हुए इस लफ्ज से उन्हें याद करते हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी ज़बरदस्त होती थी कि बड़े से बड़े सुपरस्टार भी उनके सामने अलग ही नज़र आता था।

राजकुमार ने अपने लगभग चार दशकों के फिल्मी सफर में 70 मानी कि 70 से अधिक फिल्मों में काम किया। मदर इंडिया, दिलिक मंदिर, वक्त, काजल, हमराज, ही रांझा, पाकीजा, कर्मयोगी, बुलंदी, सौदागर, तिरंगा और मरते दम तक जैसे कई यादगार फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। चाहे रोमांटिक हीरो का किरदार हो, राजसी व्यक्तित्व वाला पात्र हो या एक कठोर और शक्तिशाली व्यक्ति की भूमिका, राजकुमार हर रोल को अपनी अनोखी अदा से अमर बना देते थे।

1963 की फिल्म दिल एक मंदिर और 1965 की क्लासिक वक्त के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला। इसके अलावा काजल और नीलकमल के लिए भी उन्हें फिल्मफेयर नॉमिनेशंस प्राप्त हुए। ये सम्मान उनकी अदाकारी की गहराई और कला के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: राजकुमार के बारे में एक और खास बात ये थी कि वो बहुत ही स्वाभिमानी और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। वे अपने उसूलों पर जीते थे और किसी भी परिस्थिति में अपनी शख्सियत से समझौता नहीं करते थे। इसी वजह से उनकी पर्सनालिटी को लेकर कई कहानियां और किस्से बॉलीवुड में आज भी मशहूर हैं। लेकिन उनके फैंस के लिए उनकी असली पहचान हमेशा उनकी लाजवाब एक्टिंग और यादगार डायलॉग्स ही रहेंगे।

0: नहीं।
1: 3 जुलाई 1996 को गले के कैंसर के कारण इस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी आवाज और उनका अंदाज आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। राजकुमार ने साबित कर दिया कि असली कलाकार वो होता है जो सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि लोगों की यादों में भी हमेशा के लिए

हिंदी सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, राजकुमार का नाम उसमें सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा। उनकी विरासत हर उस कलाकार को प्रेरणा देती रहेगी जो अपनी अलग पहचान और अपने हुनर के दम पर अमर बनना चाहता है। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बोल सहेली बोल, तू भेद जिया के खोल।

चालक सफल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मैंने आर डी बर्मन को उसके बचपन में देखा, उस वक्त जब मैं मिस्टर एस जी बर्मन उनके फादर के साथ काम किया करता था। फिर कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि ये म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। ये वेस्टर्नाइज ज़्यादा करते थे म्यूजिक को, तो बर्मन साहब को ज़रा इस पर शिकायत होती थी। तो एक दिन हमसे कहने लगे कि भाई तुम इसके चाचा हो, तुम ज़रा इसको कहो। तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा देखिए अंकल, बाबा बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और सीखूंगा, लेकिन मैं उनके राह पे नहीं चलूंगा, मैं अपना रास्ता कुछ अलग निकालूंगा। आर डी बर्मन एक एरा था, एक स्कूल था हिमसेल्फ, वो लेवल मेरे ख्याल में दोबारा आना आसान नहीं है।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।